0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि अभी से लेकर रात्रि के 10 बजे तक जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। तदनुसार 10 जून 2026 आज दिन बुधवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: रमेश एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसकी मूर्तियां इतनी सजीव होती थी कि ऐसा लगता था कि वे बोल पड़ेंगी। वह अपनी मूर्तियों की बुराई किसी के मुख से नहीं सुन सकता था। एक रात उसे सपना आया कि आज से 15वें दिन यमदूत उसे ले जाएंगे। उसने फटाफट अपनी हमशकल 9 मूर्तियां बनाई और उनके बीच खड़ा हो गया। यमदूत उन 10 मूर्तियों को देख करके चकित रह गए। असली रमेश को न पहचान करके वह खाली हाथ लौट गए। फिर यमराज ने स्वयं रमेश को लाने का निश्चय किया। रमेश पहले से ही सावधान था। वह मूर्तियों के बीच स्थिर अवस्था में खड़ा हो गया। जब यमराज वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, रमेश ने मूर्तियां तो लाजवाब बनाई हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक जरा सी कमी रह गई है। रमेश अपनी मूर्तियों की बुराई नहीं सुन सकता था और तुरंत आगे आकर के बोला, कहां कमी है? यमराज ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी मूर्तियां तो बेजोड़ थी, परंतु रमेश तुम अपने घमंड की मूर्खता के कारण पकड़े गए। इसलिए कहते हैं श्रोताओं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।
1: जीवन सौरभ।
0: .8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप अभी से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सुन सकते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी पर केंद्रित होगा। आज उनकी जयंती है। सुबह 8:30 पर देवगढ़ का गोंड इतिहास, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से के अंतर्गत जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना। सुबह 9:00 टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय होगा डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल फास्टिंग, जानकारी देंगी एकता सरीन। सुबह 9:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भिखारी ठाकुर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 10:00 विगत दिनों भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी होगी, साथ ही देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे। 10:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम रश्मि रथी कविता का पाठ सुनेंगे। सुबह 11:00 कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक के अंतर्गत आज हम वैज्ञानिक पी के अयंगर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। और सुबह 11:30 पर समय होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं विश्वे देवा, मित्रा वरुण, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, मरुद्गण, इंद्राग्नि, बृहस्पति और विश्वे देवा। छंद है अत्यष्टि, बृहति और त्रिष्टुप।
5: अस्तु श्रौषट पुरो अग्निम धिया दध आनु तच्छर्धो दिव्यम वृणीमह। इंदवायु वृणीमहे यद्धक्राणा विवस्वति नाभा संदाई नव्यसी अध प्रसून उपयन्तु धीतयो देवाम अच्छा न धीतयः। हमने अग्निदेव को बुद्धिपूर्वक धारण किया है, उस दिव्य प्रदीप्त ज्योति की हम आराधना करते हैं। नवीन याज्ञिक की यज्ञ वेदी पर आकर मनोरथ पूरे करने वाले इंद्रदेव और वायुदेव की हम प्रार्थना करते हैं। हमारी स्तुति निश्चित ही देवताओं के पास पहुँचे, हमारी प्रार्थनाएं देवों तक अवश्य पहुँचे। यद्ध त्यैन्मित्रा वरुणा व्रता दध्या ददाथे अनृतम स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना युवो रिथाधि सद्म स्वपश्याम हिरण्ययम् धीभिश्चन मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः। हे मित्रा वरुणो, आप दोनों निज सामर्थ्य से सत्यवादिता और असत्यवादियों को अनुशासित करते हैं तथा अपनी शक्ति सामर्थ्य से उनके ऊपर शासन करते हैं। अतएव आप दोनों की स्वर्णिम तेजस्विता को अपनी बुद्धि, मन, इंद्रिय शक्ति तथा ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा हम प्रत्यक्ष देखते हैं। युवाम स्तोमे भिर देवयंतो अश्विना श्रावयंत इव श्लोक मायवो युवाम हव्याभ्यायवः। युवोर विश्वा अधिश्रियः वृक्षश्च विश्ववेदसा पुरुषायन्ते वाम पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये। हे अश्विनी कुमारो, देवताओं के प्रति श्रद्धा भावना से युक्त मनुष्य स्तवनों द्वारा आप दोनों का यशोगान करते हैं। श्रद्धावान याजक आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों के सर्वज्ञ होने से समस्त वैभव संपदाएं और अन्न आप दोनों के ही आश्रित हैं। हे मनोहारी देवो, सुंदर स्वर्णिम रथ के चक्र आपको वहन करते हैं। अचेति दस्रा व्यूनाक मृणवथो युञ्जते वाम रथयुजो दिविष्टिष्व ध्वस्मानो दिविष्टिषु अधिवाम स्थाम वंधुरे रथे दस्रा हिरण्यये पथेव यन्ता वनुशासता रजोंजसा शासता रजः। हे सुंदर अश्विनी कुमारों, आप दोनों सारथी रूप में स्वर्गस्थ मार्गों पर तीव्र गतिशील अश्वों को रथ में नियोजित करके स्वर्ग पहुँचते हैं, ऐसा सभी का कथन है। हे उत्तम अश्विदेवो, आप दोनों को हम भली प्रकार बंधन युक्त स्वर्णिम रथ में विराजित करते हैं। आप दोनों अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों पर शासन करते हुए जल पर नियंत्रण रखकर निज मार्गों से प्रस्थान करते हैं। शचीभिर नह शचीवसु दिवानक्तम दशस्यतम मा वाम रातिरूप दशत कदा चनास्मदात्रिः कदाचन। हे पुरुषार्थयुक्त वैभव संपन्न अश्विदेवो, आप दोनों हमारे श्रेष्ठ कर्मों से प्रसन्न होकर हमें अनवरत अर्थात दिन रात धन प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्यों की कभी कमी न आए। हमारे सार्थक

0: यह पत्थर द्वारा कूट कर सामर्थ्य शक्ति के निमित्त पान योग्य सोमरस अभिश्रवण करके स्थापित है। यह स्थापित सोमरस आपके पीने के लिए शोधित किया गया है। सुंदर महान वैभव प्रदान करने के लिए यह सोम आपको उत्साहित करे। हे प्रशंसनीय इंद्रदेव, वाणी द्वारा की गई प्रार्थनाओं से आप यहाँ पधारें। प्रसन्नता पूर्वक आप हमारे यहाँ उपस्थित हों। ओ शूणो अग्ने शृणु ही त्वमीडितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञीयेभ्यो राजभ्यो यज्ञीयेभ्यः यद्धत्यामंगिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन वीताम दुह्रिये अर्यमा कर्तरी सचां एषताम वेदमे सचा। हे अग्निदेव, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। अति पूजनीय देदीप्यमान देवों से कहें कि हे देवो, आपने गौवों को अंगिराओं के लिए प्रदान किया। उन गौवों को इकट्ठा करते हुए अर्यमा ने उन्हें दूहा। ऐसी गौवों से अर्यमा और हम दोनों ही परिचित हैं। मोशुवो अस्मदधि तानि पौंस्यासना भुवन्द्युम्नानि मोत जारी सुरस्मत्पुरोत जारिषुः यद्विश्चित्रं युगे युगे नव्यं घोषा दमर्त्यम् अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरम् दिधृता यच्च दुष्टरम्। हे मरुद्गणो, पुरातन काल की आपकी पराक्रमी सामर्थ्यों को हम कभी विस्मृत न करें। उसी प्रकार हमारी कीर्ति सदैव अक्षुण्य रहे तथा हमारे नगरों का विध्वंस न हो। आश्चर्यप्रद स्तुति योग्य और अमृत रूपी रस प्रदान करने वाली गौवों से संबंधित तथा मनुष्य मात्र के लिए जो धन संपदाएं हैं, वे सभी युगों युगों तक हमारे पास विद्यमान रहें। कठिनाई से प्राप्त होने योग्य जो संपदाएं हैं, उन्हें भी आप हमें प्रदान करें। अध्यंगः मे मनुषं पूर्वो अंगिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिर् मनुर् विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः तेषां देवेष्वा यतिरस्माकं तेषु नाभयः तेषां पदेन महिया नमे गिरेन्द्राग्नि आ नमे गिरा। पुरातन कालीन दध्यंग, अंगिरा, प्रियमेध, कर्णव, अत्रि और मनु, ये सभी ऋषि हम मनुष्यों के प्रति जन्मों को जानते हैं। वे मननशील ज्ञानी हमारे पूर्वजों को जानते हैं। उन ऋषियों का देवताओं के साथ अति निकटस्थ संबंध है। साधारण मनुष्य देवों से ही शक्ति ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हीं देवों के अनुगामी बनकर हम हृदय से उन्हें प्रणाम करते हैं। स्तोत्रों से हम इंद्राग्नि की प्रार्थना करते हैं। होता यक्षद्विनिनो वंत वार्यम बृहस्पतिर यजति वेन उक्षभिः पुरुवारे भिरक्षभिः जघृमा दूर आदिशम श्लोक मद्रे रधत्मना आधार यद ररिंदानि सुकृतुः पुरु सद्मानि सुकृतुः। यज्ञकर्ता यज्ञ द्वारा विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करें। कल्याणकारी बृहस्पति सामर्थ्यप्रद तथा विभिन्न लोगों द्वारा वांछित सोम से यज्ञ संपन्न करें। दूरस्थ दिशा से आ रही पत्थरों द्वारा सोमवल्ली कूटने की ध्वनि हम स्वयमेव सुनते हैं। सत्कर्म रूपी यज्ञीय कर्मों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्नादि से भरे पूरे संपन्न रहते हैं। श्रद्धालु मन द्वारा याज्ञिक मनुष्य प्रचुर वैभव युक्त गृहों से सुशोभित रहते हैं। ये देवासो दिव्ये कादशस्थ पृथिव्या मध्ये कादशस्थ अपसुक्षितो महिनै कादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। हे देवो, आप पृथ्वी अंतरिक्ष और देवलोक इन तीनों लोकों में 11-11 की संख्या में हैं। हे देवगण, आप सभी इन आहुतियों को ग्रहण करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। बीते समय को बदला नहीं जा सकता, इसलिए पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। नए दिन का सकारात्मक सोच के साथ स्वागत करें और अपने काम की नई शुरुआत करें, तभी सफलता मिल सकती है।

हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं तो परेशानियां कभी दूर नहीं होंगी। हमें दूसरों पर नहीं अपने आप पर ध्यान देना होगा। अपनी तैयारी पक्की रखें, तभी परेशानियां हल हो सकती हैं।

प्रेम, करुणा, त्याग, संयम, अनुराग और भक्ति जैसे गुण महापुरुषों के स्वभाव में रहते हैं। ये सभी सद्गुण हम सभी में हैं। इन गुणों को जगाना पड़ता है। अपने भीतर प्रेम, माधुर्य और संयम को जगाए, अपने भीतर की सरलता को जगाए। जब हम ऐसा ठान लेंगे कि हमारे सद्गुण चैतन्य हो, हमारी दिव्यताएं उजागर हो, हमारी श्रेष्ठताएं एक साथ जीवंत हो, तब निःसंदेह हम बड़े कार्य कर पाएंगे।

हम अपने काम के लिए कितने गंभीर हैं, कितने अच्छे संकल्प और श्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों से हमारी सफलता तय होती है। अगर हम स्वयं के प्रति गंभीर हैं, निष्ठावान हैं, हमारे विचार सही हैं, हम कोरी कल्पनाओं से काम नहीं चलाते, तब हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं।

शुभ कर्म ही मूल पूंजी है। शुभ कर्म का अर्थ है दूसरों के प्रति सेवा की भावना, दूसरों के दुर्गुणों और दोष पर ध्यान नहीं देना। जहाँ सद्गुण है, शुभता है और प्रियता है, वहाँ पर हमें रहना चाहिए। भाषा में सकारात्मक भाव लाना चाहिए। हम किसी के उस पक्ष को ना देखें जहाँ दुर्गुण है, हमेशा कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें।

नवाचार करना हमारा एक स्वाभाविक गुण है। हम कभी भी नया सृजन, नई खोज और नए काम कर सकते हैं। मनुष्यों ने संचार, सूचना, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, आधुनिक उपकरण जैसे हर क्षेत्र में अब तक कई आविष्कार किए हैं, कई बड़ी बड़ी खोजें की हैं। ये सब मनुष्यों के सामर्थ्य की वजह से ही हो रहा है। हमें अपनी रचनाओं को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए।

हमारी वर्तमान स्थिति हमारी पुरानी कामनाओं और कर्मों का ही प्रतिफल है। हम आज जो कुछ भी है अपने संकल्प, कर्म और विचारों की वजह से ही है। हम जो कुछ अच्छा बुरा प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जब हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तब हमारा भविष्य सुखद बनता है।

माता पिता के साथ ही गुरु, उम्र में बड़े और विद्वान लोगों का भी आदर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार ये सभी भगवान की साकार प्रतिमाएं हैं, क्योंकि इनमें परमात्मा के अंश और संदेश है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, महापुरुषों और देशभक्तों के जीवन पर समर्पित कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। साथ दुनिया ने दिया न मुकद्दर ने दिया, रहने जंगल ने कब दिया जो शहर ने न दिया। एक तमन्ना थी कि आजाद वतन हो जाए, जिसने जीने न दिया चैन से मरने न दिया। बेगम हजरत महल की ये नज्म उनके दिल के हालात को बयां करती है। जब वे 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने वफादार साथियों के साथ अवध की छोटी सी रियासत चहलारी पहुंची, जहां 18 साल के युवा राजा बलभद्र सिंह ने उनको पनाह दी। न सिर्फ पनाह बल्कि प्राणपण से उनकी रक्षा भी की और हिफाजत के साथ उनको नेपाल की सीमा पार घने जंगलों में पहुंचाने में पूरी मदद की। अधिकांश इतिहासकारों का कथन है कि 1857 का युद्ध अवध के इलाके में गांव-गांव में लड़ा गया और सभी लोगों ने इसमें खुलकर हिस्सा लिया। गंधर्व वन का इलाका बहराइच के आसपास का घना जंगल है। जनश्रुतियों के अनुसार ये बहर राजवंश की राजधानी थी। प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन अपने यात्रा संस्मरणों में किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सुंदर क्षेत्र सरयू नदी के किनारे बसा है। अवध का ये सुंदर हरित क्षेत्र 1857 की क्रांति में युद्ध का प्रमुख स्थान बन चुका था। 7 फरवरी 1856 को रेजिडेंट जनरल आउटरेम ने अवध में कंपनी रूल लागू करने का आदेश जारी किया। बहराइच इस डिवीजन का केंद्र बना। मिस्टर विंगफील्ड को इसका कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये पूरा इलाका तालुकेदारों और छोटे छोटे जमींदार राजाओं में बंटा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के चलते सभी राजा और जमींदार उनसे नाराज थे। अवध के नवाब बिरजीस कद्र नाबालिग थे और उनके नाम पर बेगम हजरत महल अपना शासन चला रही थीं। इस पर भी अंग्रेजों की नजर थी। अक्टूबर 1819 में अंग्रेजों ने लखनऊ में एक दरबार समारोह पूर्वक किया। इसमें अवध के नवाब को स्वाधीन बादशाह घोषित किया, यानी दिल्ली से उनका संबंध विच्छेद। पर इसका छुपा अर्थ ये भी था, अवध पर कंपनी का पूर्ण आधिपत्य। अंग्रेजी सरकार कर्ज के नाम पर अवध के नवाब से रुपए लेती, पर वो वापस नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक गवर्नर जनरल को मनमानी रकम निकालने और खर्च करने का अधिकार था। कुप्रबंध के कारण अवध में हलचल मच गई। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाए, क्योंकि अयोग्य नवाब शासन सुधार नहीं करना चाहते। उन्हें निर्वासित कर दिया गया और कैद कर कलकत्ता भेज दिया। अवध की जनता इस दुख से जार जार रोई।

सैनिक छावनियों से उठी स्वतंत्रता संग्राम की आंच अब अवध के गांवों में भी पहुंची। ये ग्रामीणों का सुनियोजित प्रयास था। असंख्य जनता विद्रोह में शामिल थी। नाना साहेब अवध के जमींदारों और राजाओं से मिलने बहराइच पहुंचे। गुप्त मंत्रणा में शामिल प्रमुख नायक थे गोंडा बहराइच के राजा देवी बख्श सिंह, बैसवारा के राणा वेणी माधव, राव राम बख्श के साथ चहलारी के युवा राजा बलभद्र सिंह। गुल्लावीर के इस मंत्रणा शिविर में शामिल सभी जमींदारों, तालुकेदारों और राजाओं ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। भिंगा, बौंडी, रेहुआ, चारदा के लोगों ने भी इसमें शामिल होना स्वीकार किया। लखनऊ में जब विद्रोहियों की सेना ने जबरदस्त हमला बोला तो आसपास के क्षेत्र में भी हलचल मच गई। बेगम हजरत महल अपने साथियों के साथ बाराबंकी पहुंची। वहां महादेवा में सहयोग के लिए उन्होंने राजाओं से कहा। सभी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, किंतु नेतृत्व कौन करेगा। इस पर सब चुप थे। आखिर में चहलारी के 18 वर्षीय युवा राजा बलभद्र सिंह ने बागडोर अपने हाथ में ली और ऐलान किया कि वो इसका नेतृत्व करेंगे। सभी ने उनके इस निर्णय की प्रशंसा की और तन मन धन के साथ अपनी सेनाएं सहयोग के लिए देना स्वीकार किया। राजा बलभद्र सिंह का जन्म 10 जून 1840 को हुआ था। इस समय उनकी उम्र थी मात्र 18 वर्ष। इस युवा वय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना बड़े साहस का काम था। उनकी जमींदारी मात्र 44 गांवों की थी। उनका कद लंबा चौड़ा और आकर्षक था। 1857 के इतिहास में ये लड़ाई नवाबगंज के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 12 से 14 जून 1857 के बीच हुए इस युद्ध में बाराबंकी के सभी तालुकेदार शामिल थे। इस लड़ाई में अवध राज्य के सैनिक, विद्रोही सिपाही और बैसवाड़े के आम लोग शामिल हुए। इस क्षेत्र के लोगों के शारीरिक शौर्य की प्रशस्ति अंग्रेजी लेखक मेटकाफ, W.H. रसेल और कर्नल स्लीमन ने भी अपनी कलम से गाई है। उन दिनों रामपुर के राय साहबों ने भी गांव-गांव में मोर्चा खोल दिया था। जहांगीराबाद और हड़हा में बांस के जंगल विद्रोहियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गए थे। सरहोप ग्रांड की सेनाएं उनका पीछा कर रही थीं। राजा बलभद्र सिंह चहलारी के युद्ध कौशल पर टिप्पणी करते हुए सरहोप ग्रांड ने लिखा, केवल 2 तोपों से खुला हमला शौर्य तथा रण कौशल की दृष्टि से भारत की अनेक लड़ाइयां देखने के बाद भी अविस्मरणीय और अद्वितीय था। अवध की लोक गाथाओं में राजा बलभद्र सिंह चहलारी के शौर्य का वर्णन आज भी जीवित है।

स्वतंत्र सैनिक रामनगर से मितौली, मितौली से मसौली बाराबंकी पहुंचे और वहां से जहांगीराबाद। यहां के राजा रज्जाक बख्श का मजबूत किला अंग्रेजी फौजों ने ढहा दिया था। आसपास के जंगलों में आग लगा दी गई ताकि कोई छिप न सके। जब अंग्रेजी सेना नवाबगंज पहुंची तो राजा बलभद्र सिंह के पास लगभग 1000 सिपाही थे, तोप कम थी। उन्होंने समझदारी से रैत और जमुरिया नदियों के टीलों पर अपनी रक्षा पंक्ति बनाई। उनका उद्देश्य था कि उत्तर का इलाका स्वतंत्र है, वहां अंग्रेजी फौजें न पहुंच सकें। चिन्हट पर होप ग्रांट की फौज में पुरनल की फौज भी आकर मिल गई। उनकी शक्ति दुगुनी हो चुकी थी। वे बेगम हजरत महल का पीछा कर रहे थे ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सकें। राणा बेनी माधव बेगम और नवाब बिरजिस कद्र को ढूंढने बाराबंकी पहुंचे और वहां से उन्हें निकालकर नेपाल की ओर निकल गए। राजा बलभद्र सिंह ने इधर अंग्रेजी सेना को उलझाए रखा। उनके साथ बौंडी के राजा हरदत्त सिंह और चरदा के राजा भी लड़ रहे थे, पर सबसे अधिक बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रदर्शन राजा बलभद्र सिंह ने किया। उनके 1000 वीर सैनिकों में से 600 ने यहां वीर गति पाई। युद्ध में लड़ते लड़ते राजा बलभद्र सिंह भी घायल हुए और उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बाबा राम सनेही भी अंग्रेजी फौजों को रोकने की कोशिश में इसी लड़ाई में शहीद हुए थे। इसके बाद भी लंबे समय तक आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ाइयां चलती रहीं और अवध का ये क्षेत्र काफी दिनों तक स्वतंत्रता की सांस लेता रहा। अवध में 1857 का युद्ध जन जागरण का शंखनाद था। गांव गांव के किसान, साधारण मजदूर इसमें शामिल थे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी राज से मुक्त कराने के लिए। जुल्म की आंधियां बढ़ती रहीं लम्हा लम्हा, फिर भी परचम को आसमां से उतरने न दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है।
3: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है देवगढ़ का गोंड इतिहास। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे हैं संदीप शर्मा।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, जो लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।

श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड्स में गढ़ा के गोंड राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में सुना। मध्य भारत में राजा संग्राम शाह द्वारा स्थापित बावनगढ़, उनकी स्थापत्य शैली, सिक्कों आदि के माध्यम से हमने उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जाना।

0: शौर्य एवं बलिदान का इतिहास भी जाना। गोंड रानी दुर्गावती के प्रति हम सभी नतमस्तक हैं। भारत के इतिहास में वो स्वर्णाक्षरों की तरह सदा दैदीप्यमान रहेंगी। पिछले एपिसोड में हमने रानी दुर्गावती के वंशज हृदय शाह के बारे में सुना। वीरांगना रानी दुर्गावती के लगभग 70 वर्षों बाद राजा हृदय शाह ने 1635 ईस्वी में गढ़ा राज्य की राजगद्दी संभाली। उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थापित की। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा रामनगर। हमने रामनगर के नगर नियोजन और स्थापत्य कला के बारे में सुना। इसके अलावा कवि हृदय राजा हृदय शाह के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की। हमारे साथ इन सभी चर्चाओं में शामिल रही हैं अब तक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना, जिन्होंने ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। आज भी पूजा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो पूजा जी, इस एपिसोड को शुरू करने के पहले मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि राजा संग्राम शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा हृदय शाह के योगदान के साथ गढ़ा मंडला राज्य का गौरवशाली इतिहास आपने हम सबको सुनाया, लेकिन क्या इनके समकालीन और भी गोंड राज्य हमें मध्य भारत में देखने को मिलते हैं?
1: बिल्कुल, वीरांगना रानी दुर्गावती के समकालीन मध्य भारत में कुछ अन्य छोटे राज्य भी थे जिनकी जानकारी हमको मिलती है। जैसे एक है गरोला का राजा, दनकी का राजा, खटोला का राजा, मुग्धा, मंडला, देवहार और लांजी का राजा।
0: अच्छा।
1: इनकी कुछ कुछ जानकारियां हमें यहाँ वहां मिलती हैं। इनमें ही एक और नाम मिलता है हरिया का राज्य।
0: अच्छा।
1: हरियागढ़ भी कहलाता था ये, जो आज मध्य प्रदेश है उसके छिंदवाड़ा जिले के आसपास था ये हरियागढ़।
0: अरे वाह।
1: और इसी के साथ में एक और राज्य का जिक्र मिलता है जो गोंड राज्य था, जिसका नाम था देवगढ़।
0: जी।
1: आज भी अगर छिंदवाड़ा जाते हैं तो इस देवगढ़ राज्य की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको हम देख सकते हैं। तो देवगढ़ राज्य के उद्भव की बहुत सी कथाएं हैं। पहली कथा का उल्लेख हमको एक 1864 ईस्वी का दस्तावेज है जिसमें मिलता है। तो इस दस्तावेज के अनुसार देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था वो अपनी वंशावली महाभारत में वर्णित एक राजा है विचित्रवीर, उससे जोड़ते हैं।
0: अच्छा।
1: और कहते हैं कि इस वंशावली की 25वीं पीढ़ी में राजा रूपशाह हुए और इसी वंशावली में 51वीं पीढ़ी में महिपत शाह हुए, 52वीं पीढ़ी में सुरबाशाह और 53वीं पीढ़ी में वीरवान शाह का नाम आता है। और इसी वंशावली की 54वीं पीढ़ी में हमको एक राजा का नाम दिखाई पड़ता है, वो है जाटवा शाह अजानबाहु। तो देवगढ़ के यही प्रतापी राजा हुए हैं जिन्हें हम जाटवा के नाम से जानते हैं।
0: तो ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूजा जी ने हमें बताई कि गोंड राज्य महाभारत से भी संबंधित यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो कि निश्चित रूप से पूजा जी और हमें कुछ आगे बताएंगी। और इसके पहले कि हम अजानबाहु जाटवा की बात करें, कैसे वो राजा बने ये बात करें, एक चीज जरूर मेरे ध्यान में आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ये जिक्र करूँ श्रोताओं की, देखिये छिंदवाड़ा आज भी कितना हरा भरा है और पूजा जी ने बताया कि तब जब वो गोंड राज्य वहां पर था तब हरियागढ़ उसका नाम था, तो निश्चित रूप से वो हरियाली के कारण ही वहां पर हरियागढ़ रहा होगा। और फिर छिंदवाड़ा भी जो वहां छींद के पेड़ कहते हैं कि वो जो उसके कारण छिंदवाड़ा नाम पड़ा है। तो पूजा जी अब आगे ये बताइए हमें कि देवगढ़ के गोंड राज्य की 54वीं पीढ़ी में जो जाटवा शाह अजानबाहु हुए वो राजा कैसे बने,
1: जाटवा कैसे राजा बने, इसकी एक लोक कथा हमको मिलती है।
0: जी।
1: कहते हैं कि छिंदवाड़ा और उसके आसपास गवलियों का शासन था।
0: जी।
1: यहां दो गवली भाई थे, एक का नाम था रणशूर और एक का नाम था घनशूर।
0: अच्छा।
1: तो रणशूर घनशूर का यहाँ पर शासन हुआ करता था और जाटवा गोंड जो था उनके यहाँ नौकरी करता था।
0: अच्छा।
1: ऐसा भी मानते हैं कि जाटवा बड़ा शक्तिशाली था। एक दिन क्या हुआ कि किले का जो दरवाजा होता है वो किले में जमीन पर रखा हुआ था, तो जाटवा ने उस भारी भरकम दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को अपने हाथों से उठा लिया।
0: अच्छा।
1: और ये बात जब रणशूर घनशूर को पता चली तो वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि इतना शक्तिशाली किसी व्यक्ति का अपने किले में होना एक चिंता का विषय किसी भी राजा के लिए होता है। अब रणशूर और घनशूर ने एक योजना बनाई। दिवाली के दिन जैसी की परंपरा है, खेल वगैरह होते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, तो रणशूर घनशूर ने जाटवा को एक लकड़ी की तलवार दे दी और कहा कि ये जो भैंसा है इसको इस तलवार से मार दे।
0: अच्छा,
1: अब जैसे कि योजना थी कि तलवार तो लकड़ी की थी, तो जब जाटवा वार करेगा तो भैंसा उल्टा उसको मार देगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार जाटवा के हाथ में आई, उसमें तो देवी शक्ति आ गई और जाटवा ने जैसे ही भैंसा पर वार किया उसका वध हो गया। और अगले ही पल
0: जी
1: कहते हैं कि जाटवा हाथी पर विराजमान हुआ और उसने उसी तलवार से रणशूर और घनशूर का वध कर दिया। तो इस तरीके से जाटवा जो है वो देवगढ़ का राजा बना।
0: तो मतलब बाजी यहाँ पर पूरी तरह से उल्टी पड़ गई।
1: हाँ, आज भी जो देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में, वहाँ पर एक बुर्ज है
0: जी,
1: और इस बुर्ज को देवी का स्थान माना जाता है
0: जी।
1: और जैसा कि आप जानते भी होंगे शायद कि देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था उनके वंशज आज भी हैं, नागपुर में निवासरत हैं। तो आज भी उनके यहाँ कोई धार्मिक उत्सव होता है या पूजा पाठ होता है, या जैसे मुंडन हुआ, विवाह के उपरांत की जो संस्कार है, तो वो आज भी वे देवगढ़ आते हैं और इसी बुर्ज पर देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
0: ये किस तरह की बात है पूजा जी, ये कब वो देवगढ़ के राजा बने?
1: अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएं तो स्पष्ट होता है कि 1584 ईस्वी के आसपास जाटवा जो है देवगढ़ के राजा बन चुके थे। और फिर उनके वंशजों के बारे में भी हमें पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि उनका शासन जाटवा का 1620 ईस्वी तक रहा होगा, यानी कि 1584 ईस्वी से लेके 1620 ईस्वी तक। तो देवगढ़ में जो उनके बाद के जो उनके वंशज हुए वो हुए दलशाह, जो 1620 में राजा बने
0: जी।
1: फिर दलशाह के बाद कोकशाह हुए, उनका राजत्व काल आरम्भ होता है 1634 से, और इसके बाद केसरी शाह हुए हैं। और इनके बाद के जो राजा हैं उन्होंने भी अपना नाम जाटवा रखा, तो वो जाटवा द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं
0: जी।
1: और उनका शासनकाल है 1640 से 1657 तक। फिर कोक्षादित्य हुए हैं 1657 से लेके 1687 के बीच में
0: जी।
1: और इसके बाद हमको एक और राजा का नाम मिलता है बख्त बुलंद
0: जी,
1: जो कि 1687 से 1700 ईस्वी तक आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राजा हैं जो बहुत शक्तिशाली नहीं रहे, और फिर बाद में देवगढ़ राज्य का विलय नागपुर के मराठा राज्य में हो जाता है।
0: श्रोताओं, हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमें पूजा जी ने बताया था कि गोंड राज्य के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में आईना इकबरी में स्पष्ट उल्लेख है, और यहाँ भी ये पता चलता है आईना इकबरी से कि राजा जाटवा के पास 2000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 1001 से ज्यादा हाथी थे। पूजा जी, ये हाथियों से संबंधित एक कथा जो कि देवगढ़ से जुड़ी हुई है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: हाथियों से संबंधित एक बड़ी रोचक कथा देवगढ़ के साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवगढ़ में बहुत से हाथी थे। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हाथियों का उपयोग उस समय बहुत जरूरी था, सेना में, यातायात, माल ढोने में, भारी वाहन और या फिर जो सामान को ढकेलने में, निर्माण कार्य में, मनोरंजन, खेल, शानो शौकत सभी में तो हाथियों का उपयोग होता था। तो इसलिए मुगलों की नजर विंध्याचल और सतपुड़ा के वन क्षेत्रों में लगी रहती थी, क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म के हाथी होते थे और वो भी ऐसे हाथी जिन्हें गोंड बहुत ही अच्छा प्रशिक्षित किया करते थे। तो हमेशा मुगल चाहते थे कि उनको यहाँ के हाथी मिल जाएं। ये समय है दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल का। उनका समय था 1634 ईस्वी से 1644 ईस्वी के बीच में
0: जी।
1: और यहाँ पर उस समय जो हमने देवगढ़ के जाटवा राजा की बात की, उनके वंशज थे जाटवा द्वितीय।
0: अच्छा,
1: उनका शासन चल रहा था। तो जाटवा द्वितीय के समय की ये घटना है। कहते हैं कि जाटवा द्वितीय के पास एक बड़ा ही विचित्र हाथी था, जटाशंकर।
0: अच्छा,
1: और उसकी चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब मुगल शासक शाहजहां को उस विचित्र और बलशाली हाथी जटाशंकर के बारे में पता चला, तो शाहजहां किसी भी कीमत पर उस हाथी को हासिल करना चाहते थे
0: जी।
1: तो उन्होंने अपने संदेश वाहकों को देवगढ़ के राजा जाटवा द्वितीय के पास भेजा और उनसे कहा कि जो भी आपके पास ये विचित्र हाथी है जटाशंकर, वो हमें दे दें। लेकिन जाटवा द्वितीय ने उन्हें कहलवाया कि उनके पास ऐसा कोई हाथी नहीं है।
0: अच्छा,
1: लेकिन शाहजहां उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वे बार बार संदेश भिजवाते रहे। और हर बार जाटवा द्वितीय इस बात से इनकार करते रहे कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी जटाशंकर नाम का कोई भी जत्र हाथी है।
0: जी।
1: अब बात आगे बढ़ गई, हाथी के लिए मुगल शासक कितना व्याकुल था इसका हमें पता चलता है जब शाहजहां और उनका जो बेटा था औरंगजेब
0: जी,
1: दोनों के बीच में 5 पत्र इस संबंध में लिखे गए हैं।
0: अच्छा।
1: जो अब ऐतिहासिक दस्तावेज हैं।
0: जी।
1: तो उस समय जब शाहजहां दिल्ली के शासक थे तो उनका जो शहजादा था औरंगजेब वो दक्कन का वायसराय था
0: जी,
1: इसलिए औरंगजेब दक्कन और उसके आसपास के मामले देखा करता था
0: जी।
1: तो देवगढ़ भी उसी क्षेत्र के आसपास था, देवगढ़ पर भी औरंगजेब ही नजर रखा करता।
0: अच्छा।
1: था तो शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखकर सूचित किया कि देवगढ़ के राजा जाटवा के पास जटाशंकर नाम का एक विचित्र हाथी है और वह इसे कैसे भी प्राप्त करके दिल्ली ले आए। ये 5 पत्र जो हैं ये आदाबे आलमगिरी में संग्रहित हैं।
0: अच्छा।
1: और इन पत्रों को अंग्रेज विद्वान विल्स ने अनुवाद किया है।
0: तो क्या उन पत्रों का, उन खतों का जो भी मजमून था वो कुछ पता चल सका है कि उनमें क्या लिखा था?
1: बिल्कुल। तो जैसे पहला पत्र है, तो पत्र औरंगजेब ने लिखा है शाहजहां को और उसने कहा कि आपने जैसा कि संदेश भिजवाया था हमने देवगढ़ से 170 हाथी हासिल कर लिए हैं।
0: अच्छा।
1: इनमें से कोई सा भी हाथी जटाशंकर नहीं है, अभी भी उसके पास यानी देवगढ़ के राजा के पास 200 हाथी और हैं। इनमें से कौन सा हाथी जटाशंकर हो सकता है हमें नहीं पता। आगे वह लिखता है कि मैंने एक अधिकारी को देवगढ़ यह पता लगाने के लिए गुप्त रूप से भेजा था कि देवगढ़ में अब कितने हाथी हैं और जटाशंकर उनमें से कौन सा हाथी है, लेकिन वह अधिकारी 3 माह वहां छुप कर रहा और आखिर तक उसे जटाशंकर नाम का कोई हाथी प्राप्ति नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: फिर वह आगे लिखता है कि यह उचित होगा कि महामहिम शाहजहां जिसने भी आपको जटाशंकर हाथी के बारे में जानकारी दी थी उस व्यक्ति से ये पता करें कि उसे ये जानकारी कहां से कैसे मिली, तो फिर मैं जटाशंकर को ढूंढ पाऊंगा।
0: ये तो भाई हाथी ना हो गया, रहस्य हो गया, ऐसा लग रहा है हाथी नहीं, ये सुई ढूंढ रहे हैं और वो सुई इन्हें मिल नहीं रही। तो फिर क्या हुआ, क्या कोई और पत्र ऐसा मिलता है बाकी के जो आपने 5 पत्रों का जिक्र किया, क्या अगले पत्रों में कुछ जिक्र हुआ कि जटाशंकर वास्तव में था या नहीं, मिला या नहीं?
1: दूसरा पत्र शाहजहां का है
0: जी,
1: और जिसमें वह फिर से जटाशंकर और अन्य हाथियों की जानकारी मांगता है। तीसरे पत्र में शहजादा औरंगजेब लिखता है कि वह चांदा के शासक से जटाशंकर के बारे में पता लगाने के लिए मदद ले रहा है, यानी दूर दूर तक के ये पता किया जा रहा है कि देवगढ़ में जटाशंकर नाम का हाथी है क्या और है तो कैसे मिलेगा। उसने देवगढ़ में भी चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचर लगा दिए हैं और जल्दी ही इस मामले में सफलता मिलेगी, उसने इस पत्र में ऐसी आशा व्यक्त की है। लेकिन तब भी जटाशंकर हाथी के बारे में औरंगजेब कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तब औरंगजेब ने चौथे पत्र में लिखा कि मुझे अपने पत्र का जवाब आपसे प्राप्त हुआ है, आपने पत्र में निर्देश दिया है, ये पत्र वो शाहजहां को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं
0: जी, जी।
1: और उसमें वो लिखते हैं कि शाहजहां को कि आपने पत्र में निर्देश दिया है कि देवगढ़ के जमींदार से पूरा कर वसूल कर लिया जाए
0: जी।
1: और जटाशंकर नाम के हाथी के अलावा भी जितने हाथी हैं सभी हाथियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आपके आदेशानुसार मैंने मिर्जा खान और हदीदा खान को रवाना कर दिया है, ऐसी आशा है कि हमारी कोशिशों से जल्दी ही सफलता मिलेगी और देवगढ़ के सभी हाथी हमारे कब्जे में होंगे।
0: भाई वाह, ये तो मतलब बहुत ही विचित्र वाकई घटना, हाथी से भी विचित्र घटना तो ये लग रही है। ये इतिहास के जो हमें दस्तावेज हैं, जो ये पत्र हैं, जो पिता पुत्र के बीच में मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच जो बातचीत हुई है, तो श्रोताओं को भी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही होगी और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि आखिर वो हाथी मिला या नहीं हुआ। अब पांचवें पत्र का राज भी आप खोल ही दीजिए।
1: जी हाँ, जैसे इस चौथे पत्र से पता चल रहा है कि एक हाथी को पाने के लिए किस तरीके से देवगढ़ पर कर भी लगाया गया और उससे वसूला गया वो भी देखने लायक है। लेकिन जब आखिरी इस पांचवें पत्र से हमें पता चलता है कि मुगल सेना देवगढ़ के सारे हाथियों को हकाल कर ले गई लेकिन उन्हें जटाशंकर फिर भी नहीं मिला।
0: अच्छा, तो मतलब अभी भी आज ये रहस्य है कि वो वाकई कोई जटाशंकर नाम का विचित्र हाथी था भी या नहीं,
1: या देवगढ़ उसे बचा के ले गया।
0: तो देखिए, इस राज से तो अभी भी पर्दा नहीं हटा है, लेकिन ये किस्सा बहुत दिलचस्प था। और साफ इस बात से ये भी पता चलता है कि उस समय कोई भी शासक रहा हो, जबकि शाहजहां दिल्ली पर राज कर रहे थे, मुगल शासक थे, इतिहास में इतना बड़ा नाम आता है, पर वो एक विचित्र हाथी के चलते न सिर्फ उन्होंने पूरे गढ़ा राज्य पर वहां पर बहुत सारा कर लगा दिया, बल्कि एक हाथी को पाने के लिए जितने भी हाथी जाटवा द्वितीय के पास थे वो सब उन्होंने हड़प लिए। तो इससे ये जरूर समझ में आता है कि पशुधन उस समय कितना महत्वपूर्ण होता था, और वो भी हाथी जैसा पशु जो न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि वो युद्ध नीति में, युद्ध कला में काम आता था, क्योंकि वो ज्यादातर प्रशिक्षित होते थे और वो किसी भी राजा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकते थे। पूजा जी, इस बारे में आपसे थोड़ा सा कुछ और जानना चाहेंगे।
1: जी हाँ, ये जो मध्यकाल है इसमें हाथियों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यदि आपको व्यापार करना है तब भी माल ढोने के लिए बड़े बड़े हाथियों की आवश्यकता होगी, और हाथी शक्तिशाली होते हैं, लंबे समय तक सफर भी कर पाते हैं, यद्यपि धीमे चलते हैं लेकिन प्रशिक्षित होने के कारण उनके साथ का व्यवहार आसान होता है। तो हम देख ही रहे हैं कि गोंड राज्यों के आपस में दूसरे राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध है, हमने गढ़ा के संबंध में भी देखा
0: जी।
1: इसके अलावा युद्ध में तो प्रयोग हो ही रहे हैं, हाथी उस समय सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था
0: जी।
1: और साथ ही हाथियों का उपयोग निर्माण कार्य में भी बहुत हो रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो मंदिर, महल, किले वगैरह बनते थे उनके जो माल को ढोने के लिए,
0: सामग्री पहुंचाने के लिए,
1: या
0: ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए,
1: ऊंचाई तक पहुंचाना है, या बड़े बड़े जो पाषाण खंड हैं
0: जी,
1: उनको रोलर की सहायता से जो धक्का देकर ले जाया जाता था उसके लिए भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता था। हम मुगल काल की यदि मिनिएचर पेंटिंग्स को भी देखें जिसमें कि किलों का निर्माण हो रहा है या कोई युद्ध का सीन है, तो उसमें भी बहुसंख्या में हमको हाथी नजर आते हैं
0: जी।
1: तो हाथियों का बहुत सारा उपयोग था। और हाँ, इसके अलावा मनोरंजन में भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता रहा, उनसे विविध प्रकार के खेल दिखाना या उनके ऊपर बैठकर तलवारबाजी करना या दूसरे तरीके के खेल। इसके साथ ही जो शाही सवारियां होती थी उसमें भी हाथियों का बड़ा ही उपयोग था। हम लोग देखते हैं ना कि बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर किले होते हैं
0: जी,
1: और उन किलों पर चढ़ना इतना आसान तो नहीं था, आज भी नहीं है। तो शाही सवारियां जब किलों पर चढ़ती थी तो वो हाथी पर पालकी रखकर ही जाया करते थे, तो उसके लिए भी बड़े उपयोगी थे हाथी।
0: अच्छा, एक एक एक और सवाल जहन में आ रहा है पूजा जी, कि बहुत सारे हम किलों की तरफ, महलों की तरफ जाते हैं तो द्वार पर हाथी जरूर वहां पर बने होते हैं, अंकित होते हैं, या फिर दोनों तरफ होते हैं। क्या सिर्फ हाथी, क्योंकि शुभता का प्रतीक भी कहे जाते हैं, सिर्फ इसलिए, या फिर कोई और इसके पीछे राज है?
1: जी हाँ, हाथी शुभ तो है ही, इसके साथ ही हाथी राजसी शक्ति का भी प्रतीक है
0: जी।
1: इसलिए ज्यादातर जगहों पर हमको द्वारों पर हाथियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। देवगढ़ का किला जो है उसमें तो एक हाथी द्वार भी है।
0: अच्छा,
1: जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।
0: बिल्कुल, हाथी द्वार, हाथी खाना, कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इतिहास के पन्नों में हमें समझ में आती हैं, हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें पढ़ पाते हैं इतिहास के पन्नों से। कार्यक्रम चल रहा है और पूजा जी प्रसिद्ध पुरातत्वविद हमें देवगढ़ के बारे में बता रही हैं, जाटवा के बारे में उन्होंने बताया, गोंड शासक जाटवा और जाटवा द्वितीय की कहानी चल रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात आज उन्होंने बताई। उस राज से तो पर्दा इतिहास के जो दस्तावेज है उसके जरिए भी नहीं हट पाया है, लेकिन पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में कि देवगढ़ की जो स्थापत्य शैली थी वो किस तरह की थी, जो नगरीय नियोजन था वो किस तरह का था। क्योंकि आज समय हो गया है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो पूजा जी को हम धन्यवाद देते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी दिलचस्प जानकारियां देने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से आज का अंक यहीं समाप्त होता है। परिकल्पना और निर्देशन इस कार्यक्रम का सुश्री अदिति गौड़ का है, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज का विषय था देवगढ़ का गोंड इतिहास। जानकारी दी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने, और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।
0: इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों से।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं शिवानी और
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ एकता सरीन से बातचीत कर रही हैं शिवानी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। हमारे टेक गुरु प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन सभी तकनीकी प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो तकनीक की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और तकनीक की दुनिया में एक सच्चे गुरु बनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग, यानी मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कम करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एकता सरीन जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग और स्पेशली टीनेज काउंसलिंग में सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, प्रैक्टिसिंग विद NCERT। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता सरीन जी।
3: नमस्कार शिवानी जी।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो डिजिटल डिटॉक्स है या मोबाइल फास्टिंग कह लीजिए, डिजिटल डिवाइसेस से फास्टिंग है, डिटॉक्स है, ये क्या है और इसके लाभ क्या है?
3: चलिए इसको एक बहुत साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं
1: जी।
3: सपोज शिवानी जी, आपको कल एक पार्टी में बुलाया गया था, आप एक पार्टी से होके आए और क्योंकि पार्टी में बहुत लावश फूड था और आपको लगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो नेक्स्ट डे आप जो रेगुलर मॉर्निंग में आप उठते हो, एक अच्छा फील करते हो, आपको लगा बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, तो आपने जो प्लान किया था कि आज शायद आप राजमा चावल खाने वाले हैं, तो आपने कहा कि आज मैं राजमा चावल ना खा के क्यों ना खिचड़ी खाऊं या थोड़ा सा सूप ले लूं, तो मेरे को लाइट फील कर
1: लाइट फील होगा। हाँ।
3: और मैं वैसा करती हूँ, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको एक्सेस शुगर के कारण बोला जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। सिमिलरली इज डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल फास्टिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है हर एक का। अभी आप बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सभी, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है कि हम हर मिनट में देखते हैं कि हमारा क्या नोटिफिकेशन आया। हम अपना सोशल नेटवर्क जो हमारा अभी तक था वो हमारा कम हो गया है, हमारी सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम अक्सर भाग लेते थे वो कम हो गई हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अपने उस स्क्रीन टाइम को कम करना। कम हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल डिटॉक्स।
1: वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उससे सुधर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है कि उससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है?
3: बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल शत प्रतिशत ये बात बोल सकती हूँ। सपोज कीजिए आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका रहता है और आप उसको कोशिश कीजिए कि, मैं एकदम नहीं बोलूंगी आप 4 घंटे के लिए कम कर लीजिए, 1 घंटे से आप शुरू कीजिए, आप 1 घंटा उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपका नींद, जो आपका स्लीप पैटर्न है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। एक बार हमारा स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, जो आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, उससे आपका डेफिनेटली, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आप उसको क्रिएटिव वे में यूज करोगे या सिंपली रिलैक्स करोगे, उससे आप बहुत हद तक आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल इलनेस है, वो डेफिनेटली कम होगी।
1: यानी कि बहुत हद तक जो मानसिक तनाव हमें हो रहा होता है वो बहुत कुछ डिवाइसेज की, इंटरनेट, मोबाइल्स एंड फोन्स की वजह से होता है। मतलब हम उत्सुक हो जाते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए क्या आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्या मोबाइल फास्टिंग की अगर बात करें तो उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है जब हम मोबाइल फास्टिंग कर रहे हैं?
3: ये अभी मैंने अपने एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इस प्लान को, इस पर्टिकुलर मोबाइल फास्टिंग को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप दिन भर के लिए मोबाइल मत यूज कीजिए। ये छुट्टियों से हमने अभी बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया, दिस वॉज ऑन 1st of May वी स्टार्टेड, और ऑलरेडी हम इसको 20 डेज तक कम्प्लीट कर चुके हैं। उनके साथ में जब ये लोग मेरे चैम्बर में होते हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं। जैसे वो मेरे चैम्बर में आते हैं, वो मेरे पास 2 घंटे घंटे के लिए होते हैं, तो उस दो घंटे में कुछ भी इम्पोर्टेंट काम होता है ना, मैं ना वो मेरे बच्चे उन मोबाइल को टच करते हैं। 2 आवर्स तक हमारा मोबाइल बिल्कुल उस बॉक्स में रहता है, कितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हम उसको नहीं देखते, और ये हर रोज का पैटर्न हो चुका है। और मैं माई सेल्फ आई डू इट विद माई फैमिली, मेरा एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन मोबाइल को हम लोग टच नहीं करते हैं, दैट इज दैट डे हम प्लान करते हैं कि मोबाइल को टच नहीं करना। तो उस दिन हम क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता हमको, बट ऑब्वियस आपके पास चॉइस ही नहीं होती कुछ। तो इनिशियली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं एक दिन बिल्कुल किसी को नहीं बोलूंगी जो शुरुआत में कर रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे से शुरुआत करेंगे जहां आपको लगता है कि अभी कैन बी अ फैमिली टाइम। सपोज हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं शिवानी, तो हम भी ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि आज डिनर टाइम है, हम लोग इस टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे। एक मोबाइल बॉक्स रख दिया, उसमें मोबाइल को रख दिया गया, और हम उस टाइम पे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज मम्मा आपने क्या किया, मम्मा आपका दिन कैसा निकला, डैडी आपके ऑफिस में क्या क्या हुआ, बच्चे अपना क्योंकि वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में है, उनके साथ कैरम हो सकता है, उनके साथ कुछ बुक रीडिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ स्टोरी चलेगी, घर में दादा दादी है तो हमको स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा इवन बुजुर्ग भी हर टाइम मोबाइल को लेके बैठे होते हैं, तो उनके साथ भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनसे हम कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसे खेल जो उनके जमाने में होते थे, हम वो चीज भी उनसे सीख सकते हैं, तो एज अ फैमिली वो खेला जा सकता है।
4: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्पेशली डिनर के टाइम पे, ब्रेकफास्ट या जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, तब अगर हम डिजिटल डिटॉक्स पूरी तरीके से करें, ना कि सिर्फ हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि टेलीविजन का भी इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे से बातें करें, दिनचर्या के बारे में पूछे, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा और एक दूसरे के बारे में जो जानकारी हमें नहीं पता है वो मिल जाएगी हम लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। एकता सरीन जी, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या चुनौतियां हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स, अगर हम लैपटॉप्स यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे, तो उसकी कोई चुनौतियां तो होंगी।
3: डेफिनेटली चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। इनिशियली बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन जैसी चीजों की, आप अपने यूज टू हो उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना बड़ा हुआ है। आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में आप बैठते हो या किसी भी पार्टी में आप जाते हो, हर कोई अपने मोबाइल के साथ बैठा होता है। आप कोई रेल यात्रा कर रहे हो, आपको पुराना टाइम याद होगा कि आपस में पैसेंजर्स डिस्कस करते थे, आजकल हर कोई अपने मोबाइल के साथ में होता है। आप वो साइड सीन जो साइड में दिख रहे होते थे वो आप मिस कर जाते हो कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन सा सीन था, कोई वाटरफॉल्स आए, कोई फील्ड्स आए। बच्चों को पता नहीं होता कि आजकल आपका ट्रैक्टर्स का यूज कैसे हो रहा होता है फील्ड्स में, उनको स्पेशली लेके जाना पड़ता है गांव में दिखाने के लिए, या पॉटर्स व्हील किस तरह से यूज होते हैं। तो ये सब चीजें बच्चे आराम से देख सकते हैं ड्यूरिंग रोड जर्नीज, ट्रेन जर्नीज। इवन मैं बोलूंगी जब हम रोड जर्नी पे भी साथ साथ हैं, उस टाइम पे भी हम पर्टिकुलरली डिजिटल डिटॉक्स रख सकते हैं कि उस टाइम पे हम यूज ना करें और शेयर करते हुए जाए स्टोरीज, क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हम आपस में शेयर कर सकते हैं, क्या हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं, लेट्स डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड। कुछ पेड़ों के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है, किस तरह की चीजें, किस तरह से आपका वाटर फ्लो है आसपास के जगहों पे, क्या आपका वाटर इनटेक चल रहा है उस एरिया में, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो जीके भी बच्चे का बढ़ता है और हम मोबाइल से भी अपने आप को दूर करते हैं। और जहां तक चैलेंजेस की बात होती है, अगर हम उस चीज में अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे उस डिस्कशन में, तो बच्चे का ध्यान मोबाइल से दूर हटेगा, ग्रेजुअली हम भी एज अ एडल्ट उससे दूर हो पाएंगे।
4: जैसे एडल्ट्स की आपने बात की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम भी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, और स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये चीजें भी हो रही है, डिवाइस उनके साथ है, तो डिजिटल डिटॉक्स तो हो नहीं रहा है। ऐसे आपने बताया कि सीनरी हम मिस कर रहे होते हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स अगर ये हम करें सही मायने में, तो क्या उससे नींद में भी सुधार आ सकता है?
3: बिल्कुल, इंसोम्निया एक बहुत, एज ए काउंसलर मैं रेगुलरली ये केसेस देख रही हूँ। बच्चे जो देखिए, आप सोचिए 3-3 बजे तक बच्चा अगर जगा हुआ है, और सुबह तो उसका स्कूल टाइम 7 o'clock, बस का रिपोर्टिंग टाइम होता है, या इवन स्कूल पहुंचने का भी 7:30 बच्चों को पहुंचना होता है, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी 8-7 के आसपास में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर बच्चा देर रात तक सोता है और मोबाइल के पास में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी नींद पर फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा जो ब्लू लाइट मोबाइल से आपको मिलती है, बी द स्क्रीन टाइम, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो टेलीविजन है और बच्चा अंधेरे में स्पेशली जब उसका यूज करता है, फॉर श्योर उसकी आई साइट पे भी फर्क पड़ता है। ना केवल ये, आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, इसके कारण बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा है। आप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले होती थी वो आप नहीं कर रहे हो, आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए हो, कभी आप छोटे स्क्रीन पे हो बी एट ए मोबाइल स्क्रीन, और कभी आप टेलीविजन पे हो या इवन अपनी रील्स बना रहे हो उसमें भी आप स्क्रीन पे ही बैठे हुए हो। उसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नॉट जस्ट कि आपको नींद में प्रॉब्लम आती है बट इवन आपको अदर डिजीज, आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज की शिकायतें आ रही हैं, हृदय रोग उनके बढ़ते जा रहे हैं। रीजन यही है कि उनका सिटिंग टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी सामाजिक गतिविधियां नियरली लिस्ट पे आ गए हैं। तो अगर हम, ये बेस्ट टाइम है वेकेशन, एक बेस्ट टाइम है, मैं पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी, मेंटोर्स को भी, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को, जो भी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वहां पर बच्चे इकट्ठा हो, उनसे कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं विच कैन बी अ लेसन फॉर एवरी फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने आप में रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स करेंगे उनको देख के बच्चा ऑटोमेटिकली वो पिकअप करता है।
4: एकता जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि मना कैसे करें हम बच्चों को, कि क्या हम एकदम से उनको डांट दे कि नहीं आप डिजिटल डिवाइसेस को नहीं छुएंगे, या थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा टाइम लगेगा जहां पे वो समझ सकेंगे धीरे धीरे, और क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, मतलब अगर हमने अभी मना किया बच्चे को कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं छुएंगे, आप ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती है, क्या वो एज ग्रुप के हिसाब से है या रिप्लेसमेंट्स आसान है बच्चों के लिए?
3: आई थिंक बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप वो समय याद कीजिए जब मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, आप याद कीजिए कि उस समय पे मोबाइल नहीं थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग अप में कुछ फर्क आया था, क्योंकि ये बच्चा मिलेनियल बच्चा है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जब वो बच्चा बॉर्न होता है उसको आसपास स्क्रीन्स ही दिखाई दिए हैं, दे आर अ डिजिटल चाइल्ड, लेकिन उनको हमें उसे समझाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। कभी कभी हमें प्यार से बताना होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना होता है, और कभी कभी प्लेवे मेथड यूज करना होता है, लेकिन यू शुड नॉट बी रूड विद देम, ट्राई टू बी लिटिल सॉफ्ट, और करके दीजिए। जब आप खुद करोगे बट ऑब्वियसली बच्चा करेगा। मुझे याद आता है एक जर्नी, जब मैं दिल्ली से भोपाल ट्रेवल कर रही थी, उसे मेरा बेटा वॉज नियरली 6-7 ईयर्स का रहा होगा, तो मुझे बुक का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मेरे पास, मैं अपना एक नॉर्मल रीडिंग कर रही थी उस टाइम, और बेटे को क्योंकि कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने कॉमिक हाथ में लिया हुआ था, आसपास के बच्चे मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मुझे किसी ने पूछा कि मैम ये बेटा बहुत देर से बैठा हुआ है, उसे पढ़ ही रहा है वो, तो मैंने बोला वो पढ़ भी रहा है और साथ में उसकी मस्ती भी चल रही है। वो आपने देखा होगा उसने उसी कॉमिक बुक में कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको गेम्स साथ साथ में आप कर रहे होते हो, तो वो भी आप एक्टिविटीज भी आप साथ में कर रहे हो, उसके हाथ में पेंसिल बराबर चल रही थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड जिसमें हर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है, लूडो है, इवन आजकल चेस हम खेल सकते हैं, इवन क्रिकेट एज अ फैमिली गेम किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को बोला जाए क्योंकि आप कमेंट्री करो आज, तो आपको उसको बड़ा मजा आएगा, उसको एंजॉय करेगा वो चीज, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज हम करवा सकते हैं। बच्चे के साथ आप साइकिलिंग ट्रिप पे जा सकते हो, लेट्स गो साइकिलिंग टुगेदर, तो आज फैमिली साइकिलिंग डे है, या कुछ कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके आज फैमिली टाइम है, तो कॉलोनी के 5-6 फैमिली से मिलकर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज, आज हम स्विमिंग पूल में साथ में जा रहे हैं, एंड वी हैव अ लिटिल लिटिल फन टाइम, आज स्विमिंग होगा एंड वी हैव अ लिटिल फन टाइम, हाइड एंड सीक कैन बी अ ग्रेट गेम। धूप ज्यादा है, गर्मी है, हम अंदर डार्क रूम खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, और उनके लेवल पे जाके की जा सकती हैं। कुछ हम जोक्स का राउंड, जैसे हम जोक्स, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कीजिए उनके साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं बच्चों के साथ स्पिना यान करती हूँ, स्पिना यान इज लाइक आई स्टार्ट अ स्टोरी एंड दे हैव टू कंटिन्यू इट। सो शिवानी, आज टुडे वॉज अ वेरी ग्रेट डे, यू नो व्हाट हैपेंड, आई मेट अ film star, you know, so what happened after that, Shivani will ask me that, okay. And then we just continue with the storyline in our own manner. Similarly, I'll ask you, Shivani, so aaj morning mein aapke sath kya kya hua, Shivani? So just tell me something about yourself. So it's a spinna yarn where we give a opening line and they continue with their own yarns, and uski koi right or wrong nahi hota, aur bachche ko we can give chocolates and anything, any prizes, small prizes can be given to them.
4: ओके ये शायद वही गेम है जिसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ना नहीं कहते, हम कंटिन्यू कर रहे होते स्टोरी को,
3: हम स्टोरी को कंटिन्यू करते जाते हैं, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। अगर 10 मेंबर्स हैं तो एवरीबॉडी कैन गिव अ टर्न, हम एक दूसरे को टर्न्स दे सकते हैं, वी कैन इवन हैव फायरलेस कुकिंग टुगेदर, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आज, तो लेट अ चाइल्ड मेक अ लेमनेड समथिंग, सैंडविचेस कैन बी मेड, भेल पूरी कैन बी अ ग्रेट आइडिया। मतलब उस दिन बच्चा किचन में और आप उसको बिल्कुल कुछ ना नहीं बोलने वाले, वो कितना भी मेसी हो जाए, प्लेटफॉर्म उनको कितना भी गंदा करते हैं, बट यू जस्ट एंजॉय कि बच्चा कुछ कर रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट वेरी मच.
4: आपने एकता जी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स बताए जिसका ध्यान हम रखेंगे और की जा सकती है सारी रिप्लेसमेंट्स. कुकिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ. हम जब बच्चों को मना करते हैं कि नहीं आप जो है अभी डिजिटल डिटॉक्स में हैं, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, आप किताब पढ़िए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किताब की ओर, क्योंकि हमारा भी समय ऐसा ही रहा है जहाँ पे हम किताबों के बारे में किताबों को ज्यादा पढ़ा करते थे और किताबों से वाबस्ता होते थे ज्यादातर. तो जब हम बच्चों को बोलते किताब पढ़ने के लिए, ये कितनी सही बात है, कितना मतलब किताब इतनी जरूरी क्यों है?
3: देखिए किताबों से कनेक्ट करना, मुझे लगता है हर घर का एक अनसेट रूल होना बहुत जरूरी है. हम हर जगह रूल्स लिखना जरूरी नहीं होता, अनसेट रूल हो जाना चाहिए एक जगह पे कि ओके आज एक स्टोरी बुक, मैं तो बोलूंगी स्टोरी बुक भी क्यों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी कहानियां कि ओके आज आपने क्या पढ़ा. तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिससे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम में अपने ग्रंथों से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है
4: जी,
3: अपने कल्चर से कनेक्ट करना, क्योंकि आज तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी बात करते हैं भगवद गीता
4: के
3: तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करें. एंड आई थिंक भगवदगीता अपने आप में एक मैनुअल है, इट्स नोन एज अ लाइफ मैनुअल इन एवरीवन्स लाइफ. रामायण इज अ मैनुअल. सो अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज उनको कनेक्ट करते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लेके आते हैं, एंड एट अ टाइम हम उनको बोलते हैं आज अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते. तो बच्चे, आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, दे विल आस्क यू रीजन. तो आपके पास रीजन पहले होना बहुत जरूरी है अगर आप बच्चे को किसी भी किताब से जोड़ रहे हो. ओके रस्किन बॉन्ड, सो क्यों रस्किन बॉन्ड, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर, रामायण तो क्यों रामायण. तो बच्चे को जब हम रीजन देते हैं, ये बच्चा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रीजन मानती है. तो अगर आप रीजन देके चलोगे और सॉफ्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, वापस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. आप खुद मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चों को बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर ले,
4: तू नहीं हो पाएगा,
3: तू रीडिंग कर ले, तू कॉमिक पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा. आप बी अ रोल मॉडल, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट ओके उस समय पापा घर पे आए, 6 बजे का टाइम है, चाय सर्व हो रही है, बच्चे के लिए आपने दूध सर्व किया है, लेट्स हैव अ रीडिंग टाइम, इट्स अ कार्पेट रीडिंग. आप टेबल पे भी मत बच्चे को बैठिए, कार्पेट पर बिठा दीजिए, लेट अ चाइल्ड स्लेप डाउन, रिलैक्स होके कंफर्टेबल चेयर पे हो जाए, बच्चा रीड करे, जो बुक उसको चाहिए वो बुक पढ़े, उसको एक चॉइसेस दे दीजिए. आजकल तो इवन आपकी कार्पेट बुक्स अवेलेबल है, बच्चे को रख लीजिए बुक्स, इवन आजकल वॉल्यूम बुक्स अवेलेबल है, वॉइस राइट प्रोनाउंसिएशन भी बच्चे को समझ में आएगा. और उस टाइम पे बच्चे को टोकिए मत, अगर बच्चा कुछ गलत भी रीड कर रहा है, डोंट से योर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज रीडिंग फॉर प्लेजर. बच्चा उसकी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने वाला, लेट द चाइल्ड एंजॉय रीडिंग. अगर बच्चा एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसको हर तरह की रीडिंग में मजा आएगा.
4: और यही बात एडल्ट्स के लिए भी लागू है एकदम.
3: बिल्कुल
4: जी हाँ. जहां तक हम इस फास्टिंग की बात करते हैं, मोबाइल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए, मतलब एक दिन, एक सप्ताह, उसके बाद क्या, मतलब कब तक हम उनको बोले, या कि दिन में हम बांध ले कि नहीं

0: आपको अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाना है. आई एम प्लानिंग कि मैं 6 से 7 शाम को मोबाइल नहीं देखूंगी. आपके हिसाब से कौन सा टाइम आपके लिए ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर. 1 घंटा हम मोबाइल नहीं देखेंगे या 1 घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे. इट्स कैन स्टार्ट विद 1 आवर और ग्रेजुअली हम उसको लंबा टाइम लेके जा सकते हैं. अच्छा ठीक है, मैं उस 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ? फिर मम्मा वो पूछेगा आपसे. सो आप वहाँ पे चॉइसेस दे सकते हो. उससे बुलवाइए. ओके, उस टाइम पे आप फुटबॉल खेलना पसंद करोगे क्या? या उस टाइम क्या हम फैमिली डिस्कशन करें क्या? या उस टाइम आप स्विमिंग पूल जाओगे क्या बेटा? और अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में, तो व्हाई नॉट आप डांसिंग भी जा सकते हो. सो लेट द चाइल्ड डिसाइड नाउ. जब हम बच्चे को मौका देते हैं तो वो आपकी बात सुनता है. अगर आप उसको डिक्टेट करते हो तो बच्चे को लगता है कि वो थोड़े समय के लिए है और वो उसको भूल जाएगा. द आइडिया इज लेट द चाइल्ड डिसाइड. तो आप उसको बोल सकते हो कि ओके, जो आपने प्लान किया था वो वर्क कर रहा है क्या? 1 हफ्ते बाद हम एक क्वेरी कर सकते हैं. बेटा आप मुझे चेक करना मेरा, अगर मैं 6 से 7 में कुछ और मोबाइल लेके बैठ रही हूँ तो प्लीज मुझे बताना कि मैंने मोबाइल उठाया था उस टाइम पे. सो जस्ट चेक, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू. लेट्स मॉनिटर ईच अदर.
1: ओके ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लान है जहाँ पे हम बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि बताइए आपका प्लान क्या है, उसी मुताबिक हम भी आपसे बात करेंगे. और देखा गया है कि आजकल जैसे सामाजिक संबंध है, सोशलाइजिंग की अगर बात करें, तो लोगों को लगता है बच्चों को स्पेशली कि हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही सामाजिक संबंध है. तो अगर हम डिजिटल डिटॉक्स भी करते तो उससे हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकते हैं?
0: इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रायोरिटी अभी क्या लगता है कि उनको मोबाइल देखना, उनका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है. सो लेट्स मेक इट एज अ फैमिली डिसीजन कि इस टाइम पे हम 4 फैमिलीज आपस में मिल रहे हैं तो उस समय पे हम लोग मोबाइल कैरी नहीं करेंगे. उस टाइम पे हम कुछ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, उस टाइम पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से. अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, और पॉइंट आउट मत कीजिए बच्चा क्यों घबराता है सामाजिक गतिविधि से, कि उसको लगता है उससे पूछा जाएगा.
1: अच्छा,
0: कि आपके मार्क्स कैसे आए बेटा.
1: राइट.
0: इस तरह की चीजें भी हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तो बच्चा नेगेटिव चीजों से भागना है. उसको क्यों अच्छा लगता है फेसबुक फ्रेंड्स, क्यों अच्छे लगते हैं डिजिटल फ्रेंड्स, कि वहां पे उससे क्वेश्चनिंग नहीं होती है. वो जो कर रहा होता है उसको लाइक्स मिलते हैं, तो बेसिकली वो लाइक्स का भूखा है. उसको लाइक्स दीजिए. आज यू लुकिंग वेरी हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, लाइक योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल. सो उसको आप अगर लाइक्स देते रहोगे, लाइव लाइक्स मिलेंगे, तो वो क्यों डिजिटल की तरफ जाएगा?
1: सही बात.
0: सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली में तारीफ कीजिए. किसी और का इंतजार मत कीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा है. आप एक दूसरे की तारीफ कीजिए और बच्चा वो सीखेगा, घर में ही सीखेगा कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना इम्पोर्टेंट है. दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. हम क्यों देखते हैं हमको कितने लाइक्स मिले? क्योंकि हमें घर में तारीफ नहीं मिल रही.
1: सही बात.
0: ये मैं अडल्ट से भी बात करती हूँ. हस्बैंड वाइफ जब मेरे पास एज अ मैरिटल काउंसलिंग आते हैं तो मैं बोलती हूँ, एक दूसरे की तारीफ, आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था लास्ट? हैव यू गिवन ईच अदर अ हग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? सो जस्ट ट्राई टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर. बच्चा जो देखता है वो एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करता है. सो लेट्स हैव अ लाइकिंग फॉर ईच अदर. तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो फैमिली में एक पॉजिटिव ऑरा देखेगा, थिंग्स विल गो ऑन.
1: ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही एकता सरीन जी, कि कितना जरूरी है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे की तारीफ करना. बच्चे भी उससे सीखते, उससे मनोबल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और कंपैशन भी पैदा होता है, एक एम्पैथी पैदा होती है, जिससे बच्चों में सुधार आ जाता है. सो अब हमने किताबों की भी बातें की, मुझे आप बताइए आजकल जैसे कि जैसे ऑडियो बुक्स की आपने बात की, जो कि अच्छी बात है सुनना, लेकिन अगर बच्चे चाहते कि नहीं हम जो है मोबाइल से ही PDF पे या किताबें डाउनलोड करके पढ़ें, तो ये ठीक है कि उससे भी कुछ असर पड़ता है आंखों पे अगर मोबाइल पे ही किताबें पढ़ते रहे बच्चे?
0: देखिए, मोबाइल पे किताबें पढ़ने से बेटर है PDF वाला ऑप्शन, है ना? क्योंकि मोबाइल पे अभी किंडल पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. इवन मैं आपसे शेयर कर लूंगी कुछ कुछ इस तरह के साइट्स भी, जो हम आराम से बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं. कुछ लाइब्रेरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि फिजिकल बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कनेक्टेड रहते हो किसी फिजिकल बुक से, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली. और हम बिल्कुल बच्चों को बांधे नहीं कि बच्चा यही पढ़ना है. अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी स्पोर्ट्स पे बुक्स है. अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट इंसाइक्लोपीडियाज पे है, बच्चा उसको कनेक्ट करे अपने आप को. अगर उसको साइंस पे इंटरेस्ट है, बच्चा साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है. अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है, तो बच्चा फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है. तो उसकी बेसिकली स्किल्स को हमें बढ़ाना है, कि वो स्किल्स पे अपने आप को फोकस करे. कि हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए पढ़ने के बाद, उसकी विकैबुलरी बहुत एनरिच

0: जाए, तो अगर वो बढ़ती है, आप उसको ये भी साथ में बोलिए कि ओके, आपने अगर ये एक पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी है, आपने ये तीन वर्ड्स उसमें से देखे हैं, तो हम उसको कैसे और अपनी उस वोकैबुलरी को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लैंग्वेज में, इवन दैट विल हेल्प यू आउट एनरिच योर वोकैबुलरी। तो तारीफ कीजिए, ओके आज आपने इस वर्ड का यूज किया, दैट्स वेरी नाइस, ये वर्ड आपने कौन सी बुक में पढ़ा था, तो बच्चा आपको बताएगा, इवन आप भी कुछ नया वर्ड यूज कर सकते हो और आपको भी अंदाजा रहेगा।
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इससे एक खेल जैसा माहौल भी शुरू हो जाता है जहाँ पे हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, जो नए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पूछते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, क्या बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है जब वो लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, क्या उनके ध्यान केंद्रित करने में भी सुधार होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम देख रहा है तो उसका नोटिफिकेशंस थ्रू आउट वो देखता रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली उसका बढ़ेगा, क्योंकि वो उस चीज़ से हट के वो कुछ और नया कर रहा है और उसका बराबर ध्यान से स्क्रीन में नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है, उससे डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है। सो बच्चे को अगर हम उस एक घंटे के लिए सिंपली मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, या ठीक है आप बेटा आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाओ, या आप सिर्फ एक जगह पर सिर्फ सिटिंग दे दो, क्योंकि बच्चों को आजकल एक जगह पर बैठना भी अपने आप में एक टास्क होता है, तो ठीक है आज हम एक जगह पर बैठते हैं, नॉट मूव फ्रॉम देयर, सो लेट्स सिट। यहाँ एक उनको फोकस करते हैं कि कौन आंखें पहले ब्लिंक नहीं करेगा, उससे भी वो गेम भी गेम का गेम हो जाता है कि ठीक है हम लोग आपस में एक गेम खेलते हैं जिसमें आंखें कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा, दैट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो उसमें भी हम ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को, तो डे बाय डे अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे और वो सब करेंगे, या एक पॉइंट लगा लीजिए आप वॉल पे और बच्चा उसको देखेगा, तो कैसे हम देख सकते हैं, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो, पेंसिल एक सामने रखिए और पेंसिल को बच्चा मूव करे टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, उसका आई मूवमेंट बढ़ेगा, उसमें उसका आईज का कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेंटल लेवल, पीस दोनों में फर्क आएगा।
1: ओके, पीस की जहाँ आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा तनाव आ जाता है इस वजह से कि ज्यादा चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं, या बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ गया है, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कंटेंट को हम कैसे समाएं, क्या करें इस कंटेंट का। तो जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, क्या इसमें टेलीविजन भी आता है? कि वैसे तो आजकल बच्चे टेलीविजन पे रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं देखते, यूट्यूब पे ही जो उनका कंटेंट होता है वही देखते हैं, एड्स को स्किप करके करते रहते हैं, प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें टेलीविजन का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कार्टून नेटवर्क्स देखना या ये चीज़ों पे भी हमें थोड़ा बहुत जो है लगाम लगानी पड़ेगी?
0: बिल्कुल, देखिए डिजिटल डिटॉक्स में जब बात आती है तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों वर्क करते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन जैसे कि आपने खुद बताया कि बिग स्क्रीन बच्चे को लिमिटेड टाइम के लिए ही चांस मिलता है, मोबाइल छोटा स्क्रीन उसके पास हमेशा ही रहता है, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन तो स्क्रीन ही है। अगर आप लाइट ऑफ करके बराबर टीवी भी देख रहे हो, आजकल तो बच्चे इवन कनेक्ट भी कर लेते हैं, कनेक्ट करके यूट्यूब भी आप टेलीविजन पे देख लेते हो, तो इवन ऑल दोज थिंग्स मैटर, स्क्रीन तो स्क्रीन ही है ना मैम, तो डेफिनेटली उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल इलनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लैक करता है वहां पर, तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। अगर हमने प्लान किया है तो उस समय पे हम टेलीविजन भी नहीं देखेंगे।
1: ओके, तो आज हमने बातें की इस बारे में एकता सरीन जी से, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज हमें हासिल हुई, और कितना ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, और जो डिजिटल मीडिया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, और बच्चों का और मन लगा रहेगा इन कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो आज़ाद हिंद पर आई। तो ये है देश का चैनल देश के लिए, टेक गुरु प्रोग्राम हम आपके लिए लेते आएंगे जिसमें हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एकता सरीन जी।
0: थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस स्पीकिंग टू यू शिवानी जी।
1: थैंक यू सो मच, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज का विषय था डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग। जानकारी दे रही थी विषय विशेषज्ञ एकता सरीन। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: फरवरी 1537 में गुजरात के तट पर खारे पानी की लहरें एक ऐसी कूटनीतिक त्रासदी की गवाह बनी जिसने 100 से अधिक वर्षों तक एस्टाडो द इंडिया की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग लगा दिया। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर की मृत्यु। सुल्तान बहादुर एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का संचालन कर रहा था और पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रयासों में अग्रसर था। हालांकि उसके राज्य का तात्कालिक भाग्य पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा के साथ एक तनावपूर्ण बैठक पर टिका था। यह वार्ता गवर्नर के जहाज पर हुई जिसे बातचीत की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय यह एक घातक विश्वासघात का मंच बन गया। जैसे ही सुल्तान कतूर नामक एक छोटी नाव में गवर्नर के जहाज से जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी मैनुअल डिसूसा भी थे। कुन्हा के बाद के चालाकी भरे विवरण के अनुसार उन्होंने जियाओ डे सेंटियागो नामक एक अनुवादक के माध्यम से सुल्तान को अंतिम संदेश भेजने का प्रयास किया था। उस पल के भ्रम में मैनुअल डिसूसा सुल्तान की अपनी छोटी नाव फुस्टा पर सवार हो गए। कुन्हा ने आरोप लगाया कि सुल्तान ने ही पहले हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही डिसूसा ने नाव पर कदम रखा, बहादुर ने अपने आदमियों को उन्हें मार डालने का आदेश दिया। जवाबी कार्यवाही में आसपास के नाव से पुर्तगाली सैनिकों ने सुल्तान की नाव पर धावा बोल दिया। इस हाथापाई के बीच वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुल्तान बहादुर पानी में गिर गए और संघर्ष और लहरों के बीच डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। गवर्नर कुन्हा ने इस घटना को अपने राजा के सामने एक दैवीय कृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश की जिसने क्षेत्र की शांति सुनिश्चित की थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। एक औपचारिक वार्ता के दौरान एक संप्रभु राजा के डूबने की घटना ने पूरे एशिया के दरबारों में पुर्तगालियों की धोखेबाज छवि पक्की कर दी। कई लोगों ने इसे एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट की सोची समझी हत्या माना जो पुर्तगाली ताज का एक वैध कूटनीतिक भागीदार था। इस क्षण के अपराध बोध की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। इस घटना ने ऑटोमन साम्राज्य को हिंद महासागर में हस्तक्षेप करने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रैंक्स अर्थात पुर्तगालियों के विश्वासघात से मुस्लिम शासकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस घटना को अकबरनामा ने भी अमर कर दिया। एक 17वीं सदी की लघु पेंटिंग सुल्तान को पुर्तगाली नावों से घिरा हुआ दिखाती है जो साम्राज्य की जवाबदेही की कमी का एक अदृश्य रिकॉर्ड है। बहादुर शाह की मृत्यु ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक गवर्नर की कार्यवाही दशकों की कूटनीति को कमजोर कर सकती थी जिसमें अविश्वास और संघर्ष की एक ऐसी विरासत पैदा हुई जिससे पुर्तगाली कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके।
2: नजी भर के देखा

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भिखारी ठाकुर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
2: और अब समय है कार्यक्रम भारत विभूति का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा
3: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
2: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भारत विभूति भिखारी ठाकुर की। श्रोताओं, इस धरती पर कुछ लोग जन्म नहीं लेते बल्कि मिट्टी उन्हें अपने हाथों से गूंथ कर रचती है। वे लोग हवा में उड़ते नहीं, पेड़

0: कहानी का छंद बन जाता है, जहां खेतों की मिट्टी अपनी खुशबू में भी कविता रचती है। उसी माटी ने रचा, उसी माटी ने संवारा, उसी माटी ने दुनिया को सौंपा एक अनमोल रत्न, जिसे आज पूरी दुनिया भोजपुरी का शेक्सपियर कहती है। वो थे भिखारी ठाकुर।
1: भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा में एक साधारण परिवार में हुआ। ये वही गांव था जो पहले शाहबाद जिले, जो कि अब भोजपुर है, उसका हिस्सा माना जाता है। पर 1926 में गंगा की धारा बदलने से ये क्षेत्र सारण जिले में शामिल हो गया। उनके ननिहाल का बसेरा आरा में था, जहां से उन्हें बचपन में स्नेह और संस्कार दोनों ही मिले। वो दलसिंगार ठाकुर के पुत्र थे। माता शिवकली देवी सरल, कर्मठ और गृहस्थी संभालने वाली स्त्री थी। भिखारी दो भाइयों में बड़े थे। छोटे भाई का नाम बहोर ठाकुर था। घर में गरीबी थी, पर प्यार और लोक संस्कृति की गर्माहट कभी कम ना हुई।
0: पर प्रकृति ने उनका मन किसी और ही ताल पर रखा था। वे औपचारिक शिक्षा से वंचित होकर भी उनके लोक जीवन में खेत खलिहान की पगडंडियां नापना, नदी की हवा में गांव के गीत सुनना, सब कुछ गहराई से दर्ज था। गरीब परिवार, जहां पर रोटी मुद्दा था, कपड़े फट जाते थे और चिंताएं कभी नहीं रुकती थी। बचपन में वो मिट्टी से छोटी गुड़िया बनाते, उनसे बातें करते, उन्हें रुलाते, हंसाते, सुलह करवाते, जैसे कोई अकेला बच्चा नहीं, एक पूरा नाटक मंडल उनकी मुट्ठियों में खेल रहा हो।
1: भिखारी तब छोटे थे, बस वही उम्र जब बच्चे खेलते तो हैं, पर सपनों में उनसे भी ज्यादा दौड़ते हैं। गांव की कच्ची गलियों में नंगे पैर भागता हुआ भिखारी हर चीज में जादू ढूंढ लेता था। कभी वो बांसुरी की किसी अनजानी तान में खो जाता, कभी मंदिर के भजन के शब्दों के भीतर छिपी किसी आग को महसूस करता। चूल्हे की आंच में उन्हें कहानियों की लपट दिखाई देती और खेतों की सरसराहट में नाटक के संवाद सुनाई देते।
0: बचपन से ही उसे मोह था ढोलक की आवाज का, मंच के रंगों का, जहां कोई आदमी किसी और का रूप धरकर जीवन से भी बड़ा बन जाता था। बचपन बीत गया जैसे कोई नदी चुपचाप बहकर नए मोड़ पर पहुंच जाए।
1: भिखारी ठाकुर के पिता दलसिंगार ठाकुर सीधे साधे मेहनत से जीने वाले व्यक्तित्व थे। उनकी हथेलियों पर खेतों की मिट्टी और जीवन की थकान दोनों ही जमी रहती। उनकी एक ही चाहत थी, भिखारी वही काम करे जो पीढ़ियों से उनका घर संभालता आया है। लोगों के बाल बनाना, शादी ब्याह में सेवाएं देना, उसी से रोजी रोटी कमाना। भिखारी ठाकुर अपने पुश्तैनी काम का सम्मान खूब किया करते, लेकिन उनके भी सपने कुछ और थे। पिता भिखारी जी को समझाते हुए कहते,
2: बेटा, कविता कहानी गाना बजाना मन बहलावे खातिर ठीक बा, बाकी जीवन ऐसे ना चलेला। अगर हवा के रंग धरे में लागब तो जिंदगी के धूप में जुड़ी जाई। भिखारी ही दुनिया सपना से ना चल, हुनर धर हाथ में तबे घर गृहस्थी चल पाई।
0: भिखारी सर झुका के सब सुनते रहे। यौवन में पहुंचते पहुंचते वो अपने पारिवारिक पेशे में उतर आए। किशोर उम्र में ही उनकी शादी मतुना से हुई। इस विवाह ने भिखारी ठाकुर के जीवन को नया आयाम दिया, जहां घर की जिम्मेदारी और प्यार का सहारा मिला। मातुना के साथ जीवन की शुरुआत भिखारी ठाकुर के लिए एक नई राह बन गई, जहां प्रेम और परिवार की मजबूती उनके भीतर की कविता और लोक संगीत को धीरे धीरे पंख देने लगी।
1: 1911 में उनके पुत्र शिलानाथ ठाकुर का जन्म हुआ। घर में नई उम्मीद का उजाला फैल गया, लेकिन खुशियां कहां ही लंबी चलती हैं और समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन गांव की मिट्टी उस साल अजीब सी लग रही थी, सूखी फटी हुई, जैसे उसके भीतर रोती हुई नदियों की लकीरें छिपी हों। हवा में धूल थी, खेतों में सन्नाटा और आसमान में बादलों के नाम पर बस उम्मीद की राख उड़ रही थी। भिखारी ठाकुर दलसिंगार और शिवकली का बेटा अपने घर की हालत को धीरे धीरे बिखरते हुए देख रहे थे। रसोई में अनाज का आखिरी दाना भी माँ की मुट्ठी से फिसल चुका था। चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था।
0: बचपन से सरल, विनम्र, दूसरों के दुख को अपना समझ लेने वाला वो युवक जब अपनी ही माँ की थकी आंखों में मजबूरी का कांपता हुआ साया देखता तो उसके भीतर का सारा साहस डगमगा उठता। फिर आया 1914 का काल, जिसने जैसे पूरे गांव की खुशियों को निगल लिया। कहीं घास नहीं, कहीं दाने नहीं, लोग अपने ही आंगनों में अजनबी बनते जा रहे थे। इन्हीं दिनों भिखारी ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती,
2: वो आत्मा को भी छोटा कर देती है।
1: और उसी रात जब घर में भूख की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो नहीं रुक सकता। माँ के पैरों को छूकर बोला,
2: तुहार आशीर्वाद चाही माई, एक दिन हमें सबके ठीक कर देव। और इस तरह भिखारी ठाकुर अपने फटे झोले में दो जोड़ी कपड़े, कुछ सपने और बहुत सारी मजबूरियां लेकर परदेश की राह पर निकल पड़े।
1: वो चल पड़े कुतुबपुर तियारा गांव से छपरा, छपरा से हाजीपुर और फिर ट्रेन पकड़कर कलकत्ता। ट्रेन में पहली बार इतने लोग देखे, इतना बड़ा शहर देखा, इतना शोर, पर उनके दिल में केवल एक ही सपना था, कमाई करूंगा, घर भेजूंगा और परिवार का जीवन बदल दूंगा।
2: श्रोताओं, उस समय कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर था। गांव के शांत माहौल से आया एक साधारण युवक भिखारी ठाकुर जब इस शहर पहुंचा तो शहर ने उसका खुले हाथों से स्वागत नहीं किया। गांव से निकले भिखारी जी पहली बार इतने बड़े शहर में आए थे, जहां लोग भागे जा रहे थे, कहीं ठहराव नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं, स्टेशन की भीड़, अजनबी चेहरे, ऊंची ऊंची इमारतें, अलग तरह की बोलचाल, गंगा से अलग हुगली का विशाल घाट, ये सब देखकर वो हैरान हो गए और मन ही मन में कहा, हम इस शहर में रह पाइब का।
1: कलकत्ता पहुंचते ही सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। पैसा कम था, रिश्तेदार कोई था नहीं, कई दिनों तक घाट किनारे रात गुजारना, मजदूरों के साथ किसी कोने में सो जाना, फुटपाथ पर जगह ढूंढना, ये सब उनके हिस्से आया। कलकत्ता में रोजगार तो था, लेकिन गांव से आए, पढ़े लिखे नहीं थे, पहचान भी नहीं थी, ऐसे इंसान को तुरंत कौन काम देता है भला। भिखारी ठाकुर जैसे साधारण युवक के लिए जगह बनाना एक बड़ी चुनौती थी।
2: उनकी दुनिया बीच बीच में उकड़ती दीवारें थी, टूटी चौखटें थी और लोगों के दुख भरे चेहरे थे, लेकिन इसी दुनिया से वे सीख रहे थे कि मनुष्य का असली विश्वविद्यालय मिट्टी होती है और मनुष्य का असली शिक्षक दर्द होता है।
1: ऐसे में उन्होंने सबसे पहले वही काम पकड़ा जिसे वो सबसे अच्छी तरीके से जानते थे, अपना पुश्तैनी काम, बाल काटने का काम, वही कोलकाता में शुरू किया। कहते हैं कि हावड़ा स्टेशन के आसपास और मजदूर बस्तियों में वो छोटे से बक्से में उस्तरा, कैंची और कंघी रखकर बैठ जाया करते। सुबह से शाम तक लोगों के बाल बनाते, हजामत करते और कुछ पैसों में दिन काटते। उनके लिए ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाने का संघर्ष था।
2: श्रोताओं, कलकत्ता में वो अक्सर रामलीला देखने जाते, वो मंच जहां देवत्व और मानवता एक साथ चलती है, जहां दुख भी है, धर्म भी, और धूल में छिपे आदर्श भी। इन्हीं रंगमंचों से उन्होंने अभिनय का मंत्र सीखा और शब्दों को जीवित रूप में ढलते देखा। यहीं से उनके भीतर नाटक लिखने और मंच पर जीवन को उतारने की अंतर यात्रा शुरू हुई। इसी शहर में उन्होंने पहली बार सिनेमा का जादू भी देखा। चलती तस्वीरों में कहानियों का उगना उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगा।
1: फिर उनकी मुलाकात हुई बाबूलाल से, जो बिहार का रहने वाला था और एक नाच हॉल चलाता था। बाबूलाल से मिले अनुभवों ने उनकी कला को नए आयाम दिए। मानो लोक धुनों में बसी सादगी और शहर के रंगों में छिपी चपलता एक साथ उनके भीतर संगीत रच रही हो। आखिरकार इन सब अनुभवों को अपनी झोली में समेटे वो वापस अपने गांव लौट आए। गांव लौटना उनके लिए घर की देहरी पर लौटना भर नहीं था, ये तो एक कलाकार का अपने स्रोत, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के पास फिर से लौट आना था।
2: और जब वो गांव पहुंचे तो लोगों में हलचल फैल गई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने शक किया। चौराहे पर बैठे एक बूढ़े ने तंज कसा, हे भिखारी, बिटवा नाटक करी, यही काम से पेट भरी।
1: दूसरा व्यक्ति बोला,
3: गांव में नाटक तमाशा के का जरूरत बा, लोग हंसी उड़ाई।
1: भिखारी चुपचाप मुस्कुराए, उन्हें मालूम था कि रास्ता आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों को तैयार करना। कोई कहता,
3: हमरा घरवाली मानत नहीं खे।
1: कोई कहता,
3: नाटक नौटंकी में बदनामी होई।
1: धीरे धीरे कुछ युवा तैयार हुए, लेकिन अभ्यास के लिए जगह ही नहीं थी। भिखारी ठाकुर ने अपने घर के टूटे आंगन में लालटेन जलाकर रिहर्सल करना शुरू किया। लोग दूर से झांकते, हंसते और फप्तियां कसते। एक शाम किसी ने तेज आवाज में कहा,
3: भिखारी दा, ई नाटक से का होई, खेत खलिहान छोड़ी के नटुआ बनब?
1: भिखारी शांत स्वर में बोले,
3: कला खेला ना जनाब, मनुज के जियल जिंदगी के सांच हा। और फिर कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने पहला नाटक तैयार किया, उनका छोटा सामाजिक नाटक जो गांव के झगड़ों और व्यसनों पर आधारित था। गांव के मेले में मंच लगाया गया, लोग बड़ी संख्या में देखने आए, लेकिन जैसे ही नाटक शुरू हुआ समस्याएं आनी शुरू हो गईं। कलाकार मंच पर चढ़ते ही संवाद भूल गए, ढोलक की चमड़ी फट गई, लालटेन हवा से बुझ गई, दो कलाकार आपस में झगड़ पड़े और भीड़ हंसने लगी।
1: गांव के कुछ शरारती लड़कों ने चिल्लाया,
3: एगो नटुआ मंडली, यहाँ इसे नाटक हो खेला।
1: भिखारी मंच पर खड़े थे, भीतर तक टूट चुके, नाटक अधूरा ही बंद करना पड़ा। उस रात मंडली के कई लोग डरकर भाग गए। एक ने जाते जाते कहा,
3: भिखारी दा, अब हमसे ये सब न हुई, कौन करेगा नाटक? लोग कहते नाटक करना नीच काम है, इसलिए शुरुआत में भिखारी ठाकुर के नाटकों में भिखारी खुद सबको समझाते, मनाते, हिम्मत देते, ये कला की सेवा है, समाज की सेवा। अगले दिन भिखारी ठाकुर ने टूटे लालटेन की बत्ती ठीक की, ढोलक के फटे हिस्से पर नया चमड़ा चढ़ाया और बचे हुए कलाकारों से कहा, हार मान लेब तो हमनी से बड़का कायर केहू न होई, फिर से शुरू करब। भिखारी ठाकुर हर दिन हर रात बस यही सोचते, हमरा गांव के लोगन के दुख पीड़ा बेचैनी, ये सबके आवाज देहल जरूरी बा।
1: एक दिन भिखारी ठाकुर गांव में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बाप अपनी नाबालिग बेटी का ब्याह पैसे के लिए कहीं दूर तय कर रहा था। लड़की डरी हुई थी, माँ रो रही थी और गांव चुप, बिल्कुल चुप। ये दृश्य भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गया। रात को वो नींद नहीं ले पाए, यही कच्ची पीड़ा धीरे धीरे बेटी बेचवा के रूप में आकार लेने लगी। जब मंडी ने बेटी बेचवा खेला तो वही लोग जो कल तक हंस रहे थे आज भीड़ में चुपचाप खड़े रो रहे थे। गांव की औरतें अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी, पुरुष सिर झुकाए खामोश खड़े थे। किसी ने भिखारी ठाकुर से आके कहा,
3: भिखारी तोरा नाटक में हमनी की जिंदगी बोलत बा।
1: और उस रात भिखारी ठाकुर समझ गए कि हंसी उड़ाने वालों से बड़ी ताकत दर्द को आवाज देने वाली कला के पास होती है। जो लोग कुछ दिन पहले उनकी मंडली को नटुआ मंडली कहकर हंस रहे थे, अब सम्मान से बोलते हैं,
3: हे भिखारी जी, आप ता समाज के आंखें खोल देलन।
1: गांव में जब भी मंडली रिहर्सल करती, लोग दूर से आकर चुपचाप देखते। रात के अभ्यास में अब कोई ताना नहीं मारता, बल्कि कोई पानी दे जाता, कोई लालटेन के लिए तेल। भिखारी ठाकुर की मंडली अब गांव की इज्जत बन गई।
0: भिखारी जी का मन और भी मजबूत हो गया। अब उन्हें लगा कि उनका रास्ता सही है। बेटी बेचवा की सफलता ने भिखारी को नई ऊर्जा दी। अब वो सोचने लगे कि गांव में सबसे बड़ा दर्द क्या है, और उन्हें जवाब मिला, परदेसिया का दुख। वो रोज देखते थे युवक रोजी रोटी के लिए कलकत्ता जाते, पीछे रह जाती उनकी पत्नियां, मायके में रोती हुई बहुएं, खाली चौखटें और सूने आंगन। एक दिन भिखारी ने एक औरत को रोते सुना,
4: हमर घरेला परदेश चली गई, हम अकेली पड़ गई नी।
0: यह आवाज उनके दिल में उतर गई। बिचूहों का दर्द, परदेश की मजबूरी, गृहस्थी की टूटन और प्रेम की पुकार, इसी से विदेशिया का जन्म हुआ,
1: जो 1917 में उन्होंने अपनी 30 वर्ष की उम्र में लिखा। यह नाटक सिर्फ कहानी नहीं, गांव-गांव में बजने वाली वेदना की प्रतिध्वनि था। जब पहली बार ये नाटक खेला गया, लोगों की आंखें नम हो गईं। पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, औरतें रो पड़ी और बुजुर्ग बोले,
3: ये नाटक था हमनी के रोज की जिंदगी हा।
1: विदेशिया ने भिखारी ठाकुर की पहचान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब उनकी मंडली की चर्चा पास पड़ोस के गांव तक फैलने लगी।
0: विदेशिया के बाद उन्होंने अपनी मंडली को नए रंग, नई कथाएं और नई जिम्मेदारियां दी। रोज रात लालटेन की रोशनी में बैठकर वे कलाकारों को समझाते, नए कलाकार जुड़े, नए ढोलकी आए और मंडली धीरे धीरे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोक नाट्य मंडलियों में गिनी जाने लगी। 1938 से 1962 के बीच उनकी रचनाओं का जैसे स्वर्णकाल रहा। इन 24 वर्षों में भिखारी ठाकुर ने 3 दर्जन से अधिक पुस्तकों, नाटकों और गीतों की रचना की। उनके मन में बस एक ही धुन थी, समाज का दर्द, प्रेम, बिछोह, संघर्ष और व्यंग्य, सबको मंच की रोशनी में उतार देना। यही भीतर की ज्वाला नागपंचमी, कवन संकट, राधे श्याम बहार, आमोर सजनवा, कलयुग प्रेम, विरह लीला, घरवारी बाहर वाली, भाई विरोध और बुढ़वा बाबू जैसे अनेक नाटकों के रूप में फूटती गई।
1: बचपन में नियमित शिक्षा नहीं मिली थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर ठीक ढंग से लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए, लेकिन उनकी कला में एक ऐसी आग थी जो शिक्षा की कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। भिखारी ठाकुर मौखिक परंपरा के उस्ताद थे, वो कहानी और गीत संवाद पहले अपने मन में बनाते, फिर उन्हें बोल बोल कर याद करते। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। कहा जाता है कि वो एक एक गीत पूरा का पूरा नाटक कई कई घंटे बिना कागज के सुना देते थे। जब वो अपने शब्दों को अंतिम रूप दे देते, तब गांव के पढ़े लिखे लोगों से कहते,
0: बाबू ये सब कागज पर उतार दा।
1: और इस तरह अपने नाटक, गीत और बोलचाल की पंक्तियां दूसरों से लिखवाते रहे। इसके जहां फायदे थे, वहां नुकसान भी बहुत थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि कई प्रकाशक और व्यापारी उनके नाम पर नकली पुस्तकें छापकर बेचने लगे। ऐसी रचनाएं भी जिनका उन्होंने नाम तक नहीं सुना था। इससे उन्हें दो बड़ी हानियां हो रही थी। उनकी सच्ची रचनाएं गुम होती जा रही थी और उनके नाम से घटिया और गलत सामग्री फैलने लगी थी। वो लिखने पर दूसरों पर आश्रित भी होने लगे थे। यदि लिखने वाला गलती करता तो गलती पुस्तक में भी रह जाती। भिखारी ठाकुर अपने शब्दों पर पूर्ण अधिकार नहीं रख पाते और इन सब बातों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।
0: और इन्हीं कारणों से उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। उन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब लोग हार मान लेते हैं, उन्होंने तय किया, हमके अब अपना लेखन पर पकड़ बनावे के बाद। धीरे धीरे अक्षर पहचानना, शब्द पढ़ना और थोड़ा लिखना उन्होंने सीख लिया। वे इतना जरूर करने लगे कि कोई भी पांडुलिपि या किताब बिना देखे बिना जांचे प्रकाशित ना हो।
1: इसीलिए उन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार करवाए, भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान। ये उनकी सभी असली रचनाओं की प्रामाणिक सूची है। सबसे पहले भिखारी ठाकुर पुस्तिका सूची, ये सूची उन्होंने इसीलिए बनवाई ताकि नकली पुस्तकें, झूठे दावे और गलत प्रकाशनों से उनकी कला को बचाया जा सके। ये उनकी रचनाओं का एक सत्यापित अभिलेख बन गया।
0: और दूसरा, भिखारी शंख शमदान, ये उनके जीवन, उनकी कला और उन पर लगे झूठे आरोपों का जवाब है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई बताई, अफवाहें खारिज की, अपने कला की दिशा समझाई और बताया कि वो क्यों और क्या लिखते हैं। कह सकते हैं कि ये उनका आत्मघोष, उनका आत्मपक्ष और उनकी सच्चाई का दस्तावेज है। भिखारी ठाकुर ने लिखना पढ़ना इसलिए सीखा ताकि भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए जा सकें, जो आज भी उनके साहित्यिक जीवन का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है।
1: धीरे धीरे उनकी कला का प्रभाव आरा से बलिया तक, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक और जौनपुर से झरिया तक और फिर बहुत दूर असम से डिब्रूगढ़ तक पहुंच गया। जहां भी उनकी मंडली मंच सजाती, वहां एक नया सामाजिक प्रभात उगता। लोग हंसते, रोते और स्वयं को पहचानते।
0: श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे, पुराने समय में गांव में औरतों का मंच पर आना समाज स्वीकार नहीं करता था, इसलिए नाटक, नौटंकी, बिरहा सब में पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका निभाते थे। कहानी, लोकगीत और नृत्य बचाने का बस यही तरीका था।
1: भिखारी ठाकुर की मंडली में भी स्त्रियां मंच पर नहीं आती थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर खुद कई बार स्त्री का अभिनय करते, उनके साथी भी किया करते। यही शैली आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। इसमें पुरुष कलाकार औरत का रूप धरकर स्त्री भूमिकाएं निभाते हैं। नाच, गाना, अभिनय सब पुरुष ही किया करते।
0: श्रोताओं, उत्तर भारत, खासकर बिहार, पूर्वी यूपी और भोजपुरी अंचल में सदियों से ऐसे प्रदर्शन होते आए थे जहां पुरुष स्त्री रूप में नाचते थे। भिखारी ठाकुर ने इस परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया, इसे सामाजिक मुद्दों से जोड़ा और कथा में भावनात्मक गहराई जोड़कर इसे लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने अपने नाटकों विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर में स्त्री किरदार बहुत गहरे और संवेदनशील बनाए। इन्हें निभाने के लिए लौंडा नाच कलाकार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए।
1: उनका जीवन उस नदी की भांति था जो पहाड़ों से निकलकर शहरों और गांवों के बीच बहती है और बहते बहते मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। भिखारी ठाकुर ने सिर्फ नाटक नहीं रचे, उन्होंने समाज की आंखें भी खोल दी। उनकी आवाज आज भी हवा में तैरती है और उनकी कला समय की धूल पर अमिट अक्षरों की तरह अंकित है। भिखारी ठाकुर अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक परंपरा, एक लोक ध्वनि, एक कला संसार बन चुके थे। लोग कहते,
2: जैसे धूप बिना छावना, भिखारी बिना मंच ना।
1: उनकी कला ने इतना प्रभाव डाला कि उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगा।
0: भिखारी ठाकुर की मंडली सिर्फ कलाकारों का समूह नहीं थी, वो एक परिवार थी, एक परंपरा थी और एक जीवित नदी थी जिसमें हर सुर अपनी कहानी लेकर बहता था। इस नदी के सबसे चमकदार मोती थे रामचंद्रमा जी, जिनके कदमों की थिरकन में स्त्री पात्रों की पीड़ा और कोमलता दोनों समाई थी। मंच पर महिलाओं का आना तब संभव नहीं था और यही वजह थी कि मांझी जैसे कलाकारों ने नारी रूप धारण कर उस रिक्ति को भरा, जैसे कोई दीपक अंधेरे की जगह ले लेता है। उनके साथ थे महेंद्र, जिनकी गायकी मंच को जीवित कर देती थी, राम, लच्छन और जूठन, जिनकी हंसी से भारी कथा हल्की हो जाती थी।
1: और संगीत की नींव संभाले थे घिनगांव की ढोलक, तफजुल की ताल, अलीजान की सारंगी और जगदेव का हारमोनियम, जो भिखारी ठाकुर के प्रत्येक संवाद को सांस देने का काम करते। ये मंडली उस दौर का जीवंत प्रमाण थी कि कला जाति, धर्म या रूप नहीं देखती, बस मन की सच्चाई और प्रस्तुति की निष्ठा को पहचानती है। सन 2021 में भारत सरकार ने रामचंद्र मांझी को पद्मश्री देकर इस परंपरा को सम्मान दिया, ये बताते हुए कि जो कला कभी उपहास झेलती थी अब देश की शान बन चुकी है।
0: और यादगार तो 1963 का वो क्षण भी है जब भोजपुरी फिल्म विदेशी आई, जिसमें भिखारी ठाकुर ने अपनी ही कविता डगरिया जोहतना अपनी आवाज में गई। भिखारी ठाकुर जी का नाम भले ही भिखारी था, पर लोक भावना को उन्होंने इतनी समृद्धि दी कि कोई युग उसकी गिनती नहीं कर सकता। वे एक कलाकार नहीं, पूरी भोजपुरी सभ्यता की धड़कन थे। उनके नाटक, उनके गीत और उनकी बोली आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सुवास। उनकी देह भले मिट्टी में समा गई, पर उनकी कला वो आज भी गांव की हर चौपाल में, हर मेले की हलचल में और हर गायक की सांस में बसी हुई है।
1: दिन ढलने से पहले आसमान का रंग सबसे उज्जवल होता है और शायद कलाकार का जीवन भी ऐसा ही होता है, जिसमें सूरज ढलने लगता है और उसकी रोशनी उतनी ही दूर तक फैलती है। भिखारी ठाकुर के जीवन का अंतिम पड़ाव भी उसी सुनहरे उजाले जैसा था। उनकी आवाज में अब पहले वाली ताकत नहीं थी, पर उनकी कला अब भी नदी की तरह बह रही थी, एक ऐसी नदी जो सूखने से पहले सबसे ज्यादा गाती है।
0: 10 जुलाई 1971 की सुबह जब भिखारी ठाकुर ने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा इलाका थमसा गया। सचमुच ऐसे लगा जैसे गीत की तान टूट गई हो और सांझ बिना रंग की हो गई हो। उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं, मानो उनकी कला अब नदी से निकलकर समुद्र की अनंत लहरों में घुल रही हो। गांव देहात की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, जे माटी से उपजल वही माटी में समाइल।
1: जीवन में उन्हें संघर्ष ज्यादा मिला पर सम्मान भी कम नहीं। 1930 से 40 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने राय साहब जैसे बड़े आदर के संबोधन दिए और आज उनकी हर पुण्यतिथि पर सरकारी समारोह होते हैं, मंच सजते हैं, गीत गूंजते हैं, अनगिनत कलाकार, नेता और साहित्यकार ये मांग भी करते हैं कि इस मिट्टी के बेटे को भारत रत्न मिलना चाहिए।
0: श्रोताओं, भिखारी ठाकुर केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे पूर्वांचल की धड़कन बन गए थे। उनके नाटक बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल तक पहुंचे। लोगों की भीड़ उनका नाटक देखने ऐसे उमड़ पड़ती जैसे मेला लग गया हो। आज उनके गीत किताबों में पढ़े जाते हैं, शोध संस्थानों में समझे जाते हैं और नए नए गायकों की आवाज में फिर से जन्म लेते हैं। छपरा, पटना, सारण, हर जगह उनके नाम पर मंच, पुरस्कार और केंद्र खुल चुके हैं।
1: श्रोताओं, कला के लिए भिखारी ठाकुर ने हमें सिखाया कि कलाकार वो है जो समाज की पीड़ा को खुद महसूस करे और फिर शब्दों, सुरों और अभिनय में ढाल दे। आज भी हर गायक, हर नाटककार भिखारी जी से यही सीख पाता है। इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम आपको भिखारी ठाकुर जी के लिए चार पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जो उनके जीवन, उनकी कला और उनकी आत्मा को एक साथ समेट लेती है।
0: माटी से उठल, माटी में मिलल, सुरवा बनके ऊ बही गई, रोवेला समय गावे लोक, भिखारी नाम अमर हो गई। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, और आज हमने अपने इस कार्यक्रम भारत विभूति में खूब सारी बातें की महान नाटककार, गीतकार, संगीतकार श्री भिखारी ठाकुर जी पर। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन दीपक नेमा का, और आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने यानी संदीप शर्मा,
1: मैंने यानी स्वाति ने।
0: फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: खिड़कियों पर टैक्स और चाय, एक विचित्र ऐतिहासिक सौदा। क्या आप जानते हैं कि एक प्याली अच्छी चाय के लिए ब्रिटिश प्रेम ने एक समय उनके घरों में आने वाली सूरज की रोशनी पर टैक्स लगवा दिया था। यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1784 में यह ब्रिटिश राजकोषीय प्रणाली की एक कठोर वास्तविकता बन गई थी। इस कहानी के केंद्र में थी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और तस्करी की एक बहुत बड़ी समस्या, जो कंपनी के मुनाफे और राष्ट्रीय खजाने दोनों को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक चाय कंपनी के व्यापारिक खाते की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन गई थी। चाय ने कंपनी के व्यापार में उसी तरह क्रांति ला दी थी जैसे पिछली सदी में कपास ने लाई थी। हालांकि इसमें एक बड़ा पैंच था। ब्रिटिश सरकार ने चाय पर भारी शुल्क लगा दिया था, जो 79% से लेकर 127% तक था। क्या आप जानते हैं कि इन ऊंचे करों का परिणाम क्या हुआ? चूंकि चाय इतनी महंगी थी, इसलिए इंग्लैंड में पी जाने वाली आधी से अधिक चाय कंपनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों द्वारा देश में तस्करी करके लाई जा रही थी। इससे कंपनी के गोदाम लाखों पाउंड महंगी चाय से भर गए थे, जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। क्या आप जानते हैं कि विलियम पिट द यंगर ने इस संकट को कैसे हल किया? उन्होंने 1784 का ऐतिहासिक कंप्यूटेशन एक्ट पेश किया। इस कानून के पीछे का तर्क सरल लेकिन साहसी था। यदि सरकार चाय पर टैक्स कम कर दे तो तस्करों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और जनता वापस कंपनी से कानूनी चाय खरीदने लगेगी। पिट ने चाय शुल्क को 100% से घटाकर मात्र 12.5% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मालिकों के लिए इसमें क्या पैंच था? ब्रिटिश सरकार उस टैक्स राजस्व को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यह राजस्व की वित्तीय स्थिति के लिए अनिवार्य था। चाय राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पिट ने टैक्स को एक ऐसी विलासिता से हटाकर, जिसे आप पीने या ना पीने के लिए चुन सकते हैं, एक ऐसी चीज पर डाल दिया जिससे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, उनकी खिड़कियां। यही कुख्यात विंडो टैक्स की उत्पत्ति थी। यह शाब्दिक रूप से रोशनी और हवा पर लगने वाला टैक्स था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि चाय का व्यापार कंपनी और क्राउन यानी राजसत्ता दोनों के लिए लाभदायक बना रहे। क्या आप जानते हैं कि यह अदला बदली ही वह गुप्त इंजन था जिसने कंपनी के बाद के वर्षों को शक्ति दी? 1784 के इंडियन एक्ट के माध्यम से भारत में अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता का त्याग करने के बदले में कंपनी को चीन में यह विशाल व्यावसायिक अवसर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि यह कितना सफल रहा? इसने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। 1830 तक अकेले चाय शुल्क से ब्रिटिश खजानों को सालाना 30 लाख पाउंड से अधिक मिल रहे थे, जो पूरे देश के राजस्व का लगभग 10वां हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि खिड़कियों पर लगने वाले इस अजीब टैक्स के बिना ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास अलग तरीके से लिखा गया होता? कम शुल्क के कारण चीन में चाय का व्यापार की सफलता ने वास्तव में भारत भर में कंपनी के महंगे होते जा रहे सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद की। यह इस बात की याद दिलाता है कि कंपनी का अस्तित्व अक्सर युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं से अधिक एक चायदानी में उबल रही चीज पर निर्भर करता था।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था? 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर
1: ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं सांस्कृतिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। प्री मॉनसून गतिविधियों से मिली राहत के बाद फिर गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। मंगलवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच गया, ये विगत 10 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 30 मई को तापमान 40 डिग्री था। मौसम विभाग का कहना है उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, नीमच, मंदसौर को छोड़कर भोपाल समेत प्रदेश भर में बुधवार को भी प्री मॉनसून गतिविधियां अर्थात बादल आंधी बारिश जारी रह सकती हैं। अमर शहीद बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर शहीद भवन में निमाड़ी लोक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिरसा मुंडा को लोक धुनों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खरगोन के लोक गायक शिव भाई गुप्ता ने अपने साथियों के साथ नर्मदा जी के कर्णप्रिय भजनों और निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव के चौथे दिन मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों की लोक व जनजातीय परंपराओं का संगम देखने को मिला। शुरुआत छत्तीसगढ़ की संप्रिया पूजा और साथियों के पंडवानी गायन से हुई, जिसमें महाभारत के गीता उपदेश का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और उड़ीसा के नृत्य बारी बारी से प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, डिंडोरी, तेलंगाना और कर्नाटक के नृत्यों ने भी दर्शकों को मोहे रखा। वरिष्ठ आर्किटेक्ट और अमूर्त चित्रकार आशीष भट्टाचार्य ने मंगलवार को एक निजी आर्ट गैलरी में युवा संगीतकारों के साथ एक अनूठी पहल प्रस्तुत की। 100 से अधिक पेंटिंग्स के बीच उन्होंने तबला, गिटार और अन्य वाद्य यंत्रों की धुनों पर लाइव पेंटिंग कर कला और संगीत का संगम प्रस्तुत किया। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम में आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। यहीं से श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की ये अंतर्मुख और गहन यात्रा आरंभ होती है।
3: श्रोताओं, प्रथम सर्ग में हमने उस क्षण को जिया जहां पराक्रम ने जन्म से प्रश्न किया और प्रतिभा ने पहचान से टकराकर अपना स्वर रचा। वहां कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह मनुष्य था जो सम्मान, अपमान, मित्रता और विवेक के बीच खड़ा होकर अपने भाग्य की दिशा तय कर रहा था। दिनकर जी ने हमें दिखाया कि तेज केवल बाहुबल में नहीं, चयन की अग्नि में तपकर प्रकट होता है। और अब जब वह अग्नि भीतर जल चुकी है, तब हम द्वितीय सर्ग की उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां शोर थम जाता है, प्रश्न गहरे होते हैं और आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से संवाद करने लगती है।
2: यहां रणभूमि का कोलाहल नहीं, तपोवन की निस्तब्धता है। दिनकर जी हमें उस स्थान पर खड़ा करते हैं जहां शांति कोई पलायन नहीं बल्कि शक्ति का संचय है। ये वो भूमि है जहां अस्त्र विश्राम करते हैं और आत्मा सजग रहती है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के दूसरे सर्ग के प्रथम भाग का पाठ। शीतल विरल एक कानन शोभित अदित के ऊपर कहीं उच्च प्रस्त्र वर्ण चमकते, झरते कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीन भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हूं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर, अजिन दर्भ पलाश कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण, चमक रहा त्रिणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली।
3: दिनकर जी यहाँ ऐसे आश्रम का चित्र रचते हैं जहाँ प्रकृति स्वयं तपस्विनी बन गई है। यह स्थान शांति, पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है। एक ऐसा परिवेश जहाँ आत्मा सहज ही स्थिर हो जाती है। यह केवल दृश्य नहीं, साधना की भूमि है।
2: ये कानन केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं रचता, ये जीवन का संतुलन सिखाता है। यहाँ हवन की अग्नि बुझ चुकी है पर उसका संस्कार वायु में शेष है। पशु पक्षी निर्भय है क्योंकि यहाँ शक्ति हिंसा में नहीं, संयम में निहित है। दिनकर जी संकेत देते हैं कि जो समाज को दिशा देता है वो पहले स्वयं को तपाकर उज्जवल बनता है।
3: वन की निस्तब्धता में मानो प्रकृति स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो और दिनकर जी की वाणी उसमें सांस ले रही हो। हरियाली कहती है, हे सूर्य पुत्र, यह शांति पलायन नहीं साधना है। झरनों की अविरल धारा समझाती है कि जैसे संघर्ष थमता नहीं वैसे ही पुरुषार्थ भी रुकता नहीं। दिनकर जी इस कानन को केवल वन नहीं चेतना की पाठशाला बना देते हैं, जहां कर्ण रण के शोर से पहले आत्मा की नीरवता सीखता है। यहां प्रकृति सिखाती है कि जो अपने भीतर के द्वंद को समझ लेता है वही आगे चलकर धर्म और युद्ध के बीच सही मार्ग चुन पाता है। आइए सुनते हैं दूसरे सर्ग का दूसरा भाग, जहां कर्ण इस दिव्य आश्रम को अपने जीवन की रणभूमि और अपने अंतर मन में कहीं आत्मसात कर रहा है। श्रद्धा बढ़ती अजन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुबा उसी की कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है।
2: किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असि की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हां हां वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है।
3: श्रोताओं, ये केवल एक आश्रम का दृश्य नहीं है, यह इतिहास की वह नीरव घड़ी है जहां नियति सांस रोके खड़ी है। एक ओर तप की शांति है, दूसरी ओर शस्त्रों की चेतावनी। जिस भूमि पर अभी धूप चुपचाप उतर रही है वहीं से कल महायुद्ध की ज्वाला उठेगी। यहां गुरु विश्राम में है और शिष्य सेवा में, पर इसी विश्वास की छाया में छिपा है वह क्षण जो कर्ण के जीवन की दिशा बदल देने वाला है। अब कथा उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां तप की परीक्षा होने वाली है।
2: कर्ण अचल बैठा है, उसकी जांघ पर परशुराम का मस्तक टिका है। गुरु निद्रा में है, शिष्य सजग है। न सांस डगमगाती है न मांसपेशी कांपती है, पर उसी अडिग स्थिरता में इतिहास की धड़कन तेज होती है। ये केवल विश्राम का क्षण नहीं, ये विश्वास और वीरत्व की कठोर परीक्षा है। एक पल का हिलना तप को भंग कर सकता है, एक क्षण की दुर्बलता युग की दिशा बदल सकती है। इसलिए कर्ण स्थिर है, अचल, अडिग, सूर्य पुत्र की गरिमा में स्थित और उसी महावीर की स्थिरता में इतिहास सहमा हुआ कांप रहा है, मानो वो स्वयं से कह रहा हो।
4: मैं यहां केवल अस्त्र पाने नहीं आया हूं, मैं स्वयं को गढ़ने आया हूं। गुरु का स्नेह मुझे मिला, पर क्या मैं उस विश्वास के योग्य हूं? क्या मेरा जन्म ही मेरी पहचान है? क्या मेरा पुरुषार्थ ही मेरा नाम रचेगा? यदि सत्य का भार उठाना ही मेरी परीक्षा है तो हे दिवाकर, यदि ये पीड़ा ही मेरी दीक्षा है तो मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इसे मुस्कान की तरह धारण कर सकूं। यदि सत्य का भार ही मेरी परीक्षा है तो मेरी आत्मा को इतना अडिग कर दो कि अपमान का महासागर भी मेरे संकल्प की एक रेखा ना डिगा सके। मैं टूट जाऊं, रक्त बह जाए, प्राण कांप उठें, पर मेरा धैर्य ना टूटे, क्योंकि जो पुरुष विपत्ति के अंधकार में भी अपने पथ से नहीं लौटता, वही समय की शिला पर अपना नाम अग्निलेख की तरह अंकित करता है। और मैं लौटने नहीं आया, मैं अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने आया हूं।
3: परशुराम का स्नेह अथाह है, पर उसी स्नेह की छाया में उनका क्रोध भी प्रलयंकारी है। ये तपोवन अभी शांति से सांस ले रहा है, पर कौन जाने भविष्य के गर्भ में क्या धधक रहा है। एक क्षण की चूक, एक असत्य का भार और विद्या का वर शाप बन सकता है। दिनकर जी संकेत देते हैं, वीरता केवल रण की गर्जना नहीं, वह उस मौन क्षण में परखी जाती है जहां भाग्य तलवार की धार पर खड़ा प्रतीक्षा करता है। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ, जहां संयम की एक पल की स्थिरता आने वाले युगों की दिशा तय करने वाली है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं,
2: ओ वत्स, पुष्टिकर भोग ना तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं, इसकी पूर्ति कहां से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सिंह मांस पेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हूं लहर राग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर।
3: ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। श्रोताओं, यह केवल एक गुरु की निद्रा नहीं है, यह उस विश्वास का क्षण है जो शिष्य के हृदय पर रखा गया है। परशुराम निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें अपने शिष्य पर अटूट भरोसा है, और कर्ण वह इस भरोसे को अपने प्राणों से भी भारी मानकर थामे बैठा है। दिनकर जी का यह काव्य इसलिए सदा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि इसमें परशुराम और कर्ण का संबंध मानवीय सत्य बनकर उभरता है। गुरु की कठोरता में छिपी ममता और शिष्य की मौन सहनशीलता, यह मर्म हर युग में वैसा ही रहता है। समय बदले, शास्त्र बदले, पर जहां प्रतिभा को तपाया जाता है और विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वहां यह रिश्ता आज भी उतना ही जीवित है। द्वितीय सर्ग के इस भाग को सुनकर मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिनकर जी स्वयं ही परशुराम का मन बनकर बोल उठे हों।
2: ये शिष्य साधारण नहीं है, इसकी नसों में तप और रण दोनों का रक्त बहता है। यदि इसे केवल संयम सिखाया गया तो इसकी देह युद्ध का भार न सह पाएगी, और यदि केवल शस्त्र दिए गए तो आत्मा भटक जाएगी। इसलिए मेरी कठोरता आवश्यक है, मेरी मर्यादा अडिग है। मैं इसे तोड़ने नहीं गढ़ने आया हूं। जो भविष्य के महासंग्राम का भार उठाएगा उसे आज अनुशासन की अग्नि में तपना ही होगा। ये कठोरता दंड नहीं है।
3: आइए श्रोताओं, अब हम द्वितीय सर्ग भाग 4 की ओर कदम रखें। यहां मौन अब बोझ नहीं रह जाता, वह अर्थ बनकर उभरता है। पीड़ा स्वर पाती है और धैर्य अपनी अंतिम कसौटी पर खड़ा होता है। इसी क्षण कर्ण का भाग्य उससे प्रश्न करता है, क्या तप से जन्मा तेज बिना झुलसे आगे बढ़ सकता है? यही वह मोड़ है जहां ये काव्य रूपी कथा नई दिशा लेती है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 4।
2: खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असि विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भू को, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है।
3: अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। श्रोताओं, दिनकर जी के ये पद्य केवल प्राचीन राजाओं की कथा नहीं कहते, वे आज के मनुष्य को आईना दिखाते हैं। जब सत्ता प्रश्नों से चिढ़ने लगे, जब विवेक को दुर्बल समझा जाए और जय घोष सत्य से ऊंचा हो जाए, तब समाज भीतर ही भीतर खोखला होने लगता है। आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां शक्ति तर्क को दबा रही है और भीड़ सोचने की बजाय तालियां बजा रही है। यही पतन की पहली सीढ़ी है, जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं मूल्यों के विरुद्ध लड़ा जाने लगता है।
2: यहां प्रश्न युद्ध का नहीं दिशा का है। जब सत्ता स्वयं को ही सत्य मानने लगे, तब धर्म शस्त्रों से नहीं मौन से हारने लगता है। ऐसे समय में जो सोचता है वही अकेला पड़ता है, और जो जय जयकार करता है वही सुरक्षित रहता है। कर्ण का जीवन इसी विडंबना में गढ़ा जा रहा है। एक ऐसा वीर जिसे लड़ना तो आता है, पर जिस युग में वो खड़ा है वहां न्याय से अधिक शोर की कीमत है। यही इस प्रसंग की पीड़ा है, और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी। ये यात्रा यहीं ठहरती नहीं, क्योंकि कर्ण का पथ अभी लंबा है और उसकी परीक्षा अभी शेष है।
3: तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर ये विदा केवल एक विराम है, इस यात्रा का अंत नहीं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7, जहां कथा और भी गहन होगी और भावनाएं और भी प्रखर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का था, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की थी, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
2: मैं संदीप शर्मा
4: और मैं दीपक नेमा।
3: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आप सबसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
2: नमस्कार।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन।
5: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
6: ये मेरा इंडिया।
5: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। ये एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजीतियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीर जी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी ईआईसी को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। ईआईसी अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

0: शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। इस कार्यक्रम में आज हम वैज्ञानिक पीके अयंगर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।

0: श्रोताओं, इसके पिछले भाग में हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर पी के आयंगर जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। आइए आगे हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं।
1: विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आयंगर ने कई सुधार किए। उन्होंने प्रयोगशाला में नए उपकरण मंगवाए, पुस्तकालय का विस्तार किया और छात्रों के लिए अधिक शोध अवसर बनाए। उनका मानना था कि छात्रों को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी मिलना चाहिए। एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने वनस्पति विज्ञान विभाग के बजट में कटौती करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर आयंगर ने कुलपति से मुलाकात की और दृढ़ता से अपनी बात रखी। सर, विज्ञान में निवेश देश का भविष्य है। अगर हम आज अपने छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो कल भारत वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बजट कटौती पर पुनर्विचार करें।
0: कुलपति डॉक्टर आयंगर के तर्क और समर्पण से प्रभावित हुए। न केवल बजट कटौती रद्द की गई, बल्कि अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई। डॉक्टर आयंगर के मार्गदर्शन में कई छात्रों ने पीएचडी की। उनकी मार्गदर्शन शैली बहुत व्यक्तिगत थी। हर शोधार्थी के साथ वे सप्ताह में कम से कम एक बार बैठते और उनकी प्रगति पर चर्चा करते।
1: एक शोधार्थी सुब्बा लक्ष्मी, जो दक्षिण भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानी बनी, उन्होंने बाद में लिखा, प्रोफेसर आयंगर मेरे जीवन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान में करियर बनाना बहुत कठिन था। समाज का दबाव था कि विवाह करो और घर संभालो, लेकिन प्रोफेसर आयंगर ने मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, सुब्बा लक्ष्मी, विज्ञान में लड़का लड़की नहीं देखा जाता, केवल प्रतिभा देखी जाती है। तुम में वो प्रतिभा है। उनके समर्थन के बिना मैं कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाती।
0: एक अन्य शिष्य नटराजन, जो बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने, उन्होंने याद किया, प्रोफेसर आयंगर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता समान थे। एक बार मैं अपने शोध में बहुत निराश था, परिणाम नहीं मिल रहे थे और मैं सोच रहा था कि शोध छोड़ दूं। प्रोफेसर को पता चला, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। श्रीमती आयंगर ने चाय और स्नैक्स परोसे। प्रोफेसर ने मेरे साथ घंटों बैठकर मेरे शोध पर चर्चा की। उन्होंने कहा, नटराजन, विफलता सफलता का हिस्सा है। हर महान खोज असफलताओं के ढेर पर बनी है। तुम हार मत मानो। उस शाम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने शोध जारी रखा और अंततः सफल हुआ।
1: डॉक्टर आयंगर को अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था। 1939 में उन्हें लंदन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया। ये यात्रा कठिन समय में थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। लक्ष्मी चिंतित थी, क्या आपको वास्तव में जाना चाहिए? यूरोप में युद्ध हो रहा है। डॉक्टर आयंगर ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है।
0: सम्मेलन में डॉक्टर आयंगर ने अपनी एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति को काफी सराहना मिली। यूरोपीय वैज्ञानिक भारतीय समुद्री वनस्पतियों की विविधता से प्रभावित हुए। सम्मेलन के बाद कई वैज्ञानिकों ने डॉक्टर आयंगर से संपर्क किया और सहयोग की पेशकश की। ये भारतीय विज्ञान के लिए गर्व का क्षण था।
1: डॉक्टर आयंगर भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। 1942 में उन्हें वनस्पति विज्ञान खंड का अध्यक्ष चुना गया। उनका अध्यक्षीय भाषण बहुत प्रभावशाली था। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। भारत स्वतंत्रता के करीब है। एक स्वतंत्र भारत को मजबूत वैज्ञानिक आधार की जरूरत होगी। वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, ये कृषि, औषधि, पर्यावरण सभी से जुड़ा है। हमें युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना होगा, शोध को बढ़ावा देना होगा और देश की समृद्धि के लिए विज्ञान का उपयोग करना होगा।
0: भाषण के बाद कई युवा छात्र डॉक्टर आयंगर से मिलने आए। उनमें से एक ने कहा, सर आपने हमें प्रेरित किया है, हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर आयंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यही मेरा उद्देश्य था, विज्ञान देश की सेवा का एक माध्यम है। 1940 के दशक में जब डॉक्टर आयंगर अपने करियर के शिखर पर थे, घर पर चुनौतियां भी बहुत थीं। बड़े बेटे रामकृष्णन किशोरावस्था में थे और विद्रोही हो रहे थे। उन्हें विज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, वे संगीत और कला में रुचि रखते थे। एक दिन रामकृष्णन ने घोषणा की, पिताजी मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, मैं संगीतकार बनना चाहता हूँ।
1: ये डॉक्टर आयंगर के लिए निराशा का क्षण हो सकता था। कई पिता अपने बच्चों को अपने पेशे में ही देखना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर आयंगर अलग थे। उन्होंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, रामकृष्णन मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर संगीत तुम्हारा जुनून है तो उसका पीछा करो, लेकिन याद रखो जो भी करो पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो।
0: लक्ष्मी जो पास में बैठी थी, उन्होंने अपने पति का हाथ दबाया। वे जानती थी कि ये निर्णय डॉक्टर आयंगर के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये सही था। रामकृष्णन बाद में एक प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीत कलाकार बने। हर कॉन्सर्ट के बाद वे अपने पिता को धन्यवाद देते, पिताजी आपने मुझे मेरे सपने पूरे करने दिए। बेटी सरस्वती बहुत बुद्धिमान थी और विज्ञान में रुचि रखती थी, लेकिन 1940 के दशक में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा असामान्य थी। रिश्तेदार दबाव डालते, सरस्वती अब 18 की हो गई है, उसकी शादी करा दो।
1: लेकिन डॉक्टर आयंगर और लक्ष्मी दृढ़ थे। उन्होंने सरस्वती को कॉलेज भेजा। सरस्वती ने वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया और अपने पिता की तरह शोध में रुचि विकसित की। एक दिन सरस्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। डॉक्टर आयंगर की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। बेटी तुम मुझसे भी बेहतर वैज्ञानिक बनोगी, मैं तुम्हारी हर कदम पर मदद करूंगा। सरस्वती ने अपने पिता के मार्गदर्शन में PhD की और भारत की शुरुआती महिला वनस्पति विज्ञानियों में एक बनी।
0: 1945 में लक्ष्मी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। तेज बुखार और कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये टाइफाइड हो सकता है। डॉक्टर आयंगर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कॉलेज से छुट्टी ली और लक्ष्मी की देखभाल में दिन रात लगे रहे। वे खुद उनके लिए खाना बनाते, दवा देते और रात में उनके पास बैठे रहते। बच्चों ने भी मदद की। सरस्वती ने घर का काम संभाला, रामकृष्णन छोटे वेंकटेश का ख्याल रखते। कई सप्ताहों की देखभाल के बाद लक्ष्मी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब वे पूरी तरह ठीक हुई, उन्होंने डॉक्टर आयंगर से कहा, आपने मेरी जान बचाई।
1: डॉक्टर आयंगर ने भावुक होकर कहा, लक्ष्मी तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य और प्रेम दोनों है। इस घटना ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता के बीच कितना गहरा प्रेम और सम्मान है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर आयंगर और उनका परिवार मद्रास की सड़कों पर उत्सव में शामिल हुआ। तिरंगा फहराया गया और लोग नाचे और गाए। डॉक्टर आयंगर ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ये ऐतिहासिक दिन है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक मजबूत भारत बनाने में योगदान दें। विज्ञान शिक्षा सेवा हर क्षेत्र में हमें काम करना होगा।
0: स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विज्ञान और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर आयंगर को कई सरकारी समितियों में शामिल किया गया जो वैज्ञानिक नीतियां बनाती थीं। 1950 के दशक में डॉक्टर आयंगर अब 60 के दशक में थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए थे और कई पुस्तकें लिखी थीं। 1954 में भारत सरकार ने घोषणा की, प्रोफेसर पी के अयंगर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये खबर जब मिली, पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई।
1: छात्रों ने विशेष समारोह आयोजित किया, विभाग को फूलों से सजाया गया, सहकर्मियों ने बधाई दी। प्रोफेसर अयंगर विनम्रता से सबका आभार व्यक्त करते रहे। घर पर लक्ष्मी ने विशेष पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। बच्चों ने मिठाई वितरित की। रामकृष्णन ने एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया अपने पिता के सम्मान में। पुरस्कार समारोह के लिए पूरा परिवार दिल्ली गया। ये छोटे वेंकटेश की पहली दिल्ली यात्रा थी। राष्ट्रपति भवन की भव्यता देखकर वे चकित थे।
0: समारोह का दिन आया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भव्य व्यवस्था थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना था, कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सेवक। जब प्रोफेसर अयंगर का नाम पुकारा गया, वे मंच की ओर बढ़े। सफेद धोती, सफेद शर्ट और काले कोट में वे बहुत गरिमामय दिख रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण का पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा, प्रोफेसर अयंगर, आपने भारतीय वनस्पति विज्ञान को समृद्ध किया है और कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया है। देश आपका आभारी है।
1: प्रोफेसर अयंगर ने विनम्रता से कहा, महामहिम, ये सम्मान मेरे गुरुओं, सहकर्मियों, छात्रों और परिवार का है। विज्ञान एक सामूहिक यात्रा है। मैं केवल एक छोटा योगदान करता हूँ। दर्शकों में बैठी लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि वो गरीब केरल गांव का लड़का कितनी दूर आ गया है। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर अयंगर और भी विनम्र हो गए। उन्होंने कहा, सम्मान जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, अब मुझे और अधिक काम करना होगा।
0: वे अपने शोध में और भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जो भारतीय समुद्री वनस्पतियों का संपूर्ण दस्तावेजीकरण है। उन्होंने कई युवा

0: प्रोफेसर आयंगर ने अपना जीवन ज्ञान की खोज और उसके प्रसार में समर्पित किया। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया जो आज देश विदेश में विज्ञान की सेवा कर रहे हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।
1: नटराजन जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भावुक होकर कहा, सर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता, मित्र और मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें विज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए। उनकी विनम्रता, समर्पण और मानवता हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। पूरा हॉल शांत था, केवल सिसकियों की आवाजें आ रही थी।
0: प्रोफेसर आयंगर की मृत्यु के बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने

0: वृत्ति जो वनस्पति विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं। आयंगर हर्बेरियम विश्वविद्यालय में एक विशेष अनुभाग जहां प्रोफेसर आयंगर द्वारा एकत्रित नमूने संरक्षित हैं।
1: प्रोफेसर आयंगर के शोध पत्र और पुस्तकें आज भी वनस्पति विज्ञान के छात्रों द्वारा पढ़ी जाती है। कई शैवाल और कवक प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम में आयंगरी जुड़ा है, जिसका नामकरण उनके सम्मान में किया गया है।
0: आज 21वीं सदी में प्रोफेसर पी के आयंगर की कहानी युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। एक छोटे से केरल गांव से निकलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक बनना, ये यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन ये सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है। शिक्षक का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। विनम्रता और सरलता सच्ची महानता की निशानी है। परिवार और करियर में संतुलन संभव है। विज्ञान देश और मानवता की सेवा का माध्यम है।
1: प्रोफेसर पी के आयंगर का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी विरासत, उनके शोध, उनके छात्र, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रोफेसर पी के आयंगर का शरीर भले ही 1966 में हमें छोड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं। हर बार जब कोई छात्र सूक्ष्मदर्शी में एक कोशिका देखकर आश्चर्यचकित होता है, हर बार जब कोई शिक्षक अपने छात्र को प्रोत्साहित करता है, हर बार जब कोई वैज्ञानिक विनम्रता से अपना ज्ञान साझा करता है, प्रोफेसर आयंगर वहां मौजूद हैं।
0: उनकी ये कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ये भारतीय विज्ञान के विकास की कहानी है। ये समर्पण और सेवा की कहानी है। ये प्रेम और परिवार की कहानी है। ये मानवता की कहानी है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की प्रोफेसर पी के आयंगर जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
0: और मैं प्रमिला मुंशी दिवाकर।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद।

वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है

0: इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नज़र में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है, और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता। MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: गीत समाप्त होने पर संगीत पर चर्चा छिड़ गई। स्वामी शिवानंद जी ने पूछा, पाश्चात्य संगीत के संबंध में आपके क्या विचार हैं?
1: पाश्चात्य संगीत बहुत उत्कृष्ट है, उसमें गीत माधुरी लय उस चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है जो हमारे संगीत में नहीं है। ये और बात है कि हमारे अनअभ्यस्त कानों को पाश्चात्य संगीत रुचिकर प्रतीत नहीं होता और हम ये सोचते हैं कि वे सियारों के समान चिल्लाते हैं। पहले मेरा भी यही ख्याल था, पर जब मैंने उनके संगीत को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
2: परंतु हम भारतीयों को पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता, शायद हम उसे समझते नहीं, इसलिए।
1: सभी कलाओं का यही हाल होता है। किसी उत्कृष्ट चित्र को देखकर हम ये नहीं समझ सकते कि उसका सौंदर्य कहाँ छिपा है। जब तक चित्रकला में निपुणता न प्राप्त हो तब तक किसी कलाकृति का मर्म समझना कठिन है। हमारा संगीत केवल कीर्तन और ध्रुपद में ही शुद्ध रूप में जीवित है, शेष सब इस्लामी संगीत कला के अनुकरण से दूषित हो गया है।
2: हमें विस्तार पूर्वक समझाइए स्वामी जी।
1: प्रकृति का अनुकरण कर चित्रकला चाहे जितनी कलामय बनाई जा सकती है, इसी प्रकार संगीत में भी शास्त्र अनुकरण कर जितनी चाहे उतनी दक्षता प्रदर्शित की जा सकती है और ऐसा संगीत कानों को भी प्रिय लगेगा। भारत में आकर मुस्लिमों ने यहाँ की राग रागिनियों को अपनाया तो अवश्य, पर टप्पा गीतों पर उन्होंने अपने संगीत की इतनी गहरी छाप मारी कि यहाँ का संगीत ही नष्ट हो गया।
3: ऐसा कैसे महाराज, टप्पा तो सबको अच्छा लगता है।
1: हाँ, कुछ लोगों को झिंगुरों की झनकार भी अच्छी लगती है। संथाल भी अपने संगीत को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सातों सुरों के भिन्न भिन्न प्रकार के संयोगों को ही भिन्न भिन्न राग रागिनियों का नाम दिया गया है, पर टप्पा में उल्टी ही बात है। ये तो एक राग से दूसरे राग की ओर दौड़ है। एक नई धुन बनाई जा सकती है, फिर आलाप में आवाज ऊंची उठाकर उसमें कंपन लाया जाता है। भला इसमें राग कैसे शुद्ध और पूर्ण बना रह सकता है?
4: उनकी बातें सबको समझ में नहीं आई क्योंकि वे सब संगीतज्ञ नहीं थे। ये समझकर स्वामी जी ने उन्हें समझाया,
1: यदि केवल प्रभावोत्पादन के लिए ही लघु रूप आलापों का इतना प्रचुर उपयोग किया जाए तो संगीत का अर्थ तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब से टप्पा का प्रचार हुआ तब से भाव व्यक्त करने के लिए गीतों का गाया जाना तो बिल्कुल बंद हो गया। अब रंगमंच की प्रगति के साथ शुद्ध संगीत का शनै शनै जीर्णोद्धार होने लगा है, पर अब भी राग रागनियों की अवहेलना ही हो रही है। जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं उन्हें तो टप्पा कर्कशी लगता है, पर हमारे संगीत में सुरों का आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है। फ्रांस वालों ने हमारे संगीत के इस गुण को पहचाना है और अपने संगीत में अपनाने का प्रयत्न किया है। उनको देखकर यूरोप भर में अनुकरण होने लगा।
3: महाराज, उनका संगीत तो अधिकतर वीर रस जागृत करने वाला है और हमारे संगीत में इसका नितांत अभाव जान पड़ता है।
1: नहीं, हमारे संगीत में ये विशेषता है। वीर रस के संगीत में भी लय की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे संगीत में लय का अभाव है, इसलिए हमारे वीर रस का संगीत इतना प्रबल नहीं है। पाश्चात्यों का संगीत बहुत अधिक उन्नत है। उनके संगीत में करुण और वीर रस दोनों की ही प्रचुरता है। हमारे तुम्बे से बने प्राचीन वाद्यों में कोई प्रगति ही नहीं हुई।
3: कौन कौन से राग वीर रस प्रधान है?
1: हर एक राग वीर रस प्रधान बन सकता है यदि उनमें लय हो और वाद्य भी तदनुकूल लिए जाएं। कुछ रागिनियां भी कुछ वीर रस प्रधान बन सकती हैं।
0: भोजन का समय हो गया था, इसीलिए चर्चा समाप्त कर दी गई। तदुपरांत स्वामी जी कलकत्ते से आए हुए अतिथियों के सोने की व्यवस्था के बारे में पूछताछ कर अपने शयन कक्ष में आराम करने लगे।
4: स्वामी जी कितने अच्छे संगीतज्ञ थे, उसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। शायद इस घटना का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, पर यहाँ संगीत की बात चली तो और एक बार उस घटना के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं।
0: परिव्राजक के रूप में अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की एकनाथ पंडित नामक एक वरिष्ठ संगीतज्ञ के साथ मुलाकात हुई, जो एक ध्रुपद गायक थे। स्वामी जी ने उनका संगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की। एकनाथ पंडित के गाने के साथ स्वामी जी मृदंग पर संगत करने लगे। स्वामी जी के इस मृदंग वादन से गायक और श्रोता पूर्णतः संतुष्ट हुए।
4: इस कार्यक्रम के पश्चात होने वाले वार्तालाप से पता चला कि स्वामी जी एक अच्छे गायक भी हैं। अतः उन लोगों ने स्वामी जी से गाने का अनुरोध किया। स्वामी जी तानपुरा उठाकर ध्रुपद का आलाप लेने लगे। फिर जब वे गीत के लय पर आए तो कोई भी मृदंग पर उनकी संगत नहीं कर सका।
0: सहसा ही उन्होंने तानपुरा एकनाथ पंडित के हाथ में सौंपते हुए मृदंग उठा लिया और स्वयं ही अपनी संगत करने लगे। इस तरह सबको आश्चर्य में डालकर स्वामी जी ने दोनों भूमिकाएं निभाई। इस अद्भुत घटना पर विस्मित होकर पंडित जी कह उठे, स्वामी जी आप केवल गायक नहीं नायक भी हैं।
4: नायक की उपाधि एक ऐसे संगीतज्ञ को दी जाती है जिसमें सफल प्रदर्शन, संगीत रचना की क्षमता, संगीत शास्त्र का ज्ञान और श्रोताओं को अभिभूत करने की प्रतिभा हो। जिन लोगों को संगीत का थोड़ा ज्ञान है वे इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे कि ध्रुपद गायन जिसमें कि षट प्राण और षट संगत लगते हैं के साथ मृदंग पर स्वयं ही संगत कर पाना प्रायः असंभव सा है। इन दोनों को एक साथ अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाना एक अति मानवीय कार्य है।
0: स्वामी जी ने सुव्यवस्थित ढंग से ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन और टप्पा का अध्ययन किया था। टप्पा के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। विभिन्न शिक्षकों से उन्होंने मृदंग, तबला और सितार भी सीखा। वेणी उस्ताद वेणी माधव अधिकारी और उस्ताद अहमद खां से उन्होंने ध्रुपद व ख्याल सीखा था।
4: ब्रह्म समाज के एक सदस्य श्री काशी घोषाल से उन्होंने इसराज एवं मृदंग सीखा। उनके समकालीन बंगाल के संगीतज्ञों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, त्रैलोक्यनाथ सान्याल और जितेंद्रनाथ ठाकुर। कहते हैं अपनी संगीत शिक्षा के दिनों में स्वामी जी नियमित रूप से कठोर अभ्यास किया करते थे।
0: स्वामी जी एक रचनाकार भी थे। परवर्ती काल में उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी में अनेक रचनाएं की और उन्हें विभिन्न शास्त्रीय रागों एवं तालों के साथ समायोजित किया। उनमें कुछ का विवरण निम्नलिखित है। पहला, खंडन भव बंधन, राग यमन, ताल चौताल। ये रामकृष्ण संघ के सभी केंद्रों में गाई जाने वाली दैनिक प्रार्थना है। दूसरा, एक रूप अरूप नाम वर्ण, राग बड़ा हंस सारंग, ताल चौताल। तीसरा, ना ही सूर्य ना ही ज्योति, राग बागेश्री, ताल अड़ा या इकवी। चौथा, मुझे वारी बनवारी सैया, राग ठुमरी, ताल कहरवा।
4: उनकी तबले की ताल पर भी अनेक रचनाएं हैं। यदि 39 वर्ष की अल्पायु में देह त्याग न किया होता तो संगीत जगत संभवतः उनकी और भी रचनाएं पाकर उपकृत होता।
0: संगीत के किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में ध्रुपद के प्रति स्वामी जी का बड़ा सम्मान का भाव था। वे कहते,
1: जिन सब गीत वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भाव समूह उद्दीप्त हो जाते हैं उन सब को अब थोड़े दिन के लिए बंद रखना होगा। ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारणों से देश में प्राण संचार कर देना होगा।
4: परंतु संगीत के आदर्श के बारे में स्वामी जी ने कहा था,
1: ध्रुपद और ख्याल आदि में एक विज्ञान है,

0: प्रत्येक वस्तु का रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाव मात्र ही संगीत है, पर ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी ओर भाव विहीन परंतु केवल व्याकरण शास्त्र पर आधारित शब्दों की कसरत भी संगीत नहीं है।
1: स्वामी जी के गुणों से एक और गुणी व्यक्ति भी बहुत प्रभावित हुए थे। वे थे फ्रांस के रोमारोला। उन्होंने लिखा है,
2: स्वामी जी के शब्द मात्र महान संगीत है। वह शब्द तो जैसे बिथोविन शैली के संगीत के टुकड़े हैं, हिंडेल के संवेद गान के छंद प्रवाह के भांति उनमें उद्दीपक लय निहित है। उनकी वाणी सुनते ही शरीर में बिजली सी कौंध जाती, उनके मुख से निकली वाणी में अनायासी आवेग उत्पन्न हो जाता है।
3: स्वामी जी का मत था कि सिर्फ शुद्ध ताल और स्वर के साथ गाना गाने को यथार्थ संगीत नहीं कहा जा सकता। लोक गीतों की मधुरता, शास्त्रीय संगीत का विज्ञान और कीर्तन का भाव, इन गीतों के मेल से ही आदर्श संगीत की सृष्टि होती है। उन्होंने कहा था,
0: युगों पूर्व भारत में संगीत को पूर्ण सप्त स्वरों तक विकसित किया गया था, यहां तक कि अर्ध एवं चतुर्थांश स्वर तक भी विकसित हुए थे। भारत ने संगीत में और नाटक तथा स्थापत्य कला में भी नेतृत्व किया। अब जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ नकल है।
1: टप्पा के बारे में उन्होंने कहा था,
0: जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं, उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है। टप्पा को नाक से गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर में दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत नहीं हो सकता। क्या तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर के पीछे दूसरा स्वर इतनी द्रुत गति से तेजी से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन पैदा हो जाता है।
3: पाश्चात्य संगीत में गहराई तक बैठने के बाद स्वामी जी ने उसके बारे में उच्च धारणा बना ली थी। उन्होंने कहा,
0: जब मैंने पाश्चात्य संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है।
1: उन्होंने आगे और भी कहा,
0: हमारे संगीत में आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है, उसी का अनुसरण आज सारा विश्व कर रहा है।
3: स्वामी जी सिर्फ सिद्ध संगीतज्ञ ही नहीं, बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका काव्य जीवन और दर्शन का सत्य है।
1: विवेकानंद के काव्य को विषय और शैली की दृष्टि से दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग की कविताओं में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष शैली ली गई है। इसमें कवि विवेकानंद का वो रहस्यवादी रूप प्रकट है जो मात्र रहस्य में ही विराम नहीं पाता, बल्कि उसकी पूर्णाभिव्यक्ति की चेतना से भी भरा है। उनकी कविताएं रहस्यमय सत्य की नहीं, सत्य की रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति हैं। हम इस वर्ग में कवि की समाधि, सखा के प्रति, गाता हूँ गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, नाचे उस पर श्यामा, काली माता और सन्यासी का गीत आदि कविताओं को रख सकते हैं।
3: सत्य के सगुण स्वरूप पर आधारित कविताएं दूसरे वर्ग में रखी जाएंगी। इन कविताओं में ईश्वर के सगुण रूप पर निवेदित भावनाओं के समर्थन के साथ ही मानवीय मूल्य के विविध आयामों की रचनाएं हैं।
1: विवेकानंद का काव्य समाधि की सृष्टि है। समाधि चरमावस्था का ही दूसरा नाम है। ये वो अवस्था है जिसमें मानव व्यक्तित्व पूर्णतः एकात्म प्राप्त कर लेता है। उसकी अनेक मुखी प्रवृत्तियां अपनी विभेद खोकर एक अपूर्व एकात्म का अनुभव करती हैं। उस अवस्था में सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सव्योम में ये विश्व नजर आता है।
3: जहां मन के विभिन्न भाव अपने मिथ्यात्व का दर्शन कराने लगती हैं, जहां अहंकार की उद्दीप्त धारा में दृश्यमान विश्व विलीन होने लगता है, और अंत में जहां अंधकार भी एक व्यापक पूर्णता में लय प्राप्त करता है, वहां कवि विवेकानंद उपमा देते हैं, बंद वो धारा हुई, शून्य में मिला है शून्य, अवाड़ गमन सगोरचम, वो जाने जो ज्ञाता है।
1: कवि विवेकानंद हमसे कहते हैं,
0: तुम प्रेम की यज्ञ वेदी में अपनी स्वार्थ परता एवं मलिनता की आहुति दे दो। स्मरण रखो कि तुम्हारा भिक्षुक हृदय सदैव से सुख वर्जित रहा है। अपने हृदय की प्रेम राशि का वितरण तुम बिना प्रतिदान की आकांक्षा किए मुक्त हस्त से करो, क्योंकि ब्रह्मा और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार। एक प्रेममय प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार। बहुरूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहां है ईश। व्यर्थ खोज ये जीव प्रेम की सेवा ही पाते जगदीश।
3: उनके गीत प्रकृति और पुरुष या शक्ति और शिव रूपी मूल तत्व के प्रति ही निवेदित है। वे ही कवि के सर्वस्व है। कवि ने अपनी आंतरिक घनिष्ठता का वर्णन इन भावनाओं में किया है। मात्र तुम ही हो मेरे, तुम ही प्राण बंधु हो। होता है आभास कि तुम मैं और मैं तुम हूं। तुम वाणी हो, तुम ही कंठ में बसे हुए हो। वीणापति शारदा तुम ही, मैं माध्यम हूं। है प्रवाह उद्याम वेगमय और चिरंतन। बह बह जाते थाह न पाते हैं मानवगण। ध्वनि गांभीर्य तुम्हारा सदृश जलधि का गर्जन। शेखर चंद्र तुम्हारी वाणी के आवर्तन।
1: विवेकानंद लोगों से काली माता की भयंकारी रूप को संतान भाव से पूजने का आग्रह करते। वे कहते हैं,
0: हे सत्य स्वरूपा माँ, तू ही इस ब्रह्मांड का सत्याधार है। लोग तुझसे प्रेम का ढोंग करते हैं, पर तेरी मूर्ति का साक्षात्कार करने का साहस उनमें कहाँ। माँ, तेरा दिगंबरा रूप देखकर तो संसारी लोगों के प्राण सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं, और वे तुझे असुर विजयिनी दयामयी इत्यादि गुणों से युक्त कर अपने विक्षुब्ध मन के भय को शांत करने का प्रयास करते हैं।
1: हम विवेकानंद को राग का कवि नहीं कह सकते, बुद्धि का कवि भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार हम ये भी नहीं कह सकते कि विवेकानंद की कविता रागमय नहीं है, बुद्धिमय नहीं है। हमें उनकी प्रत्येक पंक्ति से एक अपूर्व अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जो एक साथ राग और बुद्धि दोनों को अभिभूत कर देती है। हृदय और मेधा दोनों को एक साथ चमत्कृत करती है। राग और बुद्धि प्रकृत काव्य का मूलभूत समन्वय गुण है, और विवेकानंद का काव्य आदि से अंत तक इस समन्वय की ही अभिव्यक्ति है।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ, जिसमें आज हम ऋग्वेद के 139वें ऋचा का पाठ सुनेंगे। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 6:30 पर इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम का आज विषय होगा देवगढ़ का गौंड इतिहास। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय होगा डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग। जानकारी देंगी विषय विशेषज्ञ एकता सरीन। शाम 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम आज केंद्रित होगा भोजपुरी साहित्यकार भिखारी ठाकुर के जीवन पर। रात्रि के 8 बजे सुने देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम और 8:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम में आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनने वाले हैं। रात्रि के 9 बजे हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम में आज हम वैज्ञानिक पी के अयंगर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे और 9:30 पर स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप शाम 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे के मध्य सुन सकेंगे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सेवा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको,

0: के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश का।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश की

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तिगलबंदी, तबला वादन, मृदंगम और पखावज की। आज के कलाकार हैं पंडित बिप्लब भट्टाचार्य, राम कुमार आर और रोमन दास।

Now I am trying to play. There are so many types of tala murchana. तो मैंने एक सोचा है, मूर्छना मतलब रागों में, माफ कीजिएगा जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए नहीं, जो लोग हम लोग जैसे सीखना चाहते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, बस दिस इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन. राग का कोई एक स्वर को दूसरे राग का सड़ज मान के, मतलब दूसरे स्वर को सड़ज मान के दूसरा राग आता है, ट्रांसपोजिशन या सड़ज परिवर्तन या जो भी आप कहिए, मूर्छना ऋषभ को सड़ज मान के, गांधार को सड़ज मान के. तो ताल में मैंने एक प्रयास किया, हर मात्रे से दूसरा ताल का ठेका लेके, वो भी तीसरे अंग में मूर्छना का. एक छोटा सा अंदाजा देखिए, इसमें रूपक आएगा, झपताल, एकताल, आड़ा चौताल, पंचम सवारी भी आ सकता है, वो बस कोई फिक्स नहीं है, तो बस वेव लेंथ के अनुसार चल रहा है. तो ही देखिए उपज में क्या आ रहा है, ताल का मूर्छना तीसरे में प्रयास है.

मिस्र सात का हिसाब। कंपोजिशन पढ़ के सुनाएंगे। रोमन ही इज रिसाइटिंग वेरी ट्रेडिशनल शिव पढ़न रिगार्डिंग शंकर भगवान जी।

पार नित नित देव नित नित धड़क धड़क धड़ धड़क धगे तक धगे न धगे तक दुर्ग दुर्ग तिताशी सुर सुर असुर दल दल मलित शुभनि शुंभनि काटि पचारि गरजत तंक धा भवन त्रिभुवन जयति जय जय जयति नव सुर सकल गावत।

होल है। देखिए पंडित किशन महाराज जी ये कहते थे कि अच्छे गुरु से सीखने का नतीजा क्या होता है कि तबला का भी जुबान पैदा हो जाता है। तो बोल का जो लफ्ज है मैं वही कोशिश कर रहा हूँ एक एक बोल को निकालने के लिए। बोल है धान तक धन नगन तक धन नगन तक धन नगन दान तक धन नगन तक धन नगन तक धन तक गगन अबघन मेघ दारुण सघन दामन झलकई तो कुलिश पातन शब्द जन जन पवन कर तर बल गई गगन घोर घुमंड बादर बिजुरी चमकत दमिनी दमकत तड़ित तल तर धित धित धित धगन क्रांत न कट कता तड़ात बिज घटान घिगिनन दत्त घिगिनन दत्त घिगिनन दत्त घिगिनन दा तड़ात बिज घटान घिगिनन दत्त घिगिनन दत्त घिगिनन दत्त घिगिनन दा तड़ात बिज घटान घिगिनन दत्त घिगिनन दत्त घिगिनन दत्त घिगिनन दा। डिस्क्राइबिंग द रेनी सीजन और थंडर वगैरह वगैरह बादल छाए हुए हैं तो एक एक बोल का निकास देखिए। गगन अबघन मेघ दारुण गगन अबघन मेघ दारुण सघन दामिन झलकी कुलिश पातन शब्द जन जन पवन खरतर बलगी गगन घोर घुमंड बादर बिजुरी चमकत दामिनी दमकत तड़ित तड़ तड़ घटित घटित धगन क्रांत

Thank you. Just a few months ago, I taught this pardon to Roman. और एक बहुत मतलब बहुत ही अनोखी मतलब ये पढ़न आचार्य पंडित अनुपम राय जी हमको बहुत प्यार से सिखाए हैं. वो मुंबई में रहते हैं, वो मेरे गुरु समान तो है लेकिन हमको बहुत प्यार से सिखाए हैं. ये सुनिए, बहुत मतलब एकदम ऐसे पढ़न सुनने को नहीं मिलता है. इसका नाम है मारीच बद्ध पढ़न. जैसे शिव पढ़न, गणेश पढ़न, दुर्गा पढ़न बहुत है तबले के शास्त्र में, पखावाज में, मृदंगम में, सब कुछ में है, लेकिन ये मारीच बद्ध पढ़न हम छोटी सी इसका व्याख्या मैं करना चाहता हूँ कि इसमें धा का अनुप्रास है, साथ में ही है, साथ का जाति. धाकत धान धान धावती. श्री रामचंद्र भगवान जब धनुष लेके धावित हो रहे हैं मारीच के पीछे, तो मारीच भी भक्त थे उनके, तो मारीच हिरण का रूप लिया था. तो हम लोग जब तुन बाणी बजाते हैं ना तबले में, देखिएगा हमारे ये सब उंगलियां हिरण का श्रृंग जैसे ऊपर उठ जाता है कि नहीं. तो इसलिए धाकत धान धान धावती श्री रामचंद्र. फिर धातु ना मृग तक तकती तक तक जानकी. जानकी सीतामाई भी देख रही है कि कब प्रभु मृग छाया लेके आएंगे. तो धाकत धान धान धावती धातु न मृग तक तकती तक तक जानकी रघुनंद कर धनुधर धगन धावंती. इस धावंती का व्याख्या है बाद में, बहुत लंबा हो जाएगा. तो धाकत धान धान धावती धातु न मृग तक तकती तक तक जानकी रघुनंद कर धनुधर धगन धावंती. वन उपवन पवन गति गमन पुनित टिकन तकन पुनि पुनि मदन छवि राम की. कंचन मृग मरत तक्रान कर चाप सरसंधान दा. कंचन मृग मरत तक्रान कर चाप सरसंधान दा. कंचन मृग मरत तक्रान कर चाप सरसंधान दा. धावंती मारिस दौड़ रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं, तो धावती धावतो हो सकता था संस्कृत में, लेकिन धावंती क्यों नहीं. कभी बोल रहे हैं कि धावंती है क्योंकि मारिस दौड़ रहे हैं, पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, सीता जी की चिंता दौड़ रही है कि प्रभु कब आएंगे, लक्ष्मण जी का चिंता दौड़ रहे हैं कि हिरण तो कभी सोने का होता नहीं, तो जरूर कुछ अनहोनी है इसमें. सबसे ऊपर देवताओं का चिंता दौड़ रहे हैं, वो लोग मारिच मारिच पे लालची बन गए हैं कि हाय मारिच तेरा क्या भाग्य है, जिन प्रभु के लिए हम लोग दौड़ते हैं वो प्रभु स्वयं तेरे पीछे दौड़ रहे हैं. इतना सारा चिंता दौड़ रहे हैं इसलिए धावंती. तो सुनिए कंपोजिशन.

0: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रानू खान वो पहाड़ी विद्रोही जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को 10 साल तक छकाया। क्या आप जानते हैं कि एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे विद्रोही नेता द्वारा व्यवस्थित रूप से अपमानित किया गया जिसे वे उपहास में पहाड़ी कहते थे। ये रानू खान थे, चकमा लोगों के शानदार जनरल और दीवान, जिन्होंने 1776 और 1787 के बीच दुर्गम चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा के कब्रिस्तान में बदल दिया था। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब कंपनी ने राजस्व की अपनी अतृप्त भूख के कारण चकमा राजा की उन पैतृक जमीनों पर कर लगाने की कोशिश की जो पीढ़ियों से कर मुक्त थी। रानू खान ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने प्रतीकात्मक चुनौती दी। जब कंपनी ने उन्हें नोटिस देने के लिए सिपाही भेजे तो उन्होंने सिपाहियों को पिटवाया और उनके आधिकारिक सरकारी वारंट परवाना को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1777 की शुरुआत में कंपनी ने इस अशांत विद्रोही को पकड़ने के लिए 50 नियमित सिपाहियों का एक दल भेजा। उन्हें त्वरित जीत की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन पर जनजातीय सशस्त्र समूहों और भयंकर कुकी पहाड़ी लड़ाकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। घने जंगलों ने ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। बड़ा और सुदृढ़ सैन्य दल इस हेतु तैनात किए जाने के बाद भी ब्रिटिश सेना रानू खान को नहीं पकड़ सकी। वो बस आंतरिक पहाड़ियों के उस अदृश्य क्षेत्र में गायब हो गए जहां कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि रानू खान कंपनी की नाक के नीचे अपना राज्य चलाने में कैसे सफल रहे? उन्होंने अपने निशान स्वतंत्रता के झंडे फहराए और स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों को भुगतान करने के बजाय उन्हें नजर यानी औपचारिक कर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी जमीनों पर काम करने के लिए कंपनी के रैयतों यानी किसानों को पकड़ लिया, जिससे प्रभावी रूप से ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता छीन ली गई। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच व्याप्त छिपाने की संस्कृति ने इस अपमान को और बढ़ा दिया। चटगांव के स्थानीय प्रमुख फ्रांसिस लॉ ने महीनों तक एक शांत दर्शक के रूप में इस अराजकता को देखा। उन्हें डर था कि किसी हलचल की सूचना देने से वे कलकत्ता में अपने वरिष्ठों की नजर में अक्षम लगेंगे, इसलिए उन्होंने तब तक विद्रोह के पैमाने के बारे में झूठ बोला जब तक कि राजस्व का नुकसान इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसे छिपाना असंभव हो गया। रानू खान जानते थे कि अंग्रेज केवल धोखा दे रहे हैं। उन्होंने बाद में कंपनी अधिकारियों से कहा कि वे उनकी लंबी निष्क्रियता को सरकार की कमजोरी के संकेत के रूप में देखते हैं। 10 वर्षों में कंपनी ने 3 अलग अलग सैन्य अभियान चलाए, लेकिन हर बार रानू खान ने पहाड़ियों की गतिशीलता का उपयोग करके उन्हें छकाया। अंततः अंग्रेज युद्ध के मैदान में इस पहाड़ी को हरा नहीं सके। उन्होंने राजनीतिक तोड़फोड़ का सहारा लिया। उन्होंने चकमा राजा जान बख्श खान को आश्वस्त किया कि रानू खान बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और उनका सिंहासन छीन सकते हैं। 1787 में राजा ने अपने जनरल के पीठ पीछे कलकत्ता में एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए। रानू खान वो व्यक्ति जिसने एक दशक तक ब्रिटिश वारंट फाड़े थे और उनके बेहतरीन सिपाहियों को पछाड़ा था, पहाड़ियों में ओझल हो गए।
0: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन, जिसे पेश करेंगे साईं ऐश्वर्य महाशब्दे, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सुंदरलाल करेले द्वारा बांसुरी वादन की। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गायन साईं ऐश्वर्य महाशब्दे का।
2: राग कामोद से प्रारंभ कर रहा हूं, विलंबित झुमरा ताल में पहली रचना है।

हंसक ध्वनि। ये राग सभी गुणजन जानते हैं, कर्नाटक शैली का राग है, लेकिन कर्णप्रिय और मधुर होने के साथ साथ ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उतना ही प्रभावी है जितना दक्षिण भारतीय भारत में।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ढाका की आपूर्ति नावें और कैप्टन कॉक्स की त्रासदी। क्या आप जानते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास की सबसे दुखद मानवीय विफलताओं में से एक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि आपूर्ति वाली नावों के एक ऐसे बेड़े के कारण हुई थी जिसे स्थानीय नौकरशाही ने खोजने से ही इनकार कर दिया था। ये कहानी है ढाका की आपूर्ति नावों की और उस व्यक्ति की जिसने अपने ही सहयोगियों की टाल मटोल वाली नीति से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। वर्ष 1799 था। चटगांव के दक्षिणी जंगलों में एक भयावह मंजर था। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार कर दिया और कैप्टन हीराम कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो प्रोकंसुलर शक्तियों के साथ आए थे और उन्हें भूखों को खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकालने का अधिकार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में इस बाहरी के हस्तक्षेप पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का अभियान छेड़ दिया। जब कॉक्स ने राहत के लिए 80,000 रुपए मांगे तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्थापित प्रक्रिया की आड़ ली और 3 प्रतियों में कागजी कार्रवाई की मांग की। हताश होकर कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा, लेकिन वहां की नौकरशाही भी उतनी ही संवेदनहीन थी। ढाका और त्रिपुरा के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मर रहे थे। इस बेतुकेपन का चरम तब आया जब आखिरकार चावल की व्यवस्था हो गई। आपको लगेगा कि संकट टल गया, लेकिन स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें नावें नहीं मिल रही हैं। विशाल नदी प्रणालियों वाले इस क्षेत्र में ढाका और चटगांव के अधिकारियों ने ये तर्क दिया कि उपयुक्त परिवहन नावें उपलब्ध नहीं थीं। क्या आप जानते हैं कि इस दैनिक प्रतिरोध का क्या परिणाम हुआ? जनवरी 1800 तक केवल 16,000 मन चावल ही बस्ती तक पहुंच सका, जो कॉक्स द्वारा मांगी गई मूल मात्रा के 1/4 से भी कम था। जो थोड़ी बहुत सहायता पहुंची, उसे भी भ्रष्ट अधिकारियों ने चुरा लिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने केवल भारी खर्च और स्थानीय अधिकारियों की परेशानी को देखा और मिशन को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने कॉक्स को ये कहते हुए वापस बुला लिया कि वे स्थानीय सत्ता के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रणालीगत तोड़फोड़ से कॉक्स का मनोबल और स्वास्थ्य दोनों टूट गए। वे वहां की जहरीली जलवायु में बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। आज कॉक्स बाजार शहर उनके एकमात्र स्मारक के रूप में खड़ा है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज का एक डरावना उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने निजी स्वार्थ की रक्षा करने वाले कुछ मुट्ठी भर नौकरशाह किसी भी दुश्मन सेना से कहीं अधिक घातक हो सकते थे। ढाका की लापता नावें समुद्र में नहीं खोई थीं। उनका गला लाल फीता शाही ने घूंट दिया था।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

शुभ संध्या, नमस्कार। मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

श्रोताओं, शाम की दहलीज पर ठिठका हुआ मन किसी इंतजार में है। जी हाँ, इस इंतजार में शामिल है रंग अपनेपन का, इस इंतजार में शामिल है रंग सुकून का, इस इंतजार में शामिल है रंग एक एकांत का। दिन का तमाम शोर बटोर कर शाम हमें अपने आगोश में ले लेती है। शाम के कंधे पर सर रखकर हम सोचते हैं कि पूरे दिन हमने क्या कुछ किया, इस पूरे दिन का हासिल क्या है, और इसी चिंतन के साथ शामिल होता है चिंतन अगले दिन हम क्या कुछ करेंगे इस बात का। तो ऐसे सुकून भरे पलों में हम आपके साथ हैं और रेडियो आजाद हिंद के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको देना चाहते हैं। आज की शाम सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का प्रसारण होगा, वतन का राग कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे देवगढ़ के गोंड राज्य की। टेक गुरु कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। बातचीत का विषय डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग। भारत विभूति कार्यक्रम में भिखारी ठाकुर की चर्चा होगी शाम 7:30 बजे। रात 8 बजे का वक्त होगा रेडियो रिपोर्ट का।

रात 8:30 बजे काव्य गुंजन के अंतर्गत सुनिएगा रश्मि रथी का तीसरा भाग। हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9 बजे। इसमें हम बात करेंगे पीके अयंगार की और रात 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। आज इसकी 68वीं कड़ी का प्रसारण होगा। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद प्रस्तुतियों का सिलसिला आरंभ होगा।

0: 40वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं विश्वे देवा, मित्रा वरुण, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, मरुद्गण, इंद्राग्नि, बृहस्पति और विश्वे देवा। छंद है अत्यष्टि, बृहति और त्रिष्टुप।
1: अस्तु श्रौषट पुरो अग्निम धिया दध आनु तच्छर्धो दिव्यम वृणीमह। इंदवायु वृणीमहे यद्धक्राणा विवस्वति नाभा संदाय नव्यसी अधप्रसून उपयन्तु धीतयो देवाम अच्छा न धीतयः। हमने अग्निदेव को बुद्धिपूर्वक धारण किया है, उस दिव्य प्रदीप्त ज्योति की हम आराधना करते हैं। नवीन याज्ञिक की यज्ञ वेदी पर आकर मनोरथ पूरे करने वाले इंद्रदेव और वायुदेव की हम प्रार्थना करते हैं। हमारी स्तुति निश्चित ही देवताओं के पास पहुँचे, हमारी प्रार्थनाएं देवों तक अवश्य पहुँचें।

0: मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना युवो रित्थाधि सद्मस्व पश्याम हिरण्ययम् धीभिश्चन मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः। हे मित्रा वरुणो, आप दोनों निज सामर्थ्य से सत्यवादिता और असत्यवादियों को अनुशासित करते हैं तथा अपनी शक्ति सामर्थ्य से उनके ऊपर शासन करते हैं। अतएव आप दोनों की स्वर्णिम तेजस्विता को अपनी बुद्धि, मन, इंद्रिय शक्ति तथा ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा हम प्रत्यक्ष देखते हैं। युवाम स्तोमे भिर देवयंतो अश्विना श्रावयंत इव श्लोक मायवो युवाम हव्याभ्यायवः। युवोर विश्वा अधिश्रियः वृक्षश्च विश्ववेदसा पुरुषायन्ते वाम पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये। हे अश्विनी कुमारो, देवताओं के प्रति श्रद्धा भावना से युक्त मनुष्य स्तवनों द्वारा आप दोनों का यशोगान करते हैं। श्रद्धावान याजक आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों के सर्वज्ञ होने से समस्त वैभव संपदाएं और अन्न आप दोनों के ही आश्रित हैं। हे मनोहारी देवो, सुंदर स्वर्णिम रथ के चक्र आपको वहन करते हैं। अचेति दस्रा व्यूनाक मृणवथो युञ्जते वाम रथयुजो दिविष्टिष्व ध्वस्मानो दिविष्टिषु अधिवाम स्थाम वंधुरे रथे दस्रा हिरण्यये। पथेव यन्ता वनुशासता रजोंजसा शासता रजः। हे सुंदर अश्विनी कुमारों, आप दोनों सारथी रूप में स्वर्गस्थ मार्गों पर तीव्र गतिशील अश्वों को रथ में नियोजित करके स्वर्ग पहुंचते हैं, ऐसा सभी का कथन है। हे उत्तम अश्विदेवो, आप दोनों को हम भली प्रकार बंधन युक्त स्वर्णिम रथ में विराजित करते हैं। आप दोनों अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों पर शासन करते हुए जल पर नियंत्रण रखकर निज मार्गों से प्रस्थान करते हैं। शची भिर नह शची वसु दिवा नक्तम दशस्यतम मा वाम राति रूप दशत कदा चनास्मदात्रिः कदाचन। हे पुरुषार्थ युक्त वैभव संपन्न अश्विदेवो, आप दोनों हमारे श्रेष्ठ कर्मों से प्रसन्न होकर हमें अनवरत अर्थात दिन रात धन प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्यों की कभी कमी न आए, हमारे सार्थक अनुदानों में भी कभी कमी न आए। वृषन्निन्द्र वृषपाणास इन्दव इमे सुता अद्रिसुतास उद्भिदस्तुभ्यं सुतास उद्भिदः ते त्वा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे गीर्भिर गीर्वाह स्तवमान आगहि सुमृडी को न आगहि। हे इंद्रदेव, यह पत्थर द्वारा कूट कर सामर्थ्य शक्ति के निमित्त पान योग्य सोमरस अभिश्रवण करके स्थापित है। यह स्थापित सोमरस आपके पीने के लिए शोधित किया गया है। सुंदर महान वैभव प्रदान करने के लिए यह सोम आपको उत्साहित करे। हे प्रशंसनीय इंद्रदेव, वाणी द्वारा की गई प्रार्थनाओं से आप यहाँ पधारें। प्रसन्नता पूर्वक आप हमारे यहाँ उपस्थित हों। ओ शूणो अग्ने शृणु ही त्वमीडितो देवेभ्यो ब्रवसी यज्ञी येभ्यो राजभ्यो यज्ञी येभ्यः यद्धत्यामंगिरोभ्यो धेनुम देवा अदत्तन वीताम दुह्रिये अर्यमा कर्तरी सचां एशताम वेद में सचा। हे अग्निदेव, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। अति पूजनीय देदीप्यमान देवों से कहें कि हे देवो, आपने गौवों को अंगिराओं के लिए प्रदान किया। उन गौवों को इकट्ठा करते हुए अर्यमा ने उन्हें दुहा। ऐसी गौवों से अर्यमा और हम दोनों ही परिचित हैं। मोशुवो अस्मदधि तानि पौंस्यासना भुवन्द्युम्नानि मोत जारी सुरस्मत् पुरोत जारिषुः यद्विश्चित्रम् युगे युगे नव्यम् घोषा दमर्त्यम् अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरम् दिधृता यच्च दुष्टरम्। हे मरुद्गणों, पुरातन काल की आपकी पराक्रमी सामर्थ्यों को हम कभी विस्मृत न करें। उसी प्रकार हमारी कीर्ति सदैव अक्षुण्य रहे तथा हमारे नगरों का विध्वंस न हो। आश्चर्यप्रद स्तुति योग्य और अमृत रूपी रस प्रदान करने वाली गौवों से संबंधित तथा मनुष्य मात्र के लिए जो धन संपदाएं हैं, वे सभी युगों युगों तक हमारे पास विद्यमान रहें। कठिनाई से प्राप्त होने योग्य जो संपदाएं हैं, उन्हें भी आप हमें प्रदान करें। अध्यंगः मे मनुषं पूर्वो अंगिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिर् मनुर् विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः तेषां देवेष्वा यतिरस्माकं तेषु नाभयः तेषां पदेन महिया न मे गिरेन्द्राग्नि आ न मे गिरा। पुरातन कालीन दध्यंग अंगिरा प्रियमेध कर्णव अत्रि और मनु ये सभी ऋषि हम मनुष्यों के प्रति जन्मों को जानते हैं। वे मननशील ज्ञानी हमारे पूर्वजों को जानते हैं। उन ऋषियों का देवताओं के साथ अति निकटस्थ संबंध है। साधारण मनुष्य देवों से ही शक्ति ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हीं देवों के अनुगामी बनकर हम हृदय से उन्हें प्रणाम करते हैं। स्तोत्रों से हम इंद्राग्नि की प्रार्थना करते हैं। होता यक्षद्विनिनो वंत वार्यम बृहस्पतिर यजति वेन उक्षभिहि पुरुवारे भिरक्षभिहि जघृब्मा दूर आदिशम श्लोक मद्रे रधत्मना आधार यद ररिंदानि सुकृतुः पुरु सद्मानि सुकृतुः। यज्ञकर्ता यज्ञ द्वारा विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करें। कल्याणकारी बृहस्पति सामर्थ्यप्रद तथा विभिन्न लोगों द्वारा वांछित सोम से यज्ञ संपन्न करें। दूरस्थ दिशा से आ रही पत्थरों द्वारा सोमवल्ली कूटने की ध्वनि हम स्वयमेव सुनते हैं। सत्कर्म रूपी यज्ञीय कर्मों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्नादि से भरे पूरे संपन्न रहते हैं। श्रद्धालु मन द्वारा याज्ञिक मनुष्य प्रचुर वैभव युक्त गृहों से सुशोभित रहते हैं। ये देवासो दिव्ये कादशस्थ पृथिव्या मध्ये कादशस्थ अपसुक्षितो महिनै कादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। हे देवो, आप पृथ्वी अंतरिक्ष और देवलोक इन तीनों लोकों में 11-11 की संख्या में हैं। हे देवगण, आप सभी इन आहुतियों को ग्रहण करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बनी रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि जीवन एक सरफिरा मौसम है जो कभी अपने साथ ले आता है सूखे पत्तों में आंधियां बांधकर, तो कभी दे जाता है भटकते बादलों से रिसती हुई बारिशें। जीवन एक सरफिरा मौसम है जो कभी अपने साथ बांध लाता है चांदनी से निखरी शरद की शीतलता, तो कभी डाल डाल हर पात से झरता मधुमेह वसंत। जीवन एक सरफिरा मौसम है जिसमें कोई एक रंग ठहरता ही नहीं, चाहा अनचाहा हर रंग हमें डुबोता रहता है पल पल, और जीवन के इस चाहे अनचाहे हर रंग को समभाव से देखने का हमें सामर्थ्य देती है हमारी

ये एक पल, एक क्षण की बात है कि जब हमारे भीतर प्रेम घटित होता है, परमात्मा अनुभूत होता है। सच तो ये है कि वो उपस्थित है सदा सर्वदा से, किंतु उसकी अनुभूति एक अलग ही सौंदर्य है। इस अनुभूति की महिमा अलग है और इसी को प्रसाद कहा गया है। जीवन एक पात्र है, प्यास है, एक गहन प्यास। ये प्यास जितनी गहन होती है, अनुभूति उतनी ही सघन। परमात्मा की अनुभूति के लिए चेतना की जागृति आवश्यक है और जागृति का यही प्रयास है नाम स्मरण।

श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम स्वयं को भगवान के लिए अर्पित कर दें। वही हमारे लिए सबसे उत्तम सहारा है। जो मनुष्य भगवान के सहारे को जानता है और समझता है, वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। उसका जीवन आनंद हो जाता है।

प्रभु चरणों की प्रीति मनुष्य के मन में प्रकाश भर देती है। अखिल विश्व में उसे परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। उसको पाप के प्रहार का फिर कोई भय नहीं रहता और न ही उसे मृत्यु डराती है। वो तो मग्न रहता है अपने आराध्य के प्रेम में।

ईश्वर माया के प्रभाव से बिल्कुल परे है। प्रभु के नाम की पुनरावृत्ति कर करके जिस व्यक्ति के मन में उनकी प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसकी आत्मा भी माया के प्रहार और प्रभाव से परे हो जाती है। इसीलिए आराधना में जप का विधान है, नाम स्मरण का विधान है।

श्रोताओं, जीवन की सम विषम परिस्थितियों को, जीवन के सुख दुख को, आंसू और मुस्कान को हम सम भाव से देख सकें, यही कामना उस परमेश्वर से हमारी। इसके साथ ही संपन्न होता है भक्ति संगीत का आज का ये कार्यक्रम। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग। वतन का राग कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद आप सुनेंगे आज का ये कार्यक्रम।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। साथ दुनिया ने दिया न मुकद्दर ने दिया, रहने जंगल ने कब दिया जो शहर ने न दिया। एक तमन्ना थी कि आजाद वतन हो जाए, जिसने जीने न दिया चैन से मरने न दिया। बेगम हजरत महल की ये नज्म उनके दिल के हालात को बयां करती है। जब वे 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने वफादार साथियों के साथ अवध की छोटी सी रियासत चहलारी पहुंचीं, जहां 18 साल के युवा राजा बलभद्र सिंह ने उनको पनाह दी। न सिर्फ पनाह बल्कि प्राणपण से उनकी रक्षा भी की और हिफाजत के साथ उनको नेपाल की सीमा पार घने जंगलों में पहुंचाने में पूरी मदद की। अधिकांश इतिहासकारों का कथन है कि 1857 का युद्ध अवध के इलाके में गांव-गांव में लड़ा गया और सभी लोगों ने इसमें खुलकर हिस्सा लिया। गंधर्व वन का इलाका बहराइच के आसपास का घना जंगल है। जनश्रुतियों के अनुसार ये बहर राजवंश की राजधानी थी। प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन अपने यात्रा संस्मरणों में किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सुंदर क्षेत्र सरयू नदी के किनारे बसा है। अवध का ये सुंदर हरित क्षेत्र 1857 की क्रांति में युद्ध का प्रमुख स्थान बन चुका था। 7 फरवरी 1856 को रेजिडेंट जनरल आउट्रेम ने अवध में कंपनी रूल लागू करने का आदेश जारी किया। बहराइच इस डिवीजन का केंद्र बना। मिस्टर विंगफील्ड को इसका कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये पूरा इलाका तालुकेदारों और छोटे छोटे जमींदार राजाओं में बंटा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के चलते सभी राजा और जमींदार उनसे नाराज थे। अवध के नवाब बिरजीस कद्र नाबालिग थे और उनके नाम पर बेगम हजरत महल अपना शासन चला रही थीं। इस पर भी अंग्रेजों की नजर थी। अक्टूबर 1819 में अंग्रेजों ने लखनऊ में एक दरबार समारोह पूर्वक किया। इसमें अवध के नवाब को स्वाधीन बादशाह घोषित किया, यानी दिल्ली से उनका संबंध विच्छेद। पर इसका छुपा अर्थ ये भी था, अवध पर कंपनी का पूर्ण आधिपत्य। अंग्रेजी सरकार कर्ज के नाम पर अवध के नवाब से रुपए लेती, पर वो वापस नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक गवर्नर जनरल को मनमानी रकम निकालने और खर्च करने का अधिकार था। कुप्रबंध के कारण अवध में हलचल मच गई। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाए, क्योंकि अयोग्य नवाब शासन सुधार नहीं करना चाहते। उन्हें निर्वासित कर दिया गया और कैद कर कलकत्ता भेज दिया। अवध की जनता इस दुख से जार जार रोई।

सैनिक छावनियों से उठी स्वतंत्रता संग्राम की आंच अब अवध के गांवों में भी पहुंची। ये ग्रामीणों का सुनियोजित प्रयास था। असंख्य जनता विद्रोह में शामिल थी। नाना साहेब अवध के जमींदारों और राजाओं से मिलने बहराइच पहुंचे। गुप्त मंत्रणा में शामिल प्रमुख नायक थे गोंडा बहराइच के राजा देवी बख्श सिंह, बैसवारा के राणा वेणी माधव, राव राम बख्श के साथ चहलारी के युवा राजा बलभद्र सिंह। गुल्लावीर के इस मंत्रणा शिविर में शामिल सभी जमींदारों, तालुकेदारों और राजाओं ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। भिंगा, बौंडी, रेहुआ, चारदा के लोगों ने भी इसमें शामिल होना स्वीकार किया। लखनऊ में जब विद्रोहियों की सेना ने जबरदस्त हमला बोला तो आसपास के क्षेत्र में भी हलचल मच गई। बेगम हजरत महल अपने साथियों के साथ बाराबंकी पहुंची। वहां महादेवा में सहयोग के लिए उन्होंने राजाओं से कहा। सभी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, किंतु नेतृत्व कौन करेगा। इस पर सब चुप थे। आखिर में चहलारी के 18 वर्षीय युवा राजा बलभद्र सिंह ने बागडोर अपने हाथ में ली और ऐलान किया कि वो इसका नेतृत्व करेंगे। सभी ने उनके इस निर्णय की प्रशंसा की और तन मन धन के साथ अपनी सेनाएं सहयोग के लिए देना स्वीकार किया। राजा बलभद्र सिंह का जन्म 10 जून 1840 को हुआ था। इस समय उनकी उम्र थी मात्र 18 वर्ष। इस युवा वय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना बड़े साहस का काम था। उनकी जमींदारी मात्र 44 गांव की थी। उनका कद लंबा चौड़ा और आकर्षक था। 1857 के इतिहास में ये लड़ाई नवाबगंज के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 12 से 14 जून 1857 के बीच हुए इस युद्ध में बाराबंकी के सभी तालुकेदार शामिल थे। इस लड़ाई में अवध राज्य के सैनिक, विद्रोही सिपाही और बैसवाड़े के आम लोग शामिल हुए। इस क्षेत्र के लोगों के शारीरिक शौर्य की प्रशस्ति अंग्रेजी लेखक मेटकाफ, W.H. रसल और कर्नल स्लीमन ने भी अपनी कलम से गाई है। उन दिनों रामपुर के राय साहबों ने भी गांव-गांव में मोर्चा खोल दिया था। जहांगीराबाद और हड़हा में बांस के जंगल विद्रोहियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गए थे। सर होप ग्रांट की सेनाएं उनका पीछा कर रही थीं। राजा बलभद्र सिंह चहलारी के युद्ध कौशल पर टिप्पणी करते हुए सर होप ग्रांट ने लिखा, केवल 2 तोपों से खुला हमला शौर्य तथा रण कौशल की दृष्टि से भारत की अनेक लड़ाइयां देखने के बाद भी अविस्मरणीय और अद्वितीय था। अवध की लोक गाथाओं में राजा बलभद्र सिंह चहलारी के शौर्य का वर्णन आज भी जीवित है।

स्वतंत्र सैनिक रामनगर से मितौली, मितौली से मसौली बाराबंकी पहुंचे और वहां से जहांगीराबाद। यहां के राजा रज्जाक बख्श का मजबूत किला अंग्रेजी फौजों ने ढहा दिया था। आसपास के जंगलों में आग लगा दी गई ताकि कोई छिप न सके। जब अंग्रेजी सेना नवाबगंज पहुंची

सेना को उलझाए रखा। उनके साथ बौंडी के राजा हरदत्त सिंह और चरदा के राजा भी लड़ रहे थे, पर सबसे अधिक बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रदर्शन राजा बलभद्र सिंह ने किया। उनके 1000 वीर सैनिकों में से 600 ने यहां वीर गति पाई। युद्ध में लड़ते लड़ते राजा बलभद्र सिंह भी घायल हुए और उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बाबा राम सनेही भी अंग्रेजी फौजों को रोकने की कोशिश में इसी लड़ाई में शहीद हुए थे। इसके बाद भी लंबे समय तक आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ाइयां चलती रहीं और अवध का ये क्षेत्र काफी दिनों तक स्वतंत्रता की सांस लेता रहा। अवध में 1857 का युद्ध जन जागरण का शंखनाद था। गांव गांव के किसान, साधारण मजदूर इसमें शामिल थे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी राज से मुक्त कराने के लिए। जुल्म की आंधियां बढ़ती रही लम्हा लम्हा, फिर भी परचम को आसमां से उतरने न दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: जल प्रबंधन और उनके द्वारा वल्लभ संप्रदाय को दिए गए संरक्षण के बारे में जाना। परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती तथा मुगल सेनापति आसफ खां के मध्य सन 1564 ईस्वी में नरई का युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती के अदम्य साहस, शौर्य एवं बलिदान का इतिहास भी जाना। गोंड रानी दुर्गावती के प्रति हम सभी नतमस्तक हैं। भारत के इतिहास में वो स्वर्णाक्षरों की तरह सदा दैदीप्यमान रहेंगी। पिछले एपिसोड में हमने रानी दुर्गावती के वंशज हृदय शाह के बारे में सुना। वीरांगना रानी दुर्गावती के लगभग 70 वर्षों बाद राजा हृदय शाह ने 1635 ईस्वी में गढ़ा राज्य की राजगद्दी संभाली। उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थापित की। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा रामनगर। हमने रामनगर के नगर नियोजन और स्थापत्य कला के बारे में सुना। इसके अलावा कवि हृदय राजा हृदय शाह के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की। हमारे साथ इन सभी चर्चाओं में शामिल रही हैं अब तक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना, जिन्होंने ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। आज भी पूजा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो पूजा जी, इस एपिसोड को शुरू करने के पहले मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि राजा संग्राम शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा हृदय शाह के योगदान के साथ गढ़ा मंडला राज्य का गौरवशाली इतिहास आपने हम सबको सुनाया, लेकिन क्या इनके समकालीन और भी गोंड राज्य हमें मध्य भारत में देखने को मिलते हैं?
1: बिल्कुल, वीरांगना रानी दुर्गावती के समकालीन मध्य भारत में कुछ अन्य छोटे राज्य भी थे जिनकी जानकारी हमको मिलती है। जैसे एक है गरोला का राजा, दनकी का राजा, खटोला का राजा, मुग्धा, मंडला, देवहार और लांजी का राजा।
0: अच्छा।
1: इनकी कुछ कुछ जानकारियां हमें यहाँ वहां मिलती हैं। इनमें ही एक और नाम मिलता है हरिया का राज्य।
0: अच्छा।
1: हरियागढ़ भी कहलाता था ये, जो आज मध्य प्रदेश है उसके छिंदवाड़ा जिले के आसपास था ये हरियागढ़।
0: अरे वाह।
1: और इसी के साथ में एक और राज्य का जिक्र मिलता है जो गोंड राज्य था, जिसका नाम था देवगढ़।
0: जी।
1: आज भी अगर छिंदवाड़ा जाते हैं तो इस देवगढ़ राज्य की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको हम देख सकते हैं। तो देवगढ़ राज्य के उद्भव की बहुत सी कथाएं हैं। पहली कथा का उल्लेख हमको एक 1864 ईस्वी का दस्तावेज है जिसमें मिलता है। तो इस दस्तावेज के अनुसार देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था वो अपनी वंशावली महाभारत में वर्णित एक राजा है विचित्रवीर्य, उससे जोड़ते हैं।
0: अच्छा।
1: और कहते हैं कि इस वंशावली की 25वीं पीढ़ी में राजा रूपशाह हुए और इसी वंशावली में 51वीं पीढ़ी में महिपत शाह हुए, 52वीं पीढ़ी में सुरबाशाह और 53वीं पीढ़ी में बीरवान शाह का नाम आता है। और इसी वंशावली की 54वीं पीढ़ी में हमको एक राजा का नाम दिखाई पड़ता है, वो है जाटवा शाह अजानबाहु। तो देवगढ़ के यही प्रतापी राजा हुए हैं जिन्हें हम जाटवा के नाम से जानते हैं।
0: तो ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूजा जी ने हमें बताई कि गोंड राज्य महाभारत से भी संबंधित यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो कि निश्चित रूप से पूजा जी और हमें कुछ आगे बताएंगी। और इसके पहले कि हम अजानबाहु जाटवा की बात करें, कैसे वो राजा बने ये बात करें, एक चीज जरूर मेरे ध्यान में आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ये जिक्र करूं श्रोताओं की। देखिए छिंदवाड़ा आज भी कितना हरा भरा है और पूजा जी ने बताया कि तब जब वो गोंड राज्य वहां पर था तब हरियागढ़ उसका नाम था, तो निश्चित रूप से वो हरियाली के कारण ही वहां पर हरियागढ़ रहा होगा। और फिर छिंदवाड़ा भी जो वहां छींद के पेड़ कहते हैं कि वो जो उसके कारण छिंदवाड़ा नाम पड़ा है। तो पूजा जी अब आगे ये बताइए हमें कि देवगढ़ के गोंड राज्य की 54वीं पीढ़ी में जो जाटवा शाह अजानबाहु हुए वो राजा कैसे बने,
1: जाटवा कैसे राजा बने, इसकी एक लोक कथा हमको मिलती है।
0: जी।
1: कहते हैं कि छिंदवाड़ा और उसके आसपास गवलियों का शासन था।
0: जी।
1: यहां दो गवली भाई थे, एक का नाम था रणशूर और एक का नाम था घनशूर।
0: अच्छा।
1: तो रणशूर घनशूर का यहाँ पर शासन हुआ करता था और जाटवा गोंड जो था उनके यहाँ नौकरी करता था।
0: अच्छा।
1: ऐसा भी मानते हैं कि जाटवा बड़ा शक्तिशाली था। एक दिन क्या हुआ कि किले का जो दरवाजा होता है वो किले में जमीन पर रखा हुआ था, तो जाटवा ने उस भारी भरकम दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को अपने हाथों से उठा लिया।
0: अच्छा।
1: और ये बात जब रणशूर घनशूर को पता चली तो वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि इतना शक्तिशाली किसी व्यक्ति का अपने किले में होना एक चिंता का विषय किसी भी राजा के लिए होता है। अब रणछोड़ और घनछोड़ ने एक योजना बनाई। दिवाली के दिन जैसी की परंपरा है, खेल वगैरह होते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, तो रणछोड़ घनछोड़ ने जाटवा को एक लकड़ी की तलवार दे दी और कहा कि ये जो भैंसा है इसको इस तलवार से मार दे।
2: अच्छा,
1: अब जैसी की योजना थी कि तलवार तो लकड़ी की थी, तो जब जाटवा वार करेगा तो भैंसा उल्टा उसको मार देगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार जाटवा के हाथ में आई, उसमें तो देवी शक्ति आ गई और जाटवा ने जैसे ही भैंसा पर वार किया उसका वध हो गया। और अगले ही पल
2: जी
1: कहते हैं कि जाटवा हाथी पर विराजमान हुआ और उसने उसी तलवार से रणछोड़ और घनछोड़ का वध कर दिया। तो इस तरीके से जाटवा जो है वो देवगढ़ का राजा बना।
2: तो मतलब बाजी यहाँ पर पूरी तरह से उल्टी पड़ गई।
1: हाँ, आज भी जो देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में, वहां पर एक बुर्ज है
2: जी,
1: और इस बुर्ज को देवी का स्थान माना जाता है
2: जी।
1: और जैसा कि आप जानते भी होंगे शायद कि देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था उनके वंशज आज भी हैं, नागपुर में निवासरत हैं। तो आज भी उनके यहाँ कोई धार्मिक उत्सव होता है या पूजा पाठ होता है, या जैसे मुंडन हुआ, विवाह के उपरांत की जो संस्कार है, तो वो आज भी वे देवगढ़ आते हैं और इसी बुर्ज पर देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
2: ये किस तन की बात है पूजा जी, ये कब वो देवगढ़ के राजा बने?
1: अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएं तो स्पष्ट होता है कि 1584 ईस्वी के आसपास जाटवा जो है देवगढ़ के राजा बन चुके थे। और फिर उनके वंशजों के बारे में भी हमें पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि उनका शासन जाटवा का 1620 ईस्वी तक रहा होगा, यानी कि 1584 ईस्वी से लेके 1620 ईस्वी तक। तो देवगढ़ में जो उनके बाद के जो उनके वंशज हुए वो हुए दलशाह, जो 1620 में राजा बने
2: जी।
1: फिर दलशाह के बाद कोक्षा हुए, उनका राजत्व काल आरंभ होता है 1634 से। और इसके बाद केसरी शाह हुए हैं, और इनके बाद के जो राजा हैं उन्होंने भी अपना नाम जाटवा रखा, तो वो जाटवा द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं
2: जी।
1: और उनका शासनकाल है 1640 से 1657 तक। फिर कोक्षादित्य हुए हैं 1657 से लेके 1687 के बीच में
2: जी।
1: और इसके बाद हमको एक और राजा का नाम मिलता है बख्त बुलंद
2: जी,
1: जो कि 1687 से 1700 ईस्वी तक आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राजा हैं जो बहुत शक्तिशाली नहीं रहे, और फिर बाद में देवगढ़ राज्य का विलय नागपुर के मराठा राज्य में हो जाता है।
2: श्रोताओं, हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमें पूजा जी ने बताया था कि गोंड राज्य के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में आईना इकबरी में स्पष्ट उल्लेख है। और यहाँ भी ये पता चलता है आईना इकबरी से कि राजा जाटवा के पास 2000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 1001 से ज्यादा हाथी थे। पूजा जी, ये हाथियों से संबंधित एक कथा जो कि देवगढ़ से जुड़ी हुई है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: हाथियों से संबंधित एक बड़ी रोचक कथा देवगढ़ के साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवगढ़ में बहुत से हाथी थे। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हाथियों का उपयोग उस समय बहुत जरूरी था, सेना में, यातायात, माल ढोने में, भारी वाहन और या फिर जो सामान को ढकेलने में, निर्माण कार्य में, मनोरंजन, खेल, शानो शौकत सभी में तो हाथियों का उपयोग होता था। तो इसलिए मुगलों की नजर विंध्याचल और सतपुड़ा के वन क्षेत्रों में लगी रहती थी, क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म के हाथी होते थे, और वो भी ऐसे हाथी जिन्हें गोंड बहुत ही अच्छा प्रशिक्षित किया करते थे। तो हमेशा मुगल चाहते थे कि उनको यहाँ के हाथी मिल जाएं। ये समय है दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल का। उनका समय था 1634 ईस्वी से 1644 ईस्वी के बीच में
2: जी।
1: और यहाँ पर उस समय जो हमने देवगढ़ के जाटवा राजा की बात की, उनके वंशज थे जाटवा द्वितीय।
2: अच्छा,
1: उनका शासन चल रहा था। तो जाटवा द्वितीय के समय की ये घटना है। कहते हैं कि जाटवा द्वितीय के पास एक बड़ा ही विचित्र हाथी था, जटाशंकर।
2: अच्छा,
1: और उसकी चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब मुगल शासक शाहजहां को उस विचित्र और बलशाली हाथी जटाशंकर के बारे में पता चला, तो शाहजहां किसी भी कीमत पर उस हाथी को हासिल करना चाहते थे
2: जी।
1: तो उन्होंने अपने संदेश वाहकों को देवगढ़ के राजा जाटवा द्वितीय के पास भेजा और उनसे कहा कि जो भी आपके पास ये विचित्र हाथी है जटाशंकर, वो हमें दे दें। लेकिन जाटवा द्वितीय ने उन्हें कहलवाया कि उनके पास ऐसा कोई हाथी नहीं है।
2: अच्छा।
1: लेकिन शाहजहां उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वे बार बार संदेश भिजवाते रहे और हर बार जाटवा द्वितीय इस बात से इनकार करते रहे कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी जटाशंकर नाम का कोई विचित्र हाथी है।
2: जी।
1: अब बात आगे बढ़ गई। हाथी के लिए मुगल शासक कितना व्याकुल था इसका हमें पता चलता है जब शाहजहां और उनका जो बेटा था औरंगजेब,
2: जी,
1: दोनों के बीच में 5 पत्र इस संबंध में लिखे गए हैं।
2: अच्छा।
1: जो अब ऐतिहासिक दस्तावेज हैं।
2: जी।
1: तो उस समय जब शाहजहां दिल्ली के शासक थे तो उनका जो शहजादा था औरंगजेब वो दक्कन का वायसराय था।
2: जी।
1: इसलिए औरंगजेब दक्कन और उसके आसपास के मामले देखा करता था।
2: जी।
1: तो देवगढ़ भी उसी क्षेत्र के आसपास था, देवगढ़ पर भी औरंगजेब ही नजर रखा करता।
2: अच्छा।
1: था। तो शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखकर सूचित किया कि देवगढ़ के राजा जाटवा के पास जटाशंकर नाम का एक विचित्र हाथी है और वह इसे कैसे भी प्राप्त करके दिल्ली ले आए। ये 5 पत्र जो हैं ये आदाबे आलमगिरी में संग्रहित हैं।
2: अच्छा।
1: और इन पत्रों को अंग्रेज विद्वान विल्स ने अनुवाद किया है।
2: तो क्या उन पत्रों का, उन खतों का जो भी मजमून था वो कुछ पता चल सका है कि उनमें क्या लिखा था?
1: बिल्कुल। तो जैसे पहला पत्र है, तो पत्र औरंगजेब ने लिखा है शाहजहां को और उसने कहा कि आपने जैसा कि संदेश भिजवाया था हमने देवगढ़ से 170 हाथी हासिल कर लिए हैं।
2: अच्छा।
1: इनमें से कोई सा भी हाथी जटाशंकर नहीं है। अभी भी उसके पास यानी देवगढ़ के राजा के पास 200 हाथी और हैं। इनमें से कौन सा हाथी जटाशंकर हो सकता है हमें नहीं पता। आगे वह लिखता है कि मैंने एक अधिकारी को देवगढ़ यह पता लगाने के लिए गुप्त रूप से भेजा था कि देवगढ़ में अब कितने हाथी हैं और जटाशंकर उनमें से कौन सा हाथी है। लेकिन वह अधिकारी 3 माह वहां छुप कर रहा और आखिर तक उसे जटाशंकर नाम का कोई हाथी प्राप्ति नहीं हुआ।
2: अच्छा।
1: फिर वह आगे लिखता है कि यह उचित होगा कि महामहिम शाहजहां जिसने भी आपको जटाशंकर हाथी के बारे में जानकारी दी थी उस व्यक्ति से ये पता करें कि उसे ये जानकारी कहां से कैसे मिली, तो फिर मैं जटाशंकर को ढूंढ पाऊंगा।
2: ये तो भाई हाथी ना हो गया, रहस्य हो गया, ऐसा लग रहा है हाथी नहीं, ये सुई ढूंढ रहे हैं और वो सुई इन्हें मिल नहीं रही। तो फिर क्या हुआ, क्या कोई और पत्र ऐसा मिलता है बाकी के जो आपने 5 पत्रों का जिक्र किया, क्या अगले पत्रों में कुछ जिक्र हुआ कि जटाशंकर वास्तव में था या नहीं, मिला या नहीं?
1: दूसरा पत्र शाहजहां का है।
2: जी।
1: और जिसमें वह फिर से जटाशंकर और अन्य हाथियों की जानकारी मांगता है। तीसरे पत्र में शहजादा औरंगजेब लिखता है कि वह चांदा के शासक से जटाशंकर के बारे में पता लगाने के लिए मदद ले रहा है, यानी दूर दूर तक के ये पता किया जा रहा है कि देवगढ़ में जटाशंकर नाम का हाथी है क्या और है तो कैसे मिलेगा। उसने देवगढ़ में भी चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचर लगा दिए हैं और जल्दी ही इस मामले में सफलता मिलेगी, उसने इस पत्र में ऐसी आशा व्यक्त की है। लेकिन तब भी जटाशंकर हाथी के बारे में औरंगजेब कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तब औरंगजेब ने चौथे पत्र में लिखा कि मुझे अपने पत्र का जवाब आपसे प्राप्त हुआ है, आपने पत्र में निर्देश दिया है, ये पत्र वो शाहजहां को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं।
2: जी, जी।
1: और उसमें वो लिखते हैं कि शाहजहां को कि आपने पत्र में निर्देश दिया है कि देवगढ़ के जमींदार से पूरा कर वसूल कर लिया जाए।
2: जी।
1: और जटाशंकर नाम के हाथी के अलावा भी जितने हाथी हैं सभी हाथियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आपके आदेशानुसार मैंने मिर्जा खान और हदीदा खान को रवाना कर दिया है। ऐसी आशा है कि हमारी कोशिशों से जल्दी ही सफलता मिलेगी और देवगढ़ के सभी हाथी हमारे कब्जे में होंगे।
2: भाई वाह, ये तो मतलब बहुत ही विचित्र वाकई घटना, हाथी से भी विचित्र घटना तो ये लग रही है। ये इतिहास के जो हमें दस्तावेज हैं, जो ये पत्र हैं, जो पिता पुत्र के बीच में मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच जो बातचीत हुई है, तो श्रोताओं को भी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही होगी और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि आखिर वो हाथी मिला या नहीं हुआ। अब पांचवें पत्र का राज भी आप खोल ही दीजिए।
1: जी हाँ, जैसे इस चौथे पत्र से पता चल रहा है कि एक हाथी को पाने के लिए किस तरीके से देवगढ़ पर कर भी लगाया गया और उससे वसूला गया, वो भी देखने लायक है। लेकिन जब आखिरी

0: साफ इस बात से ये भी पता चलता है कि उस समय कोई भी शासक रहा हो, जबकि शाहजहां दिल्ली पर राज कर रहे थे, मुगल शासक थे, इतिहास में इतना बड़ा नाम आता है, पर वो एक विचित्र हाथी के चलते न सिर्फ उन्होंने पूरे गढ़ा राज्य पर वहां पर बहुत सारा कर लगा दिया, बल्कि एक हाथी को पाने के लिए जितने भी हाथी जाटवा द्वितीय के पास थे वो सब उन्होंने हड़प लिए। तो इससे ये जरूर समझ में आता है कि पशुधन उस समय कितना महत्वपूर्ण होता था, और वो भी हाथी जैसा पशु जो न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि वो युद्ध नीति में, युद्ध कला में काम आता था, क्योंकि वो ज्यादातर प्रशिक्षित होते थे और वो किसी भी राजा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकते थे। पूजा जी, इस बारे में आपसे थोड़ा सा कुछ और जानना चाहेंगे।
1: जी हाँ, ये जो मध्यकाल है इसमें हाथियों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यदि आपको व्यापार करना है तब भी माल ढोने के लिए बड़े बड़े हाथियों की आवश्यकता होगी, और हाथी शक्तिशाली होते हैं, लंबे समय तक सफर भी कर पाते हैं, यद्यपि धीमे चलते हैं, लेकिन प्रशिक्षित होने के कारण उनके साथ का व्यवहार आसान होता है। तो हम देख ही रहे हैं कि गोंड राज्यों के आपस में दूसरे राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध है, हमने गढ़ा के संबंध में भी देखा
0: जी।
1: इसके अलावा युद्ध में तो प्रयोग हो ही रहे हैं, हाथी उस समय सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था
0: जी।
1: और साथ ही हाथियों का उपयोग निर्माण कार्य में भी बहुत हो रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो मंदिर, महल, किले वगैरह बनते थे उनके जो माल को ढोने के लिए,
0: सामग्री पहुंचाने के लिए,
1: या
0: ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए,
1: ऊंचाई तक पहुंचाना है, या बड़े बड़े जो पाषाण खंड हैं
0: जी,
1: उनको रोलर की सहायता से जो धक्का देकर ले जाया जाता था उसके लिए भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता था। हम मुगल काल की यदि मिनिएचर पेंटिंग्स को भी देखें जिसमें कि किलों का निर्माण हो रहा है या कोई युद्ध का सीन है, तो उसमें भी बहुसंख्या में हमको हाथी नजर आते हैं। तो हाथियों का बहुत सारा उपयोग था। और हाँ, इसके अलावा मनोरंजन में भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता रहा, उनसे विविध प्रकार के खेल दिखाना या उनके ऊपर बैठकर तलवारबाजी करना या दूसरे तरीके के खेल। इसके साथ ही जो शाही सवारियां होती थी उसमें भी हाथियों का बड़ा ही उपयोग था। हम लोग देखते हैं ना कि बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर किले होते हैं
0: जी,
1: और उन किलों पर चढ़ना इतना आसान तो नहीं था, आज भी नहीं है। तो शाही सवारियां जब किलों पर चढ़ती थी तो वो हाथी पर पालकी रखकर ही जाया करते थे, तो उसके लिए भी बड़े उपयोगी थे हाथी।
0: अच्छा, एक एक एक और सवाल जहन में आ रहा है पूजा जी, कि बहुत सारे हम किलों की तरफ, महलों की तरफ जाते हैं तो द्वार पर हाथी जरूर वहां पर बने होते हैं, अंकित होते हैं, या फिर दोनों तरफ होते हैं। क्या सिर्फ हाथी, क्योंकि शुभता का प्रतीक भी कहे जाते हैं, सिर्फ इसलिए, या फिर कोई और इसके पीछे राज है?
1: जी हाँ, हाथी शुभ तो है ही, इसके साथ ही हाथी राजसी शक्ति का भी प्रतीक है। इसलिए ज्यादातर जगहों पर हमको द्वारों पर हाथियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। देवगढ़ का किला जो है उसमें तो एक हाथी द्वार भी है।
0: अच्छा,
1: जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।
0: बिल्कुल, हाथी द्वार, हाथी खाना, कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इतिहास के पन्नों में हमें समझ में आती हैं, हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें पढ़ पाते हैं इतिहास के पन्नों से। कार्यक्रम चल रहा है और पूजा जी प्रसिद्ध पुरातत्वविद हमें देवगढ़ के बारे में बता रही हैं, जाटवा के बारे में उन्होंने बताया, गोंड शासक जाटवा और जाटवा द्वितीय की कहानी चल रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात आज उन्होंने बताई। उस राज से तो पर्दा इतिहास के जो दस्तावेज है उसके जरिए भी नहीं हट पाया है, लेकिन पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में कि देवगढ़ की जो स्थापत्य शैली थी वो किस तरह की थी, जो नगरीय नियोजन था वो किस तरह का था, क्योंकि आज समय हो गया है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। तो पूजा जी को हम धन्यवाद देते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी दिलचस्प जानकारियां देने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से आज का अंक यहीं समाप्त होता है। परिकल्पना और निर्देशन इस कार्यक्रम का सुश्री अदिति गौड़ का है, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इतिहास के पन्नों से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम टेक गुरु।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं शिवानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। हमारे टेक गुरु प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन सभी तकनीकी प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो तकनीक की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और तकनीक की दुनिया में एक सच्चे गुरु बनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग, यानी मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कम करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एकता सरीन जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग और स्पेशली टीनेज काउंसलिंग में सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, प्रैक्टिसिंग विद NCERT। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता सरीन जी।
2: नमस्कार शिवानी जी।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो डिजिटल डिटॉक्स है या मोबाइल फास्टिंग कह लीजिए, डिजिटल डिवाइसेस से फास्टिंग है, डिटॉक्स है, ये क्या है और इसके लाभ क्या है?
2: चलिए इसको एक बहुत साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं
1: जी।
2: सपोज शिवानी जी, आपको कल एक पार्टी में बुलाया गया था, आप एक पार्टी से होके आए और क्योंकि पार्टी में बहुत लावश फूड था और आपको लगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो नेक्स्ट डे आप जो रेगुलर मॉर्निंग में आप उठते हो, एक अच्छा फील करते हो, आपको लगा बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, तो आपने जो प्लान किया था कि आज शायद आप राजमा चावल खाने वाले हैं, तो आपने कहा कि आज मैं राजमा चावल ना खा के क्यों ना खिचड़ी खाऊं या थोड़ा सा सूप ले लूं, तो मेरे को लाइट फील कर
1: लाइट फील होगा।
2: और मैं वैसा करती हूँ, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको एक्सेस शुगर के कारण बोला जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। सिमिलरली इज डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल फास्टिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है हर एक का, अभी आप बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सभी, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है कि हम हर मिनट में देखते हैं कि हमारा क्या नोटिफिकेशन आया, हम अपना सोशल नेटवर्क जो हमारा अभी तक था वो हमारा कम हो गया है, हमारी सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम अक्सर भाग लेते थे वो कम हो गई हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अपने उस स्क्रीन टाइम को कम करना। कम हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल डिटॉक्स।
1: वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उससे सुधर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है कि उससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल शत प्रतिशत ये बात बोल सकती हूँ। सपोज कीजिए आप दिन में 6-7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका रहता है और आप उसको कोशिश कीजिए कि, मैं एकदम नहीं बोलूंगी आप 4 घंटे के लिए कम कर लीजिए, 1 घंटे से आप शुरू कीजिए, आप 1 घंटा उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपका नींद, जो आपका स्लीप पैटर्न्स है उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है। एक बार हमारा स्लीप पैटर्न इंप्रूव होता है, जो आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया के शिकार है, उससे आपका डेफिनेटली, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आप उसको क्रिएटिव वे में यूज करोगे या सिंपली रिलैक्स करोगे, उससे आप बहुत हद तक आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल इलनेस है, वो डेफिनेटली कम होगी।
1: यानी कि बहुत हद तक जो मानसिक तनाव हमें हो रहा होता है वो बहुत कुछ डिवाइसेस की, इंटरनेट, मोबाइल्स एंड फोन्स की वजह से होता है। मतलब हम उत्सुक हो जाते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए क्या आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्या मोबाइल फास्टिंग की अगर बात करें तो उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है जब हम मोबाइल फास्टिंग कर रहे हैं?
2: ये अभी मैंने अपने एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इस प्लान को, इस पर्टिकुलर मोबाइल फास्टिंग को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप दिन भर के लिए मोबाइल मत यूज कीजिए। ये छुट्टियों से हमने अभी ये बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया, दिस वॉज ऑन 1st of May वी स्टार्टेड और ऑलरेडी हम इसको 20 डेज तक कम्प्लीट कर चुके हैं। उनके साथ में जब ये लोग मेरे चैम्बर में होते हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं, जैसे ही वो मेरे चैम्बर में आते हैं वो मेरे पास 2 घंटे के लिए होते हैं, तो उस 2 घंटे में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होता है ना, मैं ना वो मेरे बच्चे उन मोबाइल को टच करते हैं। 2 आज तक हमारा मोबाइल बिल्कुल उस बॉक्स में रहता है, कितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हम उसको नहीं देखते, और ये हर रोज का पैटर्न हो चुका है। और मैं माई सेल्फ आई डू इट विद माई फैमिली, मेरा एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन मोबाइल को हम लोग टच नहीं करते हैं, दैट इज दैट डे हम प्लान करते हैं कि मोबाइल को टच नहीं करना। तो उस दिन हम क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता हमको, तो बट ऑब्वियस आपके पास चॉइस ही नहीं होती कुछ
1: नहीं
2: तो इनिशियली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं एक दिन बिल्कुल किसी को नहीं बोलूंगी जो शुरुआत में कर रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप एक घंटा दो घंटा तीन घंटे से शुरुआत करेंगे जहां आपको लगता है कि अभी कैन बी अ फैमिली टाइम। सपोज हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं शिवानी, तो हम भी ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि आज डिनर टाइम है, हम लोग इस टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे। एक मोबाइल बॉक्स रख दिया, उसमें मोबाइल को रख दिया गया और हम उस टाइम पे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज मम्मा आपने क्या किया, मम्मा आपका दिन कैसा निकला, डैडी आपके ऑफिस में क्या क्या हुआ, बच्चे अपना क्योंकि वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में है, उनके साथ कैरम हो सकता है, उनके साथ कुछ बुक रीडिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ स्टोरी टेलिंग, अगर मेरे दादा दादी है तो हम कुछ स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल मैंने देखा इवन बुजुर्ग भी हर टाइम मोबाइल को लेके बैठे होते हैं, तो उनके साथ भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनसे हम कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसे खेल जो उनके जमाने में होते थे, हम वो चीज भी उनसे सीख सकते हैं, तो एज अ फैमिली वो खेला जा सकता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्पेशली डिनर के टाइम पे, ब्रेकफास्ट या जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, तब अगर हम डिजिटल डिटॉक्स पूरी तरीके से करें, ना कि सिर्फ हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि टेलीविजन का भी इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे से बातें करें, दिनचर्या के बारे में पूछे, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा और एक दूसरे के बारे में जो जानकारी हमें नहीं पता है वो मिल जाएगी हम लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। एकता सरीन जी, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या चुनौतियां हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स, अगर हम लैपटॉप्स यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे, तो उसकी कोई चुनौतियां तो होंगी।
2: डेफिनेटली चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। इनिशियली बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन जैसी चीजों की, बस आप अपने यूज टू हो उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना बड़ा हुआ है। आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में आप बैठते हो या किसी भी पार्टी में आप जाते हो, हर कोई अपने मोबाइल के साथ बैठा होता है। आप कोई रेल यात्रा कर रहे हो, आपको पुराना टाइम याद होगा कि आपस में पैसेंजर्स डिस्कस करते थे, आजकल हर कोई अपने मोबाइल के साथ में होता है। आप वो साइड सीन जो साइड में दिख रहे होते थे वो आप मिस कर जाते हो कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन सा सीन था, कोई वॉटरफॉल्स आए, कोई फील्ड्स आए। बच्चों को पता नहीं होता कि आजकल आपका ट्रैक्टर्स का यूज कैसे हो रहा होता है फील्ड्स में, उनको स्पेशली लेके जाना पड़ता है गांव में दिखाने के लिए, या पॉटर्स व्हील किस तरह से यूज होते हैं। तो ये सब चीजें बच्चे आराम से देख सकते हैं ड्यूरिंग रोड जर्नीज, ट्रेन जर्नीज। इवन मैं बोलूंगी जब हम रोड जर्नी पे भी साथ साथ हैं, उस टाइम पे भी हम पर्टिकुलरली डिजिटल डिटॉक्स रख सकते हैं कि उस टाइम पे हम यूज ना करें और शेयर करते हुए जाए स्टोरीज, क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हम आपस में शेयर कर सकते हैं, क्या हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं, लेट्स डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड। कुछ पेड़ों के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है, किस तरह की चीजें, किस तरह से आपका वाटर फ्लो है आसपास के जगहों पे, क्या आपका वाटर इनटेक चल रहा है उस एरिया में, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो जीके भी बच्चे का बढ़ता है और हम मोबाइल से भी अपने आप को दूर करते हैं। और जहां तक चैलेंजेस की बात होती है, अगर हम उस चीज में अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे उस डिस्कशन में, तो बच्चे का ध्यान मोबाइल से दूर हटेगा, ग्रेजुअली हम भी एज अ एडल्ट उससे दूर हो पाएंगे।
1: जैसे एडल्ट्स की आपने बात की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम भी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, और स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये चीजें भी हो रही है, डिवाइस उनके साथ है, तो डिजिटल डिटॉक्स तो हो नहीं रहा है। ऐसे आपने बताया कि सीनरीज हम मिस कर रहे होते हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, अगर ये हम करें सही मायने में, तो क्या उससे नींद में भी सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल, इंसोम्निया एक बहुत, एज ए काउंसलर मैं रेगुलरली ये केसेस देख रही हूँ। बच्चे जो देखिए, आप सोचिए 3-3 बजे तक बच्चा अगर जगा हुआ है, और सुबह तो उसका स्कूल टाइम 7 o'clock, बस का रिपोर्टिंग टाइम होता है, या इवन स्कूल पहुंचने का भी 7:30 बच्चों को पहुंचना होता है, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी 8-7 के आसपास में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर बच्चा देर रात तक सोता है और मोबाइल के पास में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी नींद पर फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा जो ब्लू लाइट मोबाइल से आपको मिलती है अभी, तो स्क्रीन टाइम, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो टेलीविजन है, और बच्चा अंधेरे में स्पेशली जब उसका यूज करता है, फॉर श्योर उसकी आई साइट पे भी फर्क पड़ता है। ना केवल ये, आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, इसके कारण बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा है। आप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले होती थी वो आप नहीं कर रहे हो, आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए हो, कभी आप छोटे स्क्रीन पे हो, बी एट अ मोबाइल स्क्रीन, और कभी आप टेलीविजन पे हो, या इवन अपनी रील्स बना रहे हो, उसमें भी आप स्क्रीन पे ही बैठे हुए हो। उसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नॉट जस्ट कि आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, बट इवन आपको अदर डिजीज, आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज की शिकायतें आ रही है, हृदय रोग उनके बढ़ते जा रहे हैं, रीजन यही है कि उनका सिटिंग टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी सामाजिक गतिविधियां नियरली लिस्ट पे आ गई हैं। तो अगर हम ये बेस्ट टाइम है, वेकेशन एक बेस्ट टाइम है, मैं पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी, मेंटोर्स को भी, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को। जो भी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पर बच्चे इकट्ठा हो, उनसे कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, विच कैन बी अ लेसन फॉर एवरी फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने आप में रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स करेंगे उनको देख के, बच्चा ऑटोमेटिकली वो पिकअप करता है।
1: एकता जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि मना कैसे करें हम बच्चों को, कि क्या हम एकदम से उनको डांट दे कि नहीं आप डिजिटल डिवाइसेस को नहीं छुएंगे, या थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा टाइम लगेगा जहां पे वो समझ सकेंगे धीरे धीरे, और क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? मतलब अगर हमने अभी मना किया बच्चे को कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं छुएंगे, आप ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती है? क्या वो एज ग्रुप के हिसाब से है या रिप्लेसमेंट्स आसान है बच्चों के लिए?
2: आई थिंक बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप वो समय याद कीजिए जब मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग ग्रो कर थे, आप याद कीजिए कि उस समय पे मोबाइल नहीं थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग अप में कुछ फर्क आया था, क्योंकि ये बच्चा मिलेनियल बच्चा है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जब वो बच्चा बॉर्न होता है, उसको आसपास स्क्रीन्स ही दिखाई दिए हैं, दे आर अ डिजिटल चाइल्ड, लेकिन उनको हमें उसे समझाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। कभी कभी हमें प्यार से बताना होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना होता है, और कभी कभी प्ले वे मेथड यूज करना होता है, लेकिन यू शुड नॉट बी रूड विद देम, ट्राई टू बी लिटिल सॉफ्ट, और करके दीजिए। जब आप खुद करोगे, बट ऑब्वियसली बच्चा करेगा। मुझे याद आता है एक जर्नी, जब मैं दिल्ली से भोपाल ट्रेवल कर रही थी, उससे मेरा बेटा वॉज नियरली 6-7 ईयर्स का रहा होगा, तो मुझे बुक का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मेरे पास मैं अपना एक नॉर्मल रीडिंग कर रही थी उस टाइम, और बेटे को क्योंकि कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने कॉमिक हाथ में लिया हुआ था, आसपास के बच्चे मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मुझे किसी ने पूछा कि मैम ये बेटा बहुत देर से बैठा हुआ, सिर्फ पढ़ ही रहा है वो, तो मैंने बोला वो पढ़ भी रहा है और साथ में उसकी मस्ती भी चल रही है। वो आपने देखा होगा, उसने उसी कॉमिक बुक में कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको गेम्स साथ साथ में आप कर रहे होते हो, तो वो भी आप एक्टिविटीज भी आप साथ में कर रहे हो, उसके हाथ में पेंसिल बराबर चल रही थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती है, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड जिसमें हर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है, लूडो है, इवन आजकल चेस हम खेल सकते हैं, इवन क्रिकेट एज अ फैमिली गेम किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को बोला जाए क्योंकि आप कमेंट्री करो आज, तो आप उसको बड़ा मजा आएगा, उसको एंजॉय करेगा वो चीज, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज हम करवा सकते हैं। बच्चे के साथ आप साइकिलिंग ट्रिप पे जा सकते हो, लेट्स गो साइकिलिंग टुगेदर, तो आज फैमिली साइकिलिंग डे है, या कुछ कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके आज फैमिली टाइम है, तो कॉलोनी के 5-6 फैमिली से मिलकर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, आज हम स्विमिंग पूल में साथ में जा रहे हैं, एंड वी हैव अ लिटिल लिटिल फन टाइम, आज स्विमिंग होगा एंड वी हैव अ लिटिल फन टाइम। Hide and seek can be a great game. धूप ज्यादा है, गर्मी है, हम अंदर डार्क रूम खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, और उनके लेवल पे जाके की जा सकते हैं। कुछ हम जोक्स का राउंड, जैसे हम जोक्स, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कीजिए उनके साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं बच्चों के साथ स्पिना यान करती हूँ। स्पिना यान इज लाइक आई स्टार्ट अ स्टोरी एंड दे हैव टू कंटिन्यू इट। सो शिवानी, आज टुडे वॉज अ वेरी ग्रेट डे, यू नो वॉट हैपेंड, आई मेट अ film star, you know, so what happened after that, Shivani will ask me that, okay. And then we just continue with the storyline in our own manner. Similarly, I'll ask you, Shivani, so aaj morning mein aapke saath kya kya hua, Shivani? So just tell me something about yourself. So it's a spinner yarn where we give a opening line and they continue with their own yarns, and uski koi right or wrong nahi hota, aur bachche ko we can give chocolates and anything, any prizes, small prizes can be given to them.
1: ओके ये शायद वही गेम है जिसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ना नहीं कहते, हम कंटिन्यू कर रहे होते स्टोरी को,
2: बिल्ड अप स्टोरी को कंटिन्यू करते जाते हैं, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। अगर 10 मेंबर्स हैं तो एवरीबॉडी कैन गिव अ टर्न, हम एक दूसरे को टर्न्स दे सकते हैं, वी कैन इवन हैव फायरलेस कुकिंग टुगेदर, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आज, तो लेट अ चाइल्ड मेक अ लेमनेड समथिंग, सैंडविचेस कैन बी मेड, भेल पूरी कैन बी अ ग्रेट आइडिया। मतलब उस दिन बच्चा किचन में, और आप उसको बिल्कुल कुछ ना नहीं बोलने वाले, वो कितना भी मेसी हो जाए, प्लेटफॉर्म को कितना भी गंदा कर दे, बट यू जस्ट एंजॉय कि बच्चा कुछ कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट वेरी मच।
1: आपने एकता जी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स बताए जिसका ध्यान हम रखेंगे, और की जा सकती है सारी रिप्लेसमेंट्स, कुकिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ। हम जब बच्चों को मना करते हैं कि नहीं आप जो है अभी डिजिटल डिटॉक्स में हैं, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, आप किताब पढ़िए। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किताब की ओर, क्योंकि हमारा भी समय ऐसा ही रहा है जहाँ पे हम किताबों के बारे में किताबों को ज्यादा पढ़ा करते थे और किताबों से वाबस्ता होते थे ज्यादातर। तो जब हम बच्चों को बोलते किताब पढ़ने के लिए, ये कितनी सही बात है, कितना मतलब किताब इतनी जरूरी क्यों है?
2: देखिए, किताबों से कनेक्ट करना, मुझे लगता है हर घर का एक अनसेट रूल होना बहुत जरूरी है। हम हर जगह रूल्स लिखना जरूरी नहीं होता, अनसेट रूल हो जाना चाहिए एक जगह पे कि ओके आज एक स्टोरी बुक, मैं तो बोलूंगी स्टोरी बुक भी क्यों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी कहानियां कि ओके आज आपने क्या पढ़ा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिससे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम में अपने ग्रंथों से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी,
2: अपने कल्चर से कनेक्ट करना, क्योंकि आज तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी बात करते हैं भगवद गीता
1: के
2: बारे। तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करें, एंड आई थिंक भगवद गीता अपने आप में एक मैनुअल है, इट्स नोन एज अ लाइफ मैनुअल इन एवरीवन्स लाइफ, रामायण इज अ मैनुअल। सो अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज उनको कनेक्ट करते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लेके आते हैं, एंड एट अ टाइम हम उनको बोलते हैं आज अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते। तो बच्चे, आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, दे विल आस्क यू रीजन। तो आपके पास रीजन पहले होना बहुत जरूरी है अगर आप बच्चे को किसी भी किताब से जोड़ रहे हो। ओके, रस्किन बॉन्ड, सो क्यों रस्किन बॉन्ड? ठीक है, रबिन्द्रनाथ टैगोर, तो क्यों रबिन्द्रनाथ टैगोर? रामायण, तो क्यों रामायण? तो बच्चे को जब हम रीजन देते हैं, ये बच्चा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रीजन मानती है। तो अगर आप रीजन देके चलोगे और सॉफ्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वापस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप खुद मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चों को बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर ले,
1: तू नहीं हो पाएगा,
2: रीडिंग कर ले, तू कॉमिक पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप बी अ रोल मॉडल, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, ओके उस समय पापा घर पे आए, 6 बजे का टाइम है, चाय सर्व हो रही है, बच्चे के लिए आपने दूध सर्व किया है, लेट्स हैव अ रीडिंग टाइम, इट्स अ कार्पेट रीडिंग। आप टेबल पे भी मत बच्चे को बैठे हैं, कार्पेट पर बिठा दीजिए, लेट अ चाइल्ड स्लेप डाउन, रिलैक्स होके कंफर्टेबल चेयर पे हो जाए, बच्चा रीड करे, जो बुक उसको चाहिए वो बुक पढ़े, उसको एक चॉइसेस दे दीजिए। आजकल तो इवन आपकी कार्पेट बुक्स अवेलेबल है, बच्चे को रख लीजिए बुक्स, इवन आजकल वॉल्यूम बुक्स अवेलेबल है, द वॉइस राइट प्रोनाउंसिएशन भी बच्चे को समझ में आएगा। और उस टाइम पे बच्चे को टोकिए मत, अगर बच्चा कुछ गलत भी रीड कर रहा है, डोंट से योर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज रीडिंग फॉर प्लेजर, बच्चा उसकी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने वाला, लेट द चाइल्ड एंजॉय रीडिंग। अगर बच्चा एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसको हर तरह की रीडिंग में मजा आएगा।
1: और यही बात एडल्ट्स के लिए भी लागू है एकदम।
2: बिल्कुल
1: जी हाँ। जहां तक हम इस फास्टिंग की बात करते हैं, मोबाइल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए, मतलब एक दिन, एक सप्ताह, उसके बाद क्या, मतलब कब तक हम उनको बोले, या कि दिन में हम बांध ले कि नहीं इतना समय आप किताबें पढ़ेंगे या आप इंटरनेट पे रहेंगे, मतलब हमारा किस तरीके से हम एक टाइम टेबल सेट करें जिसके जरिए हम बच्चों को बता पाए कि उनके लिए क्या सही है, कैसे डिजिटल डिटॉक्स करना है, ताकि वो लोग भी इस चीज से उबे नहीं, बोर नहीं हो।
2: यहाँ मैं बोलूंगी कि हम उनका टाइम टेबल ना बनाएं, उनसे उनका टाइम टेबल बनवाएं।
1: ओके
2: हम उनको डिक्टेट करने वाले स्टेज में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो लोग काफी लॉन्ग ड्यूरेशन, मैं बोलूंगी कोविड टाइम से उसको यूज कर रहे हैं। सो अब हम उस कंडीशन से बाहर आ चुके हैं कि हम उनको डिक्टेट करें। अब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे है ना। हम उनको ना ऑपोजिट वे हम बात कर सकते हैं कि ओके मैं अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बना रही हूँ, बेटा आपको अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाना है। आई एम प्लानिंग कि मैं 6 से 7 शाम को मोबाइल नहीं देखूंगी, आपकी सबसे कौन सा टाइम आपके लिए ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर, 1 घंटा हम मोबाइल नहीं देखेंगे या 1 घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। इट कैन स्टार्ट विद 1 आवर और ग्रेजुअली हम उसको लंबा टाइम लेके जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, फिर मम्मा वो पूछेगा आपसे, सो आप वहां पे चॉइसेस दे सकते हो, उससे बुलवाइए। ओके, उस टाइम पे आप फुटबॉल खेलना पसंद करोगे क्या, या उस टाइम क्या हम फैमिली डिस्कशन करें क्या, या उस टाइम आप स्विमिंग पूल जाओगे क्या बेटा। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में, तो व्हाई नॉट आप डांसिंग भी जा सकते हो। सो लेट द चाइल्ड डिसाइड नाउ। जब हम बच्चे को मौका देते हैं तो वो आपकी बात सुनता है
1: जी।
2: अगर आप उसको डिक्टेट करते हो तो बच्चे को लगता है कि वो थोड़े समय के लिए है और वो उसको भूल जाएगा। द आइडिया इज लेट द चाइल्ड डिसाइड। तो आप उसको बोल सकते हो कि ओके जो आपने प्लान किया था वो वर्क कर रहा है क्या। 1 हफ्ते बाद हम एक क्वेरी कर सकते हैं, बेटा आप मुझे चेक करना मेरा, अगर मैं 6 से 7 मैं कुछ और मोबाइल लेके बैठ रही हूँ तो प्लीज मुझे बताना कि मैंने मोबाइल उठाया था उस टाइम पे। सो जस्ट चेक, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू, लेट्स मॉनिटर ईच अदर।
1: ओके ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लान है जहाँ पे हम बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि बताइए आपका प्लान क्या है, उसी मुताबिक हम भी आपसे बात करेंगे। और देखा गया है कि आजकल जैसे सामाजिक संबंध है, सोशलाइजिंग की अगर बात करें, तो लोगों को लगता है बच्चों को स्पेशली कि हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही सामाजिक संबंध है। तो अगर हम डिजिटल डिटॉक्स भी करते तो उससे हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकते हैं?
2: इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रायोरिटी अभी क्या लगता है कि उनको मोबाइल देखना, उनका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है, सो लेट्स मेक इट एज अ फैमिली डिसीजन कि इस टाइम पे हम चार फैमिलीज आपस में मिल रहे हैं तो उस समय पे हम लोग मोबाइल कैरी नहीं करेंगे। उस टाइम पे हम कुछ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, उस टाइम पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, और पॉइंट आउट मत कीजिए बच्चा, बच्चा क्यों घबराता है सामाजिक गतिविधि से, कि उसको लगता है उससे पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स कैसे आए बेटा।
1: राइट,
2: इस तरह की चीजें भी हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तो बच्चा नेगेटिव चीजों से भागना है, उसको क्यों अच्छा लगता है फेसबुक फ्रेंड्स, क्यों अच्छे लगते हैं डिजिटल फ्रेंड्स, कि वहां पे उससे क्वेश्चनिंग नहीं होती है, वो जो कर रहा होता है उसको लाइक्स मिलते हैं, तो बेसिकली वो लाइक्स का भूखा है, उसको लाइक्स दीजिए। आज यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, लाइक योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल, सो उसको आप अगर लाइक्स देते रहोगे, लाइव लाइक्स मिलेंगे, तो वो क्यों डिजिटल की तरफ जाएगा?
1: सही बात।
2: सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली में तारीफ कीजिए, किसी और का इंतजार मत कीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप एक दूसरे की तारीफ कीजिए, और बच्चा वो सीखेगा घर में ही सीखेगा कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना इम्पोर्टेंट है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हम क्यों देखते हैं हमको कितने लाइक्स मिले, क्योंकि हमें घर में तारीफ नहीं मिल रही।
1: सही बात।
2: ये मैं अडल्ट से भी बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ जब मेरे पास एज अ मेरिटल काउंसलिंग आते हैं, तो मैं बोलती हूँ एक दूसरे की तारीफ, आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था लास्ट? हैव यू गिवन ईच अदर अ हग आफ्टर लॉन्ग टाइम? सो जस्ट ट्राई टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। बच्चा जो देखता है वो एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करता है, सो लेट्स हैव अ लाइकिंग फॉर ईच अदर। तो बच्चा ऑटोमेटिकली जब फैमिली में एक पॉजिटिव ऑरा देखेगा, थिंग्स विल गो ऑन।
1: ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही एकता सरीन जी, कि कितना जरूरी है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे की तारीफ करना। बच्चे भी उससे सीखते, उससे मनोबल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और कंपैशन भी पैदा होता है, एक एम्पैथी पैदा होती है, जिससे बच्चों में सुधार आ जाता है। सो अब हमने किताबों की भी बातें की, मुझे आप बताइए आजकल जैसे कि ऑडियो बुक्स की आपने बात की, जो कि अच्छी बात है सुनना, लेकिन अगर बच्चे चाहते कि नहीं हम जो है मोबाइल से ही पीडीएफ पे या किताबें डाउनलोड करके पढ़ें, तो ये ठीक है कि उससे भी कुछ असर पड़ता है आंखों पे अगर मोबाइल पे ही किताबें पढ़ते रहे बच्चे?
2: देखिए, मोबाइल पे किताबें पढ़ने से बेटर है पीडीएफ वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि मोबाइल पे अभी किंडल पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। इवन मैं आपसे शेयर कर लूंगी कुछ कुछ इस तरह के साइट्स भी, जो हम आराम से बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि फिजिकल बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्टेड रहते हो किसी फिजिकल बुक से, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली, और हम बिल्कुल बच्चे को बांधे नहीं कि बच्चा यही पढ़ना है। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी स्पोर्ट्स पे बुक्स है। अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट इंसाइक्लोपीडियाज पे है, बच्चा उसको कनेक्ट करे अपने आप को। अगर उसको साइंस पे इंटरेस्ट है, बच्चा साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है, तो बच्चा फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। तो उसकी बेसिकली स्किल्स को हमें बढ़ाना है कि वो स्किल्स पे अपने आप को फोकस करे, कि हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए पढ़ने के बाद, उसकी विकैबुलरी बहुत एनरिच हो जाए। तो अगर वो बढ़ती है, आप उसको ये भी साथ में बोलिए कि ओके, आपने अगर ये एक पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी है, आपने ये तीन

0: लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, क्या उनके ध्यान केंद्रित करने में भी सुधार होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम देख रहा है तो उसका नोटिफिकेशंस थ्रू आउट वो देखता रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली उसका बढ़ेगा क्योंकि वो उस चीज़ से हटके वो कुछ और नया कर रहा है और उसका बराबर ध्यान से स्क्रीन में नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है, उससे डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है.
0: सो
1: बच्चे को अगर हम उस एक घंटे के लिए सिंपली मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, ये ठीक है आप बेटा आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाओ, या आप सिर्फ एक जगह पे सिर्फ सिटिंग दे दो, क्योंकि बच्चों को आजकल एक जगह पे बैठना भी अपने आप में एक टास्क होता है. तो ठीक है आज हम एक जगह पे बैठते हैं, नॉट मूव फ्रॉम देयर, सो लेट्स सिट. यहां हम एक उनको फोकस करते हैं कि कौन आंखें पहले ब्लिंक नहीं करेगा. उससे भी वो गेम भी गेम का गेम हो जाता है कि ठीक है हम लोग आपस में गेम खेलते हैं जिसमें आंखें कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा. दैट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन. सो उसमें भी हम ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को. तो डे बाय डे अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे और वो सब करेंगे, या एक पॉइंट लगा लीजिए आप वॉल पे और बच्चा उसको देखेगा, तो कैसे हम देख सकते हैं, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो. पेंसिल एक सामने रखिए और पेंसिल को बच्चा मूव करे टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका आई मूवमेंट बढ़ेगा, उसमें उसका आई से कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेंटल लेवल, पीस दोनों में फर्क आएगा.
0: ओके, पीस की जहाँ आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा तनाव आ जाता है इस वजह से कि ज्यादा चीजें YouTube पे देख रहे हैं या बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ गया है, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कंटेंट को हम कैसे समाएं, क्या करें इस कंटेंट का. तो जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, क्या इसमें टेलीविजन भी आता है? कि वैसे तो आजकल बच्चे टेलीविजन पे रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं देखते, यूट्यूब पे ही जो उनका कंटेंट होता है वही देखते हैं, एड्स को स्किप करके करते रहते हैं, प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें टेलीविजन का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कार्टून नेटवर्क्स देखना या ये चीजों पे भी हमें थोड़ा बहुत जो है लगाम लगानी पड़ेगी?
1: बिल्कुल, देखिए डिजिटल डिटॉक्स में जब बात आती है तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों वर्क करते हैं. लेकिन बिग स्क्रीन जैसे कि आपने खुद बताया कि बिग स्क्रीन बच्चे को लिमिटेड टाइम के लिए ही चांस मिलता है, मोबाइल छोटा स्क्रीन उसके पास हमेशा ही रहता है
0: जी.
1: लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन तो स्क्रीन ही है.
0: हाँ.
1: अगर आप लाइट ऑफ करके बराबर टीवी भी देख रहे हो, आजकल तो बच्चे इवन कनेक्ट भी कर लेते हैं, कनेक्ट करके यूट्यूब भी आप टेलीविजन पे देख लेते हो, तो इवन ऑल दोस थिंग्स मैटर. स्क्रीन तो स्क्रीन ही है ना मैम, तो डेफिनेटली उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल इलनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लैक करता है वहां पर. तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स. अगर हमने प्लान किया है तो उस समय पे हम टेलीविजन भी नहीं देखेंगे.
0: ओके ओके, तो आज हमने बातें की इस बारे में एकता सरीन जी से, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज हमें हासिल हुई और कितना ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी और जो डिजिटल मीडिया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक फिजिकल एक्टिविटी से और बच्चों का और मन लगा रहेगा इन कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो आज़ाद हिंद पर आई. तो ये है देश का चैनल देश के लिए, टेक गुरु प्रोग्राम हम आपके लिए लेते आएंगे जिसमें हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एकता सरीन जी.
1: थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू शिवानी जी.
0: थैंक यू सो मच. नमस्कार.
1: नमस्कार.

आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: और अब समय है कार्यक्रम भारत विभूति का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भारत विभूति भिखारी ठाकुर की। श्रोताओं, इस धरती पर कुछ लोग जन्म नहीं लेते, बल्कि मिट्टी उन्हें अपने हाथों से गूंथ कर रचती है। वे लोग हवा में उड़ते नहीं, पेड़ की जड़ की तरह धरती में धंस जाते हैं, गहराई तक, एकदम भीतर तक, जहां से फूटता है कला का जल, स्वच्छ, निर्मल, जीवन देने वाला।
2: और यही वो जल है जिसे पीकर सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं, जिससे गीत जन्म लेते हैं, नाटक खिलते हैं और मानवता की धड़कन लिखी जाती है। कला के ऐसे स्रोत आसानी से नहीं जन्मते। सदियों के मौन, पीढ़ियों के दुख और जीवन की अनगिनत ठोकरों से एक कलाकार बनता है।
1: और ऐसा ही एक कलाकार बिहार की उस हरी भरी, गीतों से भरी, माटी भरे आंचल वाली धरती से जन्मा था, जहां हवा में चहकते चिड़ियों का सुर लोक गीत बन जाता है, जहां नदियों का बहाव कहानी का छंद बन जाता है, जहां खेतों की मिट्टी अपनी खुशबू में भी कविता रचती है। उसी माटी ने रचा, उसी माटी ने संवारा, उसी माटी ने दुनिया को सौंपा एक अनमोल रत्न, जिसे आज पूरी दुनिया भोजपुरी का शेक्सपियर कहती है। वो थे भिखारी ठाकुर।
2: भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा में एक साधारण परिवार में हुआ। ये वही गांव था जो पहले शाहबाद जिले, जो कि अब भोजपुर है, उसका हिस्सा माना जाता है। पर 1926 में गंगा की धारा बदलने से ये क्षेत्र सारण जिले में शामिल हो गया। उनके ननिहाल का बसेरा आरा में था, जहां से उन्हें बचपन में स्नेह और संस्कार दोनों ही मिले। वो दलसिंगार ठाकुर के पुत्र थे। माता शिवकली देवी सरल, कर्मठ और गृहस्थी संभालने वाली स्त्री थी। भिखारी दो भाइयों में बड़े थे। छोटे भाई का नाम बहोर ठाकुर था। घर में गरीबी थी, पर प्यार और लोक संस्कृति की गर्माहट कभी कम न हुई।
1: पर प्रकृति ने उनका मन किसी और ही ताल पर रखा था। वे औपचारिक शिक्षा से वंचित होकर भी उनके लोक जीवन में खेत खलिहान की पगडंडियां नापना, नदी की हवा में गांव के गीत सुनना, सब कुछ गहराई से दर्ज था। गरीब परिवार जहां पर रोटी मुद्दा था, कपड़े फट जाते थे और चिंताएं कभी नहीं रुकती थी। बचपन में वो मिट्टी से छोटी गुड़िया बनाते, उनसे बातें करते, उन्हें रुलाते, हंसाते, सुलह करवाते, जैसे कोई अकेला बच्चा नहीं, एक पूरा नाटक मंडल उनकी मुट्ठियों में खेल रहा हो।
2: भिखारी तब छोटे थे, बस वही उम्र जब बच्चे खेलते तो हैं, पर सपनों में उनसे भी ज्यादा दौड़ते हैं। गांव की कच्ची गलियों में नंगे पैर भागता हुआ भिखारी हर चीज में जादू ढूंढ लेता था। कभी वो बांसुरी की किसी अनजानी तान में खो जाता, कभी मंदिर के भजन के शब्दों के भीतर छिपी किसी आग को महसूस करता। चूल्हे की आंच में उन्हें कहानियों की लपट दिखाई देती और खेतों की सरसराहट में नाटक के संवाद सुनाई देते।
1: बचपन से ही उसे मोह था ढोलक की आवाज का, मंच के रंगों का, जहां कोई आदमी किसी और का रूप धरकर जीवन से भी बड़ा बन जाता था। बचपन बीत गया जैसे कोई नदी चुपचाप बहकर नए मोड़ पर पहुंच जाए।
2: भिखारी ठाकुर के पिता दलसिंगार ठाकुर सीधे साधे, मेहनत से जीने वाले व्यक्तित्व थे। उनकी हथेलियों पर खेतों की मिट्टी और जीवन की थकान दोनों ही जमी रहती। उनकी एक ही चाहत थी, भिखारी वही काम करे जो पीढ़ियों से उनका घर संभालता आया है। लोगों के बाल बनाना, शादी ब्याह में सेवाएं देना, उसी से रोजी रोटी कमाना। भिखारी ठाकुर अपने पुश्तैनी काम का सम्मान खूब किया करते, लेकिन उनके भी सपने कुछ और थे। पिता भिखारी जी को समझाते हुए कहते,
3: बेटा, कविता कहानी गाना बजाना मन बहलावे खातिर ठीक बा, बाकी जीवन ऐसे ना चलेला। अगर हवा के रंग धरे में लागब तो जिंदगी के धूप में जुड़ी जाई। भिखारी ही दुनिया सपना से ना चल, हुनर धर हाथ में तबे घर गृहस्थी चल पाई।
1: भिखारी सर झुका के सब सुनते रहे। यौवन में पहुंचते पहुंचते वो अपने पारिवारिक पेशे में उतर आए। किशोर उम्र में ही उनकी शादी मतुना से हुई,
3: इस विवाह ने भिखारी ठाकुर के जीवन को नया आयाम दिया। जहां घर की जिम्मेदारी और प्यार का सहारा मिला, मातुना के साथ जीवन की शुरुआत भिखारी ठाकुर के लिए एक नई राह बन गई, जहां प्रेम और परिवार की मजबूती उनके भीतर की कविता और लोक संगीत को धीरे धीरे पंख देने लगी।
2: 1911 में उनके पुत्र शिलानाथ ठाकुर का जन्म हुआ। घर में नई उम्मीद का उजाला फैल गया, लेकिन खुशियां कहां ही लंबी चलती हैं और समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन गांव की मिट्टी उस साल अजीब सी लग रही थी, सूखी फटी हुई, जैसे उसके भीतर रोती हुई नदियों की लकीरें छिपी हों। हवा में धूल थी, खेतों में सन्नाटा और आसमान में बादलों के नाम पर बस उम्मीद की राख उड़ रही थी। भिखारी ठाकुर दल सिंगार और शिवकली का बेटा अपने घर की हालत को धीरे धीरे बिखरते हुए देख रहे थे। रसोई में अनाज का आखिरी दाना भी माँ की मुट्ठी से फिसल चुका था। चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था।
3: बचपन से सरल, विनम्र, दूसरों के दुख को अपना समझ लेने वाला वो युवक जब अपनी ही माँ की थकी आंखों में मजबूरी का कांपता हुआ साया देखता तो उसके भीतर का सारा साहस डगमगा उठता। फिर आया 1914 का काल, जिसने जैसे पूरे गांव की खुशियों को निगल लिया। कहीं घास नहीं, कहीं दाने नहीं, लोग अपने ही आंगनों में अजनबी बनते जा रहे थे। इन्हीं दिनों भिखारी ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, वो आत्मा को भी छोटा कर देती है।
2: और उसी रात जब घर में भूख की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो नहीं रुक सकता। माँ के पैरों को छूकर बोला,
3: तुहार आशीर्वाद चाहिए माई, एक दिन हमें सबके ठीक कर देव। और इस तरह भिखारी ठाकुर अपने फटे झोले में दो जोड़ी कपड़े, कुछ सपने और बहुत सारी मजबूरियां लेकर परदेश की राह पर निकल पड़े।
2: वो चल पड़े कुतुबपुर तियारा गांव से छपरा, छपरा से हाजीपुर और फिर ट्रेन पकड़कर कलकत्ता। ट्रेन में पहली बार इतने लोग देखे, इतना बड़ा शहर देखा, इतना शोर, पर उनके दिल में केवल एक ही सपना था, कमाई करूंगा, घर भेजूंगा और परिवार का जीवन बदल दूंगा।
3: श्रोताओं, उस समय कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर था। गांव के शांत माहौल से आया एक साधारण युवक भिखारी ठाकुर जब इस शहर पहुंचा तो शहर ने उसका खुले हाथों से स्वागत नहीं किया। गांव से निकले भिखारी जी पहली बार इतने बड़े शहर में आए थे, जहां लोग भागे जा रहे थे, कहीं ठहराव नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं। स्टेशन की भीड़, अजनबी चेहरे, ऊंची ऊंची इमारतें, अलग तरह की बोलचाल, गंगा से अलग हुगली का विशाल घाट, ये सब देखकर वो हैरान हो गए और मन ही मन में कहा, हम इस शहर में रह पाए का।
2: कलकत्ता पहुंचते ही सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। पैसा कम था, रिश्तेदार कोई था नहीं, कई दिनों तक घाट किनारे रात गुजारना, मजदूरों के साथ किसी कोने में सो जाना, फुटपाथ पर जगह ढूंढना, ये सब उनके हिस्से आया। कलकत्ता में रोजगार तो था, लेकिन गांव से आए, पढ़े लिखे नहीं थे, पहचान भी नहीं थी, ऐसे इंसान को तुरंत कौन काम देता है भला। भिखारी ठाकुर जैसे साधारण युवक के लिए जगह बनाना एक बड़ी चुनौती थी।
3: उनकी दुनिया बीच बीच में उकड़ती दीवारें थी, टूटी चौखटें थी और लोगों के दुख भरे चेहरे थे, लेकिन इसी दुनिया से वे सीख रहे थे कि मनुष्य का असली विश्वविद्यालय मिट्टी होती है और मनुष्य का असली शिक्षक दर्द होता है।
2: ऐसे में उन्होंने सबसे पहले वही काम पकड़ा जिसे वो सबसे अच्छी तरीके से जानते थे, अपना पुश्तैनी काम, बाल काटने का काम, वही कोलकाता में शुरू किया। कहते हैं कि हावड़ा स्टेशन के आसपास और मजदूर बस्तियों में वो छोटे से बक्से में उस्तरा, कैंची और कंघी रखकर बैठ जाया करते। सुबह से शाम तक लोगों के बाल बनाते, हजामत करते और कुछ पैसों में दिन काटते। उनके लिए ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाने का संघर्ष था।
3: श्रोताओं, कलकत्ता में वो अक्सर रामलीला देखने जाते, वो मंच जहां देवत्व और मानवता एक साथ चलती है, जहां दुख भी है, धर्म भी और धूल में छिपे आदर्श भी। इन्हीं रंगमंचों से उन्होंने अभिनय का मंत्र सीखा और शब्दों को जीवित रूप में ढलते देखा। यहीं से उनके भीतर नाटक लिखने और मंच पर जीवन को उतारने की अंतर यात्रा शुरू हुई। इसी शहर में उन्होंने पहली बार सिनेमा का जादू भी देखा। चलती तस्वीरों में कहानियों का उगना उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगा।
2: फिर उनकी मुलाकात हुई बाबूलाल से, जो बिहार का रहने वाला था और एक नाच हॉल चलाता था। बाबूलाल से मिले अनुभवों ने उनकी कला को नए आयाम दिए। मानो लोक धुनों में बसी सादगी और शहर के रंगों में छिपी चपलता एक साथ उनके भीतर संगीत रच रही हो। आखिरकार इन सब अनुभवों को अपनी झोली में समेटे वो वापस अपने गांव लौट आए। गांव लौटना उनके लिए घर की देहरी पर लौटना भर नहीं था, ये तो एक कलाकार का अपने स्रोत, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के पास फिर से लौट आना था।
1: और जब वो गांव पहुंचे तो लोगों में हलचल फैल गई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने शक किया। चौराहे पर बैठे एक बूढ़े ने तंज कसा, हे भिखारी बिटवा नाटक करी, यही काम से पेट भरी।
2: दूसरा व्यक्ति बोला,
4: गांव में नाटक तमाशा के का जरूरत बा, लोग हंसी उड़ाई।
2: भिखारी चुपचाप मुस्कुराए। उन्हें मालूम था कि रास्ता आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों को तैयार करना। कोई कहता,
4: हमरा घरवाली मानत नहीं के।
2: कोई कहता,
4: नाटक नौटंकी में बदनामी होई।
2: धीरे धीरे कुछ युवा तैयार हुए, लेकिन अभ्यास के लिए जगह ही नहीं थी। भिखारी ठाकुर ने अपने घर के टूटे आंगन में लालटेन जलाकर रिहर्सल करना शुरू किया। लोग दूर से झांकते, हंसते और फप्तियां कसते। एक शाम किसी ने तेज आवाज में कहा,
4: भिखारी दा, ई नाटक से का होई, खेत खलिहान छोड़ी के नटुआ बनब।
2: भिखारी शांत स्वर में बोले,
4: कला खेला ना जनाब, मनुज के जियल जिंदगी के सांच हा। और फिर कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने पहला नाटक तैयार किया। उनका छोटा सामाजिक नाटक जो गांव के झगड़ों और व्यसनों पर आधारित था। गांव के मेले में मंच लगाया गया, लोग बड़ी संख्या में देखने आए। लेकिन जैसे ही नाटक शुरू हुआ समस्याएं आनी शुरू हो गईं। कलाकार मंच पर चढ़ते ही संवाद भूल गए, ढोलक की चमड़ी फट गई, लालटेन हवा से बुझ गई। दो कलाकार आपस में झगड़ पड़े और भीड़ हंसने लगी।
2: गांव के कुछ शरारती लड़कों ने चिल्लाया,
4: एगो नटुआ मंडली, यहाँ इसे नाटक हो खेला।
2: भिखारी मंच पर खड़े थे, भीतर तक टूट चुके। नाटक अधूरा ही बंद करना पड़ा। उस रात मंडली के कई लोग डरकर भाग गए। एक ने जाते जाते कहा,
4: भिखारी दा, अब हमसे ये सब न हुई, कौन करेगा नाटक। लोग कहते नाटक करना नीच काम है। इसलिए शुरुआत में भिखारी ठाकुर के नाटकों में भिखारी खुद सबको समझाते, मनाते, हिम्मत देते। ये कला की सेवा है, समाज की सेवा। अगले दिन भिखारी ठाकुर ने टूटे लालटेन की बत्ती ठीक की, ढोलक के फटे हिस्से पर नया चमड़ा चढ़ाया और बचे हुए कलाकारों से कहा, हार मान लेब तो हमनी से बड़का कायर केहू न होई, फिर से शुरू करब। भिखारी ठाकुर हर दिन हर रात बस यही सोचते, हमरा गांव के लोगन के दुख पीड़ा बेचैनी, ये सबके आवाज देहल जरूरी बा।
2: एक दिन भिखारी ठाकुर गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बाप अपनी नाबालिग बेटी का ब्याह पैसे के लिए कहीं दूर तय कर रहा था। लड़की डरी हुई थी, माँ रो रही थी और गांव चुप, बिल्कुल चुप। ये दृश्य भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गया। रात को वो नींद नहीं ले पाए। यही कच्ची पीड़ा धीरे धीरे बेटी बेचवा के रूप में आकार लेने लगी। जब मंडी ने बेटी बेचवा खेला तो वही लोग जो कल तक हंस रहे थे आज भीड़ में चुपचाप खड़े रो रहे थे। गांव की औरतें अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी, पुरुष सिर झुकाए खामोश खड़े थे। किसी ने भिखारी ठाकुर से आके कहा,
4: भिखारी तोरा नाटक में हमनी की जिंदगी बोलत बा।
2: और उस रात भिखारी ठाकुर समझ गए कि हंसी उड़ाने वालों से बड़ी ताकत दर्द को आवाज देने वाली कला के पास होती है। जो लोग कुछ दिन पहले उनकी मंडली को नटुआ मंडली कहकर हंस रहे थे अब सम्मान से बोलते हैं,
4: हे भिखारी जी, आप ता समाज के आंखी खोल देलन।
2: गांव में जब भी मंडली रिहर्सल करती लोग दूर से आकर चुपचाप देखते। रात के अभ्यास में अब कोई ताना नहीं मारता, बल्कि कोई पानी दे जाता, कोई लालटेन के लिए तेल। भिखारी ठाकुर की मंडली अब गाँव की इज्जत बन गयी।
1: भिखारी जी का मन और भी मजबूत हो गया। अब उन्हें लगा कि उनका रास्ता सही है। बेटी बेचवा की सफलता ने भिखारी को नई ऊर्जा दी। अब वो सोचने लगे कि गांव में सबसे बड़ा दर्द क्या है, और उन्हें जवाब मिला, परदेसिया का दुख। वो रोज देखते थे युवक रोजी रोटी के लिए कलकत्ता जाते, पीछे रह जाती उनकी पत्नियां, मायके में रोती हुई बहुएं,
4: खाली चौखटें और सूने आंगन। एक दिन भिखारी ने एक औरत को रोते सुना,
5: हमर घरेला परदेश चली गई, हम अकेली पड़ गई नी।
4: यह आवाज उनके दिल में उतर गई। बिचोहों का दर्द, परदेश की मजबूरी, गृहस्थी की टूटन और प्रेम की पुकार, इसी से विदेशिया का जन्म हुआ,
2: जो 1917 में उन्होंने अपनी 30 वर्ष की उम्र में लिखा। यह नाटक सिर्फ कहानी नहीं, गांव-गांव में बजने वाली वेदना की प्रतिध्वनि था। जब पहली बार यह नाटक खेला गया, लोगों की आंखें नम हो गईं। पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, औरतें रो पड़ी और बुजुर्ग बोले,
6: ये नाटक था हमनी के रोज की जिंदगी हा।
2: विदेशिया ने भिखारी ठाकुर की पहचान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब उनकी मंडली की चर्चा पास पड़ोस के गांव तक फैलने लगी।
4: विदेशिया के बाद उन्होंने अपनी मंडली को नए रंग, नई कथाएं और नई जिम्मेदारियां दी। रोज रात लालटेन की रोशनी में बैठकर वे कलाकारों को समझाते। नए कलाकार जुड़े, नए ढोलकी आए और मंडली धीरे धीरे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोक नाट्य मंडलियों में गिनी जाने लगी। 1938 से 1962 के बीच उनकी रचनाओं का जैसे स्वर्णकाल रहा। इन 24 वर्षों में भिखारी ठाकुर ने 3 दर्जन से अधिक पुस्तकों, नाटकों और गीतों की रचना की। उनके मन में बस एक ही धुन थी, समाज का दर्द, प्रेम, बिछोह, संघर्ष और व्यंग्य, सबको मंच की रोशनी में उतार देना। यही भीतर की ज्वाला नागपंचमी, कवन संकट, राधे श्याम बहार, आमोर सजनवा, कलयुग प्रेम, विरह लीला, घरवारी बाहर वाली, भाई विरोध और बुढ़वा बाबू जैसे अनेक नाटकों के रूप में फूटती गई।
2: बचपन में नियमित शिक्षा नहीं मिली थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर ठीक ढंग से लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए। लेकिन उनकी कला में एक ऐसी आग थी जो शिक्षा की कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। भिखारी ठाकुर मौखिक परंपरा के उस्ताद थे। वो कहानी और गीत संवाद पहले अपने मन में बनाते, फिर उन्हें बोल बोल कर याद करते। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। कहा जाता है कि वो एक एक गीत, पूरा का पूरा नाटक कई कई घंटे बिना कागज के सुना देते थे। जब वो अपने शब्दों को अंतिम रूप दे देते, तब गांव के पढ़े लिखे लोगों से कहते,
4: बाबू ये सब कागज पर उतार दा।
2: और इस तरह अपने नाटक, गीत और बोलचाल की पंक्तियां दूसरों से लिखवाते रहे। इसके जहां फायदे थे, वहां नुकसान भी बहुत थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि कई प्रकाशक और व्यापारी उनके नाम पर नकली पुस्तकें छापकर बेचने लगे। ऐसी रचनाएं भी जिनका उन्होंने नाम तक नहीं सुना था। इससे उन्हें 2 बड़ी हानियां हो रही थी। उनकी सच्ची रचनाएं गुम होती जा रही थी और उनके नाम से घटिया और गलत सामग्री फैलने लगी थी। वो लिखने पर दूसरों पर आश्रित भी होने लगे थे। यदि लिखने वाला गलती करता तो गलती पुस्तक में भी रह जाती। भिखारी ठाकुर अपने शब्दों पर पूर्ण अधिकार नहीं रख पाते और इन सब बातों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।
4: और इन्हीं कारणों से उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। उन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब लोग हार मान लेते हैं, उन्होंने तय किया, हमके अब अपना लेखन पर पकड़ बनावे के बाद। धीरे धीरे अक्षर पहचानना, शब्द पढ़ना और थोड़ा लिखना उन्होंने सीख लिया। वे इतना जरूर करने लगे कि कोई भी पांडुलिपि या किताब बिना देखे, बिना जांचे प्रकाशित ना हो।
2: इसीलिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार करवाए, भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान। ये उनकी सभी असली रचनाओं की प्रामाणिक सूची है। सबसे पहले भिखारी ठाकुर पुस्तिका सूची, ये सूची उन्होंने इसीलिए बनवाई ताकि नकली पुस्तकें, झूठे दावे और गलत प्रकाशनों से उनकी कला को बचाया जा सके। ये उनकी रचनाओं का एक सत्यापित अभिलेख बन गया।
4: और दूसरा, भिखारी शंख शमदान, ये उनके जीवन, उनकी कला और उन पर लगे झूठे आरोपों का जवाब है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई बताई, अफवाहें खारिज की, अपनी कला की दिशा समझाई और बताया कि वो क्यों और क्या लिखते हैं। कह सकते हैं कि ये उनका आत्मघोष, उनका आत्मपक्ष और उनकी सच्चाई का दस्तावेज है। भिखारी ठाकुर ने लिखना पढ़ना इसलिए सीखा ताकि भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए जा सकें, जो आज भी उनके साहित्यिक जीवन का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है।
2: धीरे धीरे उनकी कला का प्रभाव आरा से बलिया तक, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक और जौनपुर से झरिया तक और फिर बहुत दूर असम से डिब्रूगढ़ तक पहुंच गया। जहां भी उनकी मंडली मंच सजाती, वहां एक नया सामाजिक प्रभात उगता। लोग हंसते, रोते और स्वयं को पहचानते।
4: श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे, पुराने समय में गांव में औरतों का मंच पर आना समाज स्वीकार नहीं करता था, इसलिए नाटक, नौटंकी, बिरहा सब में पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका निभाते थे। कहानी, लोकगीत और नृत्य बचाने का बस यही तरीका था।
2: भिखारी ठाकुर की मंडली में भी स्त्रियां मंच पर नहीं आती थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर खुद कई बार स्त्री का अभिनय करते, उनके साथी भी किया करते। यही शैली आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। इसमें पुरुष कलाकार औरत का रूप धरकर स्त्री भूमिकाएं निभाते हैं। नाच, गाना, अभिनय सब पुरुष ही किया करते।
4: श्रोताओं, उत्तर भारत, खासकर बिहार, पूर्वी यूपी और भोजपुरी अंचल में सदियों से ऐसे प्रदर्शन होते आए थे जहां पुरुष स्त्री रूप में नाचते थे। भिखारी ठाकुर ने इस परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया, इसे सामाजिक मुद्दों से जोड़ा और कथा में भावनात्मक गहराई जोड़कर इसे लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने अपने नाटकों विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर में स्त्री किरदार बहुत गहरे और संवेदनशील बनाए। इन्हें निभाने के लिए लौंडा नाच कलाकार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए।
2: उनका जीवन उस नदी की भांति था जो पहाड़ों से निकलकर शहरों और गांवों के बीच बहती है और बहते बहते मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। भिखारी ठाकुर ने सिर्फ नाटक नहीं रचे, उन्होंने समाज की आंखें भी खोल दी। उनकी आवाज आज भी हवा में तैरती है और उनकी कला समय की धूल पर अमिट अक्षरों की तरह अंकित है। भिखारी ठाकुर अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक परंपरा, एक लोक ध्वनि, एक कला संसार बन चुके थे। लोग कहते,
6: जैसे धूप बिना छांव ना, भिखारी बिना मंच ना।
2: उनकी कला ने इतना प्रभाव डाला कि उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगा।
4: भिखारी ठाकुर की मंडली सिर्फ कलाकारों का समूह नहीं थी, वो एक परिवार थी, एक परंपरा थी और एक जीवित नदी थी जिसमें हर सुर अपनी कहानी लेकर बहता था। इस नदी के सबसे चमकदार मोती थे रामचंद्रमा जी, जिनके कदमों की थिरकन में स्त्री पात्रों की पीड़ा और कोमलता दोनों समाई थी। मंच पर महिलाओं का आना तब संभव नहीं था और यही वजह थी कि मांझी जैसे कलाकारों ने नारी रूप धारण कर उस रिक्ति को भरा, जैसे कोई दीपक अंधेरे की जगह ले लेता है। उनके साथ थे महेंद्र, जिनकी गायकी मंच को जीवित कर देती थी, राम, लच्छन और जूठन, जिनकी हंसी से भारी कथा हल्की हो जाती थी।
2: और संगीत की नींव संभाले थे घिनगांव की ढोलक, तफजुल की ताल, अलीजान की सारंगी और जगदेव का हारमोनियम, जो भिखारी ठाकुर के प्रत्येक संवाद को सांस देने का काम करते। ये मंडली उस दौर का जीवंत प्रमाण थी कि कला जाति, धर्म या रूप नहीं देखती, बस मन की सच्चाई और प्रस्तुति की निष्ठा को पहचानती है। सन 2021 में भारत सरकार ने रामचंद्र मांझी को पद्मश्री देकर इस परंपरा को सम्मान दिया, ये बताते हुए कि जो कला कभी उपहास झेलती थी अब देश की शान बन चुकी है।
4: और यादगार तो 1963 का भूषण भी है, जब भोजपुरी फिल्म विदेशी आई, जिसमें भिखारी ठाकुर ने अपनी ही कविता डगरिया जोहतना अपनी आवाज में गई। भिखारी ठाकुर जी का नाम भले ही भिखारी था, पर लोक भावना को उन्होंने इतनी समृद्धि दी कि कोई युग उसकी गिनती नहीं कर सकता। वे एक कलाकार नहीं, पूरी भोजपुरी सभ्यता की धड़कन थे। उनके नाटक, उनके गीत और उनकी बोली आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सुवास। उनकी देह भले मिट्टी में समा गई, पर उनकी कला वो आज भी गांव की हर चौपाल में, हर मेले की हलचल में और हर गायक की सांस में बसी हुई है।
2: दिन ढलने से पहले आसमान का रंग सबसे उज्जवल होता है और शायद कलाकार का जीवन भी ऐसा ही होता है, जिसमें सूरज ढलने लगता है और उसकी रोशनी उतनी ही दूर तक फैलती है। भिखारी ठाकुर के जीवन का अंतिम पड़ाव भी उसी सुनहरे उजाले जैसा था। उनकी आवाज में अब पहले वाली ताकत नहीं थी, पर उनकी कला अब भी नदी की तरह बह रही थी, एक ऐसी नदी जो सूखने से पहले सबसे ज्यादा गाती है।
4: 10 जुलाई 1971 की सुबह जब भिखारी ठाकुर ने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा इलाका थमसा गया। सचमुच ऐसे लगा जैसे गीत की तान टूट गई हो और सांझ बिना रंग की हो गई हो। उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं, मानो उनकी कला अब नदी से निकलकर समुद्र की अनंत लहरों में घुल रही हो। गांव देहात की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, जे माटी से उपजल वही माटी में समाइल।
2: जीवन में उन्हें संघर्ष ज्यादा मिला पर सम्मान भी कम नहीं। 1930 से 40 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने राय साहब जैसे बड़े आदर के संबोधन दिए और आज उनकी हर पुण्यतिथि पर सरकारी समारोह होते हैं, मंच सजते हैं, गीत गूंजते हैं, अनगिनत कलाकार, नेता और साहित्यकार ये मांग भी करते हैं कि स्मृति के बेटे को भारत रत्न मिलना चाहिए।
4: श्रोताओं, भिखारी ठाकुर केवल एक व्यक्ति नहीं पूरे पूर्वांचल की धड़कन बन गए थे। उनके नाटक बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल तक पहुंचे। लोगों की भीड़ उनका नाटक देखने ऐसे उमड़ पड़ती जैसे मेला लग गया हो। आज उनके गीत किताबों में पढ़े जाते हैं, शोध संस्थानों में समझे जाते हैं और नए नए गायकों की आवाज में फिर से जन्म लेते हैं। छपरा, पटना, सारण, हर जगह उनके नाम पर मंच, पुरस्कार और केंद्र खुल चुके हैं।
2: श्रोताओं, कला के लिए भिखारी ठाकुर ने हमें सिखाया कि कलाकार वो है जो समाज की पीड़ा को खुद महसूस करे और फिर शब्दों, सुरों और अभिनय में ढाल दे। आज भी हर गायक, हर नाटककार भिखारी जी से यही सीख पाता है। इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम आपको भिखारी ठाकुर जी के लिए चार पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जो उनके जीवन, उनकी कला और उनकी आत्मा को एक साथ समेट लेती है।
4: माटी से उठल, माटी में मिलल, सुरवा बनके ऊ बही गईल, रोवेला समय गावे लोक, भिखारी नाम अमर हो गईल। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद और आज हमने अपने इस कार्यक्रम भारत विभूति में खूब सारी बातें की महान नाटककार, गीतकार, संगीतकार श्री भिखारी ठाकुर जी पर। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन दीपक नेमा का और आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने यानी संदीप शर्मा,
2: मैंने यानी स्वाति ने।
4: फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

0: भारत विभूति। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 8 जून को प्रस्तुति हुई भगेली गायन की कलाकार थी शीला त्रिपाठी और उनके साथी।
1: नमस्कार, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के इस गरिमामयी और पावन मंच तथा आप सभी गुणी श्रोताओं का मेरा नमन। आज हम सब इस अद्भुत संग्रहालय का 13वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह सिर्फ एक इमारत का जन्मदिन नहीं है, बल्कि हमारी जनजाति लोक संस्कृति की उस जीती जागती विरासत का उत्सव है, जिसे इस संग्रहालय ने अपने सीने से लगा कर रखा है। इस अनमोल दिन का हिस्सा आज मैं बनी हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग कलाकार तो सिर्फ एक जरिया हैं, असली कलाकार तो हमारी माटी, हमारे पुरखे, हमारी परंपराएं, लोकगीत। ये लोकगीत कोई लिखी हुई विधा नहीं है, यह तो हमारे सुख दुख, हमारी खेती किसानी, हमारी नदियों और पहाड़ों की धड़कन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों की छाती से बहकर हम तक पहुंची है। आज इस मंच से मैं उसी माटी की खुशबू और अपनी संस्कृति की एक छोटी सी झलक आपके बीच साझा करूंगी, जिसमें हमारे बघेलखंड के कुछ संस्कार गीत, कुछ ऋतु गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चूँकि आज इस संग्रहालय का जन्म दिवस है, तो हमारे यहाँ जन्म दिवस में सबसे पहले सोहर गाते हैं, तो प्रस्तुत है एक बघेलखंड की सोहर। धनी धनी नगर अयोध्या, धनेरे राजा दशरथ।

अब प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक कुआं पुजाई गीत। जब बच्चा होता है तो माँ जो है तब तक घर से बाहर नहीं जा सकती है जब तक कुआं का पूजन न कर ले। तो चलिए चलते हैं हम सब भी कुआं पूजने।

श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कुछ देशभक्ति गीतों का। आइए अब सुनते हैं राष्ट्र वंदना के ये स्वर।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। यहीं से श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की ये अंतर्मुख और गहन यात्रा आरंभ होती है।
0: श्रोताओं, प्रथम सर्ग में हमने उस क्षण को जिया जहां पराक्रम ने जन्म से प्रश्न किया और प्रतिभा ने पहचान से टकराकर अपना स्वर रचा। वहां कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह मनुष्य था जो सम्मान, अपमान, मित्रता और विवेक के बीच खड़ा होकर अपने भाग्य की दिशा तय कर रहा था। दिनकर जी ने हमें दिखाया कि तेज केवल बाहुबल में नहीं, चयन की अग्नि में तपकर प्रकट होता है। और अब जब वह अग्नि भीतर जल चुकी है, तब हम द्वितीय सर्ग की उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां शोर थम जाता है, प्रश्न गहरे होते हैं और आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से संवाद करने लगती है।
1: यहां रणभूमि का कोलाहल नहीं, तपोवन की निस्तब्धता है। दिनकर जी हमें उस स्थान पर खड़ा करते हैं जहां शांति कोई पलायन नहीं बल्कि शक्ति का संचय है। ये वो भूमि है जहां अस्त्र विश्राम करते हैं और आत्मा सजग रहती है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के दूसरे सर्ग के प्रथम भाग का पाठ। शीतल विरल एक कानन शोभित अदित के ऊपर कहीं उच्च प्रस्त्र वर्ण चमकते, झरते कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीन भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हूं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलाश कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण। चमक रहा त्रिणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली।
0: दिनकर जी यहाँ ऐसे आश्रम का चित्र रचते हैं जहाँ प्रकृति स्वयं तपस्विनी बन गई है। यह स्थान शांति, पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है। एक ऐसा परिवेश जहाँ आत्मा सहज ही स्थिर हो जाती है। यह केवल दृश्य नहीं, साधना की भूमि है।
1: ये कानन केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं रचता, ये जीवन का संतुलन सिखाता है। यहाँ हवन की अग्नि बुझ चुकी है पर उसका संस्कार वायु में शेष है। पशु पक्षी निर्भय है क्योंकि यहाँ शक्ति हिंसा में नहीं संयम में निहित है। दिनकर जी संकेत देते हैं कि जो समाज को दिशा देता है वो पहले स्वयं को तपाकर उज्जवल बनता है।
0: वन की निस्तब्धता में मानव प्रकृति स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो और दिनकर जी की वाणी उसमें सांस ले रही हो। हरियाली कहती है, हे सूर्य पुत्र, यह शांति पलायन नहीं साधना है। झरनों की अविरल धारा समझाती है कि जैसे संघर्ष थमता नहीं वैसे ही पुरुषार्थ भी रुकता नहीं। दिनकर जी इस कानन को केवल वन नहीं चेतना की पाठशाला बना देते हैं। जहां कर्ण रण के शोर से पहले आत्मा की नीरवता सीखता है। यहां प्रकृति सिखाती है कि जो अपने भीतर के द्वंद को समझ लेता है, वही आगे चलकर धर्म और युद्ध के बीच सही मार्ग चुन पाता है। आइए सुनते हैं दूसरे सर्ग का दूसरा भाग, जहां कर्ण इस दिव्य आश्रम को अपने जीवन की रणभूमि और अपने अंतर मन में कहीं आत्मसात कर रहा है। श्रद्धा बढ़ती अजन दर्भ परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सुबा उसी की कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है।
1: किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। हां हां वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है।
0: श्रोताओं, ये केवल एक आश्रम का दृश्य नहीं है, यह इतिहास की वह नीरव घड़ी है जहां नियति सांस रोके खड़ी है। एक ओर तप की शांति है, दूसरी ओर शस्त्रों की चेतावनी। जिस भूमि पर अभी धूप चुपचाप उतर रही है, वहीं से कल महायुद्ध की ज्वाला उठेगी। यहाँ गुरु विश्राम में है और शिष्य सेवा में, पर इसी विश्वास की छाया में छिपा है वह क्षण जो कर्ण के जीवन की दिशा बदल देने वाला है। अब कथा उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां तप की परीक्षा होने वाली है।
1: कर्ण अचल बैठा है, उसकी जांघ पर परशुराम का मस्तक टिका है। गुरु निद्रा में है, शिष्य सजग है, न सांस डगमगाती है न मांसपेशी कांपती है, पर उसी अडिग स्थिरता में इतिहास की धड़कन तेज हो उठी है। ये केवल विश्राम का क्षण नहीं, ये विश्वास और वीरत्व की कठोर परीक्षा है। एक पल का हिलना तप को भंग कर सकता है, एक क्षण की दुर्बलता युग की दिशा बदल सकती है। इसलिए कर्ण स्थिर है, अचल, अडिग, सूर्य पुत्र की गरिमा में स्थित और उसी महावीर की स्थिरता में इतिहास सहमा हुआ कांप रहा है, मानो वो स्वयं से कह रहा हो।
2: मैं यहां केवल अस्त्र पाने नहीं आया हूं, मैं स्वयं को गढ़ने आया हूं। गुरु का स्नेह मुझे मिला, पर क्या मैं उस विश्वास के योग्य हूं? क्या मेरा जन्म ही मेरी पहचान है? क्या मेरा पुरुषार्थ ही मेरा नाम रचेगा? यदि सत्य का भार उठाना ही मेरी परीक्षा है, तो हे दिवाकर, यदि ये पीड़ा ही मेरी दीक्षा है, तो मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इसे मुस्कान की तरह धारण कर सकूं। यदि सत्य का भार ही मेरी परीक्षा है, तो मेरी आत्मा को इतना अडिग कर दो कि अपमान का महासागर भी मेरे संकल्प की एक रेखा ना डिगा सके। मैं टूट जाऊं, रक्त बह जाए, प्राण कांप उठे, पर मेरा धैर्य ना टूटे, क्योंकि जो पुरुष विपत्ति के अंधकार में भी अपने पथ से नहीं लौटता, वही समय की शिला पर अपना नाम अग्निलेख की तरह अंकित करता है। और मैं लौटने नहीं आया, मैं अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने आया हूं।
0: परशुराम का स्नेह अथाह है, पर उसी स्नेह की छाया में उनका क्रोध भी प्रलयंकारी है। ये तपोवन अभी शांति से सांस ले रहा है, पर कौन जाने भविष्य के गर्भ में क्या धधक रहा है। एक क्षण की चूक, एक असत्य का भार और विद्या का वर शाप बन सकता है। दिनकर जी संकेत देते हैं, वीरता केवल रण की गर्जना नहीं, वह उस मौन क्षण में परखी जाती है जहां भाग्य तलवार की धार पर खड़ा प्रतीक्षा करता है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ, जहां संयम की एक पल की स्थिरता आने वाले युगों की दिशा तय करने वाली है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं,
1: ओ वत्स, पुष्टिकर भोग ना तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं, इसकी पूर्ति कहां से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सिंहों मांस पेशियां, लोहे से भुज दंड भय, नस नस में हूं लहर राग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर।
0: ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। श्रोताओं, यह केवल एक गुरु की निद्रा नहीं है, यह उस विश्वास का क्षण है जो शिष्य के हृदय पर रखा गया है। परशुराम निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें अपने शिष्य पर अटूट भरोसा है, और कर्ण वह इस भरोसे को अपने प्राणों से भी भारी मानकर थामे बैठा है। दिनकर जी का यह काव्य इसलिए सदा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि इसमें परशुराम और कर्ण का संबंध मानवीय सत्य बनकर उभरता है। गुरु की कठोरता में छिपी ममता और शिष्य की मौन सहनशीलता, यह मर्म हर युग में वैसा ही रहता है। समय बदले, शास्त्र बदले, पर जहां प्रतिभा को तपाया जाता है और विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वहां यह रिश्ता आज भी उतना ही जीवित है। द्वितीय सर्ग के इस भाग को सुनकर मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिनकर जी स्वयं ही परशुराम का मन बनकर बोल उठे हों।
1: ये शिष्य साधारण नहीं है, इसकी नसों में तप और रण दोनों का रक्त बहता है। यदि इसे केवल संयम सिखाया गया तो इसकी देह युद्ध का भार न सह पाएगी, और यदि केवल शस्त्र दिए गए तो आत्मा भटक जाएगी। इसलिए मेरी कठोरता आवश्यक है, मेरी मर्यादा अडिग है, मैं इसे तोड़ने नहीं गढ़ने आया हूं। जो भविष्य के महासंग्राम का भार उठाएगा, उसे आज अनुशासन की अग्नि में तपना ही होगा। ये कठोरता दंड नहीं है।
0: आइए श्रोताओं, अब हम द्वितीय सर्ग भाग 4 की ओर कदम रखें। यहां मौन अब बोझ नहीं रह जाता, वह अर्थ बनकर उभरता है। पीड़ा स्वर पाती है और धैर्य अपनी अंतिम कसौटी पर खड़ा होता है। इसी क्षण कर्ण का भाग्य उससे प्रश्न करता है, क्या तप से जन्मा तेज बिना झुलसे आगे बढ़ सकता है? यही वह मोड़ है जहां ये काव्य रूपी कथा नई दिशा लेती है। आइए सुनते हैं रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का भाग 4।
1: खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असि विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भू को, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है।
0: अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। श्रोताओं, दिनकर जी के ये पद्य केवल प्राचीन राजाओं की कथा नहीं कहते, वे आज के मनुष्य को आईना दिखाते हैं। जब सत्ता प्रश्नों से चिढ़ने लगे, जब विवेक को दुर्बल समझा जाए और जय घोष सत्य से ऊंचा हो जाए, तब समाज भीतर ही भीतर खोखला होने लगता है। आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां शक्ति तर्क को दबा रही है और भीड़ सोचने की बजाय तालियां बजा रही है। यही पतन की पहली सीढ़ी है, जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं मूल्यों के विरुद्ध लड़ा जाने लगता है।
1: यहां प्रश्न युद्ध का नहीं, दिशा का है। जब सत्ता स्वयं को ही सत्य मानने लगे, तब धर्म शस्त्रों से नहीं मौन से हारने लगता है। ऐसे समय में जो सोचता है वही अकेला पड़ता है, और जो जय जयकार करता है वही सुरक्षित रहता है। कर्ण का जीवन इसी विडंबना में गढ़ा जा रहा है। एक ऐसा वीर जिसे लड़ना तो आता है, पर जिस युग में वो खड़ा है वहां न्याय से अधिक शोर की कीमत है। यही इस प्रसंग की पीड़ा है, और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी। ये यात्रा यहीं ठहरती नहीं, क्योंकि कर्ण का पथ अभी लंबा है और उसकी परीक्षा अभी शेष है।
0: तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर ये विदा केवल एक विराम है, इस यात्रा का अंत नहीं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7, जहां कथा और भी गहन होगी और भावनाएं और भी प्रखर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का था, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की थी, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
3: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आप सबसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
1: नमस्कार,
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
4: काव्य गुंजन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
5: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
4: और अब सुनिए राष्ट्र गौरव का गान।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अगला कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।

0: श्रोताओं, इसके पिछले भाग में हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर पी के आयंगर जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। आइए आगे हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं।
1: विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आयंगर ने कई सुधार किए। उन्होंने प्रयोगशाला में नए उपकरण मंगवाए, पुस्तकालय का विस्तार किया और छात्रों के लिए अधिक शोध अवसर बनाए। उनका मानना था कि छात्रों को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी मिलना चाहिए। एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने वनस्पति विज्ञान विभाग के बजट में कटौती करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर आयंगर ने कुलपति से मुलाकात की और दृढ़ता से अपनी बात रखी। सर, विज्ञान में निवेश देश का भविष्य है। अगर हम आज अपने छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो कल भारत वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बजट कटौती पर पुनर्विचार करें।
0: कुलपति डॉक्टर आयंगर के तर्क और समर्पण से प्रभावित हुए। न केवल बजट कटौती रद्द की गई, बल्कि अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई। डॉक्टर आयंगर के मार्गदर्शन में कई छात्रों ने पीएचडी की। उनकी मार्गदर्शन शैली बहुत व्यक्तिगत थी। हर शोधार्थी के साथ वे सप्ताह में कम से कम एक बार बैठते और उनकी प्रगति पर चर्चा करते।
1: एक शोधार्थी सुब्बा लक्ष्मी, जो दक्षिण भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानी बनी, उन्होंने बाद में लिखा, प्रोफेसर आयंगर मेरे जीवन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान में करियर बनाना बहुत कठिन था। समाज का दबाव था कि विवाह करो और घर संभालो, लेकिन प्रोफेसर आयंगर ने मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, सुब्बा लक्ष्मी, विज्ञान में लड़का लड़की नहीं देखा जाता, केवल प्रतिभा देखी जाती है। तुम में वो प्रतिभा है। उनके समर्थन के बिना मैं कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाती।
0: एक अन्य शिष्य नटराजन, जो बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने, उन्होंने याद किया, प्रोफेसर आयंगर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता समान थे। एक बार मैं अपने शोध में बहुत निराश था, परिणाम नहीं मिल रहे थे और मैं सोच रहा था कि शोध छोड़ दूं। प्रोफेसर को पता चला, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। श्रीमती आयंगर ने चाय और स्नैक्स परोसे। प्रोफेसर ने मेरे साथ घंटों बैठकर मेरे शोध पर चर्चा की। उन्होंने कहा, नटराजन, विफलता सफलता का हिस्सा है। हर महान खोज असफलताओं के ढेर पर बनी है। तुम हार मत मानो। उस शाम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने शोध जारी रखा और अंततः सफल हुआ।
1: डॉक्टर आयंगर को अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था। 1939 में उन्हें लंदन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया। ये यात्रा कठिन समय में थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। लक्ष्मी चिंतित थी, क्या आपको वास्तव में जाना चाहिए? यूरोप में युद्ध हो रहा है। डॉक्टर आयंगर ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है।
0: सम्मेलन में डॉक्टर आयंगर ने अपनी एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति को काफी सराहना मिली। यूरोपीय वैज्ञानिक भारतीय समुद्री वनस्पतियों की विविधता से प्रभावित हुए। सम्मेलन के बाद कई वैज्ञानिकों ने डॉक्टर आयंगर से संपर्क किया और सहयोग की पेशकश की। ये भारतीय विज्ञान के लिए गर्व का क्षण था।
1: डॉक्टर आयंगर भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। 1942 में उन्हें वनस्पति विज्ञान खंड का अध्यक्ष चुना गया। उनका अध्यक्षीय भाषण बहुत प्रभावशाली था। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। भारत स्वतंत्रता के करीब है। एक स्वतंत्र भारत को मजबूत वैज्ञानिक आधार की जरूरत होगी। वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, ये कृषि, औषधि, पर्यावरण सभी से जुड़ा है। हमें युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना होगा, शोध को बढ़ावा देना होगा और देश की समृद्धि के लिए विज्ञान का उपयोग करना होगा।
0: भाषण के बाद कई युवा छात्र डॉक्टर आयंगर से मिलने आए। उनमें से एक ने कहा, सर आपने हमें प्रेरित किया है, हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर आयंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यही मेरा उद्देश्य था, विज्ञान देश की सेवा का एक माध्यम है। 1940 के दशक में जब डॉक्टर आयंगर अपने करियर के शिखर पर थे, घर पर चुनौतियां भी बहुत थीं। बड़े बेटे रामकृष्णन किशोरावस्था में थे और विद्रोही हो रहे थे। उन्हें विज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, वे संगीत और कला में रुचि रखते थे। एक दिन रामकृष्णन ने घोषणा की, पिताजी मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, मैं संगीतकार बनना चाहता हूँ।
1: ये डॉक्टर आयंगर के लिए निराशा का क्षण हो सकता था। कई पिता अपने बच्चों को अपने पेशे में ही देखना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर आयंगर अलग थे। उन्होंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, रामकृष्णन मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर संगीत तुम्हारा जुनून है तो उसका पीछा करो, लेकिन याद रखो जो भी करो पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो।
0: लक्ष्मी जो पास में बैठी थी, उन्होंने अपने पति का हाथ दबाया। वे जानती थी कि ये निर्णय डॉक्टर आयंगर के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये सही था। रामकृष्णन बाद में एक प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीत कलाकार बने। हर कॉन्सर्ट के बाद वे अपने पिता को धन्यवाद देते, पिताजी आपने मुझे मेरे सपने पूरे करने दिए। बेटी सरस्वती बहुत बुद्धिमान थी और विज्ञान में रुचि रखती थी, लेकिन 1940 के दशक में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा असामान्य थी। रिश्तेदार दबाव डालते, सरस्वती अब 18 की हो गई है, उसकी शादी करा दो।
1: लेकिन डॉक्टर आयंगर और लक्ष्मी दृढ़ थे। उन्होंने सरस्वती को कॉलेज भेजा। सरस्वती ने वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया और अपने पिता की तरह शोध में रुचि विकसित की। एक दिन सरस्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। डॉक्टर आयंगर की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। बेटी तुम मुझसे भी बेहतर वैज्ञानिक बनोगी, मैं तुम्हारी हर कदम पर मदद करूंगा। सरस्वती ने अपने पिता के मार्गदर्शन में PhD की और भारत की शुरुआती महिला वनस्पति विज्ञानियों में एक बनी।
0: 1945 में लक्ष्मी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। तेज बुखार और कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये टाइफाइड हो सकता है। डॉक्टर आयंगर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कॉलेज से छुट्टी ली और लक्ष्मी की देखभाल में दिन रात लगे रहे। वे खुद उनके लिए खाना बनाते, दवा देते और रात में उनके पास बैठे रहते। बच्चों ने भी मदद की। सरस्वती ने घर का काम संभाला, रामकृष्णन छोटे वेंकटेश का ख्याल रखते। कई सप्ताहों की देखभाल के बाद लक्ष्मी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब वे पूरी तरह ठीक हुई, उन्होंने डॉक्टर आयंगर से कहा, आपने मेरी जान बचाई।
1: डॉक्टर आयंगर ने भावुक होकर कहा, लक्ष्मी तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य और प्रेम दोनों है। इस घटना ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता के बीच कितना गहरा प्रेम और सम्मान है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर आयंगर और उनका परिवार मद्रास की सड़कों पर उत्सव में शामिल हुआ। तिरंगा फहराया गया और लोग नाचे और गाए। डॉक्टर आयंगर ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ये ऐतिहासिक दिन है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक मजबूत भारत बनाने में योगदान दें। विज्ञान शिक्षा सेवा हर क्षेत्र में हमें काम करना होगा।
0: स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विज्ञान और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर आयंगर को कई सरकारी समितियों में शामिल किया गया जो वैज्ञानिक नीतियां बनाती थीं। 1950 के दशक में डॉक्टर आयंगर अब 60 के दशक में थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए थे और कई पुस्तकें लिखी थीं। 1954 में भारत सरकार ने घोषणा की, प्रोफेसर पी के अयंगर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये खबर जब मिली, पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई।
1: छात्रों ने विशेष समारोह आयोजित किया, विभाग को फूलों से सजाया गया, सहकर्मियों ने बधाई दी। प्रोफेसर अयंगर विनम्रता से सबका आभार व्यक्त करते रहे। घर पर लक्ष्मी ने विशेष पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। बच्चों ने मिठाई वितरित की। रामकृष्णन ने एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया अपने पिता के सम्मान में। पुरस्कार समारोह के लिए पूरा परिवार दिल्ली गया। ये छोटे वेंकटेश की पहली दिल्ली यात्रा थी। राष्ट्रपति भवन की भव्यता देखकर वे चकित थे।
0: समारोह का दिन आया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भव्य व्यवस्था थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना था, कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सेवक। जब प्रोफेसर अयंगर का नाम पुकारा गया, वे मंच की ओर बढ़े। सफेद धोती, सफेद शर्ट और काले कोट में वे बहुत गरिमामय दिख रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण का पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा, प्रोफेसर अयंगर, आपने भारतीय वनस्पति विज्ञान को समृद्ध किया है और कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया है। देश आपका आभारी है।
1: प्रोफेसर अयंगर ने विनम्रता से कहा, महामहिम, ये सम्मान मेरे गुरुओं, सहकर्मियों, छात्रों और परिवार का है। विज्ञान एक सामूहिक यात्रा है। मैं केवल एक छोटा योगदान करता हूँ। दर्शकों में बैठी लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि वो गरीब केरल गांव का लड़का कितनी दूर आ गया है। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर अयंगर और भी विनम्र हो गए। उन्होंने कहा, सम्मान जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, अब मुझे और अधिक काम करना होगा।
0: वे अपने शोध में और भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जो भारतीय समुद्री वनस्पतियों का संपूर्ण दस्तावेजीकरण है। उन्होंने कई युवा शोधकर्ताओं को इस परियोजना में शामिल किया। प्रत्येक शोधकर्ता एक विशेष समुद्री क्षेत्र का अध्ययन करता। ये एक बहुवर्षीय परियोजना थी जो भारतीय वनस्पति विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर अयंगर को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलोशिप प्रदान की। ये किसी भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था।
1: जर्मनी की एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें मानद सदस्यता दी। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। 1958 में प्रोफेसर अयंगर ने अमेरिका की 3 महीने की यात्रा की। उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT में व्याख्यान दिए। अमेरिकी वैज्ञानिक भारतीय विज्ञान की प्रगति से प्रभावित हुए। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर अयंगर, आप साबित करते हैं कि विश्व स्तरीय विज्ञान केवल पश्चिम में ही नहीं होता, भारत भी महान वैज्ञानिक पैदा करता है।
0: 1960 के दशक में प्रोफेसर अयंगर अब 60 के दशक के अंत में थे। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लंबे घंटे प्रयोगशाला में खड़े रहना मुश्किल हो गया था। आंखों की रोशनी कम हो रही थी, जिससे सूक्ष्मदर्शी से काम करना कठिन था। लेकिन उनका मन अभी भी जवान था। वे हर सुबह कॉलेज जाते, हालांकि अब बेटा वेंकटेश उन्हें कार में छोड़ने लगा था। लक्ष्मी चिंतित रहती थी, अब आराम करने का समय आ गया है, आपने पर्याप्त काम किया है। लेकिन प्रोफेसर अयंगर मुस्कुराते, लक्ष्मी, जब तक शरीर साथ दे, मैं काम करूंगा, विज्ञान मेरा जीवन है।
1: 1962 में जब प्रोफेसर अयंगर 66 वर्ष के हुए, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार रिटायर होना पड़ा। रिटायरमेंट समारोह भव्य था। पूरा विश्वविद्यालय इकट्ठा हुआ। कुलपति ने कहा, प्रोफेसर अयंगर ने इस विश्वविद्यालय को 35 वर्ष दिए। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया, जो अब देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। छात्रों ने एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया। पुराने छात्र जो अब मध्यम आयु के प्रोफेसर थे, देश के विभिन्न हिस्सों से आए, एक एक करके उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
0: नटराजन जो अब IARI के निदेशक थे, उन्होंने कहा, सर आपने मुझे न केवल विज्ञान सिखाया बल्कि जीवन जीना सिखाया। आप हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। सुब्बा लक्ष्मी जो अब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं, उन्होंने कहा, सर एक महिला के रूप में विज्ञान में मेरी यात्रा कठिन थी, लेकिन आपने मुझे साहस दिया, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सफल हो सकती हूँ।
1: प्रोफेसर आयंगर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय छात्रों, आप सब मेरे गर्व हो। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये देखना है कि उसके छात्र सफल हो रहे हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर आयंगर घर पर रहने लगे। शुरुआत में ये मुश्किल था। 35 वर्षों तक कॉलेज जाना एक आदत सी बन गई थी। अचानक घर पर पूरा दिन बिताना अजीब लगता था।
0: लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नई दिनचर्या बनाई। सुबह बगीचे में समय बिताते, उन्होंने घर में एक छोटा सा वनस्पति उद्यान बनाया जहां विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। पोते पोतियों के साथ वहीं पर समय बिताते, दोपहर में अपनी पुस्तकों पर काम करते। उन्होंने अपने जीवन भर के शोध को संकलित करना शुरू किया। वे अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में लगे रहते।
1: रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर आयंगर ने लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने कई लेख लिखे जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनकी कई लेख प्रकाशित हुए और पुस्तक तुरंत वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए मानक बन गई। पुस्तक के लोकार्पण समारोह में कुलपति ने कहा, प्रोफेसर आयंगर रिटायर हो गए हैं, लेकिन विज्ञान में उनका योगदान जारी है। ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य संसाधन होगी।
0: उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया, अपनी आत्मकथा लिखना शुरू की। हालांकि ये पुस्तक उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। बाद में उनकी बेटी सरस्वती ने इसे पूरा किया और प्रकाशित करवाया। 1965 के आसपास प्रोफेसर आयंगर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें मधुमेह की समस्या थी जो नियंत्रित नहीं हो रही थी। हृदय भी कमजोर हो रहा था।
1: डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे पूरा आराम करें और तनाव से बचें। लक्ष्मी ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने विशेष आहार तैयार किया, कम शक्कर, कम नमक, नियमित दवाइयां दे दी, लेकिन प्रोफेसर आयंगर के लिए निष्क्रिय रहना मुश्किल था। लक्ष्मी, मैं बिस्तर में नहीं रह सकता, मुझे कुछ काम करना होगा, वे यही कहते। लक्ष्मी समझाती। उन्होंने प्रोफेसर आयंगर के लिए बिस्तर के पास एक छोटी मेज लगाई जहां वे लेट कर भी पढ़ लिख सकते थे।
0: प्रोफेसर आयंगर के पुराने छात्र और सहकर्मी उनसे मिलने आते रहे। हर मुलाकात भावुक होती थी। नटराजन दिल्ली से आए, सुब्बा लक्ष्मी भी आई। कॉलेज के सहकर्मी, पुराने मित्र, सभी अपने प्रिय प्रोफेसर से मिलना चाहते थे। एक दिन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलने का अनुरोध किया। हालांकि प्रोफेसर आयंगर बहुत कमजोर थे, उन्होंने मिलने की अनुमति दी।
1: प्रतिनिधि मंडल के जो नेता थे, उन्होंने कहा, सर आप भारतीय विज्ञान के स्तंभ हैं, आपका योगदान अमूल्य है, हम आपको सम्मान देने आए हैं। प्रोफेसर आयंगर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। भारतीय विज्ञान का भविष्य युवा वैज्ञानिकों के हाथों में है। उन्हें प्रोत्साहित करो, संसाधन दो और देखो कैसे भारत विश्व में विज्ञान का नेतृत्व करेगा।
0: 1966 के पतझड़ में या उसके आसपास प्रोफेसर आयंगर की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने परिवार को तैयार रहने की सलाह दी। पूरा परिवार घर पर इकट्ठा था। एक शांत रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, प्रोफेसर आयंगर ने अपनी आंखें खोली। लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए। बच्चे और पोते पोतियां भी पास में थे। प्रोफेसर आयंगर ने सबको देखा, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं भाग्यशाली हूं। इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, सुंदर जीवन मिला। अब थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। 70 वर्ष की आयु में प्रोफेसर पी के आयंगर ने अपनी अंतिम सांस ली।
1: अगली सुबह खबर फैल गई। मद्रास विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक समुदाय, छात्र सभी शोक में डूब गए। विश्वविद्यालय ने एक दिन की छुट्टी घोषित की। प्रोफेसर आयंगर के पार्थिव शरीर को फूलों से सजाया गया। पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति के अनुसार उन्हें सफेद कपड़ों में लपेटा गया, चंदन का लेप लगाया गया। घर पर सैकड़ों लोग आए, छात्र, सहकर्मी, मित्र, रिश्तेदार सभी ने श्रद्धांजलि दी। कई लोग रो रहे थे। नटराजन, सुब्बलक्ष्मी और अन्य पुराने छात्र विशेष रूप से दुखी थे।
0: दोपहर में अंतिम संस्कार के लिए जुलूस निकला। शव को एक सजे हुए ट्रक पर रखा गया। हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। विश्वविद्यालय से लेकर शमशान घाट तक सड़कें लोगों से भरी हुई थी। कुलपति, विभाग के प्रोफेसर, छात्र सभी पैदल चल रहे थे। कुछ लोग प्रोफेसर आयंगर अमर रहे के नारे लगा रहे थे।
1: कुछ दिनों बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। हॉल खचाखच भरा था। मंच पर प्रोफेसर आयंगर का बड़ा चित्र लगा था, फूलों की माला से सजा हुआ। कुलपति ने कहा, आज हमने एक महान वैज्ञानिक, एक प्रेरक शिक्षक और एक उत्कृष्ट इंसान को खो दिया। प्रोफेसर आयंगर ने अपना जीवन ज्ञान की खोज और उसके प्रसार में समर्पित किया। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया जो आज देश विदेश में विज्ञान की सेवा कर रहे हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।
0: नटराजन जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भावुक होकर कहा, सर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता, मित्र और मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें विज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए। उनकी विनम्रता, समर्पण और मानवता हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। पूरा हॉल शांत था, केवल सिसकियों की आवाजें आ रही थी।
1: प्रोफेसर आयंगर की मृत्यु के बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने उनके सम्मान में कई पहल की। प्रोफेसर पी के आयंगर मेमोरियल लेक्चरर हर वर्ष एक प्रतिष्ठित वनस्पति वैज्ञानिक को ये व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आयंगर फेलोशिप युवा शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जो वनस्पति विज्ञान में PhD कर रहे हैं। आयंगर हर्बेरियम विश्वविद्यालय में एक विशेष अनुभाग जहां प्रोफेसर आयंगर द्वारा एकत्रित नमूने संरक्षित हैं।
0: प्रोफेसर आयंगर के शोध पत्र और पुस्तकें आज भी वनस्पति विज्ञान के छात्रों द्वारा पढ़ी जाती है। कई शैवाल और कवक प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम में आयंगरी जुड़ा है, जिसका नामकरण उनके सम्मान में किया गया है।
1: आज 21वीं सदी में प्रोफेसर पी के आयंगर की कहानी युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। एक छोटे से केरल गांव से निकलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक बनना, ये यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन ये सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है। शिक्षक का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। विनम्रता और सरलता सच्ची महानता की निशानी है। परिवार और करियर में संतुलन संभव है। विज्ञान देश और मानवता की सेवा का माध्यम है।
0: प्रोफेसर पी के आयंगर का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी विरासत, उनके शोध, उनके छात्र, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रोफेसर पी के आयंगर का शरीर भले ही 1966 में हमें छोड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं। हर बार जब कोई छात्र सूक्ष्मदर्शी में एक कोशिका देखकर आश्चर्यचकित होता है, हर बार जब कोई शिक्षक अपने छात्र को प्रोत्साहित करता है, हर बार जब कोई वैज्ञानिक विनम्रता से अपना ज्ञान साझा करता है, प्रोफेसर अयंगर वहाँ मौजूद हैं।
1: उनकी ये कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ये भारतीय विज्ञान के विकास की कहानी है, ये समर्पण और सेवा की कहानी है, ये प्रेम और परिवार की कहानी है, ये मानवता की कहानी है।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की प्रोफेसर पी के अयंगर जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं प्रमिला मुंशी दिवाकर।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। ये प्रसारण आप तक पहुंचा

के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वामी विवेकानंद भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। सन 1898 की जुलाई में स्वामी जी नीलांबर बाबू के उद्यान में स्थित बेलूड़ मठ में निवास कर रहे थे। एक दिन संध्या समय अपने शिष्यों सहित ध्यान समाप्त कर स्वामी जी कमरे में आकर बैठ गए। बाहर जोरों की वर्षा हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। स्वामी जी ने सब दरवाजे बंद कर लिए और तानपुरे पर एक गीत गाया।

0: गीत समाप्त होने पर संगीत पर चर्चा छिड़ गई। स्वामी शिवानंद जी ने पूछा, पाश्चात्य संगीत के संबंध में आपके क्या विचार हैं?
1: पाश्चात्य संगीत बहुत उत्कृष्ट है, उसमें गीत माधुरी लय उस चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है जो हमारे संगीत में नहीं है। ये और बात है कि हमारे अनअभ्यस्त कानों को पाश्चात्य संगीत रुचिकर प्रतीत नहीं होता और हम ये सोचते हैं कि वे सियारों के समान चिल्लाते हैं। पहले मेरा भी यही ख्याल था, पर जब मैंने उनके संगीत को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
2: परंतु हम भारतीयों को पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता, शायद हम उसे समझते नहीं, इसलिए।
1: सभी कलाओं का यही हाल होता है। किसी उत्कृष्ट चित्र को देखकर हम ये नहीं समझ सकते कि उसका सौंदर्य कहाँ छिपा है। जब तक चित्रकला में निपुणता न प्राप्त हो तब तक किसी कलाकृति का मर्म समझना कठिन है। हमारा संगीत केवल कीर्तन और ध्रुपद में ही शुद्ध रूप में जीवित है, शेष सब इस्लामी संगीत कला के अनुकरण से दूषित हो गया है।
2: हमें विस्तार पूर्वक समझाइए स्वामी जी।
1: प्रकृति का अनुकरण कर चित्रकला चाहे जितनी कलामय बनाई जा सकती है, इसी प्रकार संगीत में भी शास्त्र अनुकरण कर जितनी चाहे उतनी दक्षता प्रदर्शित की जा सकती है और ऐसा संगीत कानों को भी प्रिय लगेगा। भारत में आकर मुस्लिमों ने यहाँ की राग रागिनियों को अपनाया तो अवश्य, पर टप्पा गीतों पर उन्होंने अपने संगीत की इतनी गहरी छाप मारी कि यहाँ का संगीत ही नष्ट हो गया।
3: ऐसा कैसे महाराज, टप्पा तो सबको अच्छा लगता है।
1: हाँ, कुछ लोगों को झिंगुरों की झनकार भी अच्छी लगती है। संथाल भी अपने संगीत को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सातों सुरों के भिन्न भिन्न प्रकार के संयोगों को ही भिन्न भिन्न राग रागिनियों का नाम दिया गया है, पर टप्पा में उल्टी ही बात है। ये तो एक राग से दूसरे राग की ओर दौड़ है। एक नई धुन बनाई जा सकती है, फिर आलाप में आवाज ऊंची उठाकर उसमें कंपन लाया जाता है। भला इसमें राग कैसे शुद्ध और पूर्ण बना रह सकता है?
4: उनकी बातें सबको समझ में नहीं आई क्योंकि वे सब संगीतज्ञ नहीं थे। ये समझकर स्वामी जी ने उन्हें समझाया,
1: यदि केवल प्रभावोत्पादन के लिए ही लघु रूप आलापों का इतना प्रचुर उपयोग किया जाए तो संगीत का अर्थ तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब से टप्पा का प्रचार हुआ तब से भाव व्यक्त करने के लिए गीतों का गाया जाना तो बिल्कुल बंद हो गया। अब रंगमंच की प्रगति के साथ शुद्ध संगीत का शनै शनै जीर्णोद्धार होने लगा है, पर अब भी राग रागनियों की अवहेलना ही हो रही है। जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है, पर हमारे संगीत में सुरों का आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है। फ्रांस वालों ने हमारे संगीत के इस गुण को पहचाना है और अपने संगीत में अपनाने का प्रयत्न किया है। उनको देखकर यूरोप भर में अनुकरण होने लगा।
3: महाराज, उनका संगीत तो अधिकतर वीर रस जागृत करने वाला है और हमारे संगीत में इसका नितांत अभाव जान पड़ता है।
1: नहीं, हमारे संगीत में ये विशेषता है। वीर रस के संगीत में भी लय की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे संगीत में लय का अभाव है, इसलिए हमारे वीर रस का संगीत इतना प्रबल नहीं है। पाश्चात्यों का संगीत बहुत अधिक उन्नत है। उनके संगीत में करुण और वीर रस दोनों की ही प्रचुरता है। हमारे तुम्बे से बने प्राचीन वाद्यों में कोई प्रगति ही नहीं हुई।
3: कौन कौन से राग वीर रस प्रधान है?
1: हर एक राग वीर रस प्रधान बन सकता है यदि उनमें लय हो और वाद्य भी तदनुकूल लिए जाएं। कुछ रागिनियां भी कुछ वीर रस प्रधान बन सकती हैं।
0: भोजन का समय हो गया था, इसीलिए चर्चा समाप्त कर दी गई। तदुपरांत स्वामी जी कलकत्ते से आए हुए अतिथियों के सोने की व्यवस्था के बारे में पूछताछ कर अपने शयन कक्ष में आराम करने लगे।
4: स्वामी जी कितने अच्छे संगीतज्ञ थे, उसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। शायद इस घटना का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, पर यहाँ संगीत की बात चली तो और एक बार उस घटना के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं।
0: परिव्राजक के रूप में अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की एकनाथ पंडित नामक एक वरिष्ठ संगीतज्ञ के साथ मुलाकात हुई, जो एक ध्रुपद गायक थे। स्वामी जी ने उनका संगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की। एकनाथ पंडित के गाने के साथ स्वामी जी मृदंग पर संगत करने लगे। स्वामी जी के इस मृदंग वादन से गायक और श्रोता पूर्णतः संतुष्ट हुए।
4: इस कार्यक्रम के पश्चात होने वाले वार्तालाप से पता चला कि स्वामी जी एक अच्छे गायक भी हैं। अतः उन लोगों ने स्वामी जी से गाने का अनुरोध किया। स्वामी जी तानपुरा उठाकर ध्रुपद का आलाप लेने लगे। फिर जब वे गीत के लय पर आए तो कोई भी मृदंग पर उनकी संगत नहीं कर सका।
0: सहसा ही उन्होंने तानपुरा एकनाथ पंडित के हाथ में सौंपते हुए मृदंग उठा लिया और स्वयं ही अपनी संगत करने लगे। इस तरह सबको आश्चर्य में डालकर स्वामी जी ने दोनों भूमिकाएं निभाई। इस अद्भुत घटना पर विस्मित होकर पंडित जी कह उठे, स्वामी जी आप केवल गायक नहीं नायक भी हैं।
4: नायक की उपाधि एक ऐसे संगीतज्ञ को दी जाती है जिसमें सफल प्रदर्शन, संगीत रचना की क्षमता, संगीत शास्त्र का दान और श्रोताओं को अभिभूत करने की प्रतिभा हो। जिन लोगों को संगीत का थोड़ा ज्ञान है वे इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे कि ध्रुपद गायन जिसमें कि षट प्राण और षट संगत लगते हैं के साथ मृदंग पर स्वयं ही संगत कर पाना प्रायः असंभव सा है। इन दोनों को एक साथ अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाना एक अति मानवीय कार्य है।
0: स्वामी जी ने सुव्यवस्थित ढंग से ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन और टप्पा का अध्ययन किया था। टप्पा के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। विभिन्न शिक्षकों से उन्होंने मृदंग, तबला और सितार भी सीखा। वेणी उस्ताद वेणी माधव अधिकारी और उस्ताद अहमद खान से उन्होंने ध्रुपद व ख्याल सीखा था।
4: ब्रह्म समाज के एक सदस्य श्री काशी घोषाल से उन्होंने इसराज एवं मृदंग सीखा। उनके समकालीन बंगाल के संगीतज्ञों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, त्रैलोक्यनाथ सान्याल और जितेंद्रनाथ ठाकुर। कहते हैं अपनी संगीत शिक्षा के दिनों में स्वामी जी नियमित रूप से कठोर अभ्यास किया करते थे।
0: स्वामी जी एक रचनाकार भी थे। परवर्ती काल में उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी में अनेक रचनाएं की और उन्हें विभिन्न शास्त्रीय रागों एवं तालों के साथ समायोजित किया। उनमें कुछ का विवरण निम्नलिखित है। पहला, खंडन भव बंधन, राग यमन, ताल चौताल। ये रामकृष्ण संघ के सभी केंद्रों में गाई जाने वाली दैनिक प्रार्थना है। दूसरा, एक रूप अरूप नाम वर्ण, राग बड़ा हंस सारंग, ताल चौताल। तीसरा, ना ही सूर्य ना ही ज्योति, राग बागेश्री, ताल अड़ा या इकवी। चौथा, मुझे वारी बनवारी सैया, राग ठुमरी, ताल कहरवा।
4: उनकी तबले की ताल पर भी अनेक रचनाएं हैं। यदि 39 वर्ष की अल्पायु में देह त्याग ना किया होता तो संगीत जगत संभवतः उनकी और भी रचनाएं पाकर उपकृत होता।
0: संगीत के किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में ध्रुपद के प्रति स्वामी जी का बड़ा सम्मान का भाव था। वे कहते,
1: जिन सब गीत वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भाव समूह उद्दीप्त हो जाते हैं उन सब को अब थोड़े दिन के लिए बंद रखना होगा। ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारणों से देश में प्राण संचार कर देना होगा।
4: परंतु संगीत के आदर्श के बारे में स्वामी जी ने कहा था,
1: ध्रुपद और ख्याल आदि में एक विज्ञान है, किंतु कीर्तन अर्थात माथुर और विरह तथा ऐसी अन्य रचनाओं में ही सच्चा संगीत है, क्योंकि वहां भाव है, भाव ही आत्मा है, प्रत्येक वस्तु का रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाव मात्र ही संगीत है, पर ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी ओर भाव विहीन परंतु केवल व्याकरण शास्त्र पर आधारित शब्दों की कसरत भी संगीत नहीं है।
4: स्वामी जी के गुणों से एक और गुणी व्यक्ति भी बहुत प्रभावित हुए थे। वे थे फ्रांस के रोमारोला। उन्होंने लिखा है,
5: स्वामी जी के शब्द मात्र महान संगीत है। वह शब्द तो जैसे बिथोविन शैली के संगीत के टुकड़े हैं, हिंडेल के संवेद गान के छंद प्रवाह के भांति उनमें उद्दीपक लय नहीं थे। उनकी वाणी सुनते ही शरीर में बिजली सी कौन जाती, उनके मुख से निकली वाणी में अनायासी आवेग उत्पन्न हो जाता है।
0: स्वामी जी का मत था कि सिर्फ शुद्ध ताल और स्वर के साथ गाना गाने को यथार्थ संगीत नहीं कहा जा सकता। लोक गीतों की मधुरता, शास्त्रीय संगीत का विज्ञान और कीर्तन का भाव, इन गीतों के मेल से ही आदर्श संगीत की सृष्टि होती है। उन्होंने कहा था,
1: युगों पूर्व भारत में संगीत को पूर्ण सप्त स्वरों तक विकसित किया गया था, यहां तक कि अर्ध एवं चतुर्थांश स्वर तक भी विकसित हुए थे। भारत ने संगीत में और नाटक तथा स्थापत्य कला में भी नेतृत्व किया। अब जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ नकल है।
4: टप्पा के बारे में उन्होंने कहा था,
1: जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं, उन्हें तो टप्पा कर्कशी लगता है। टप्पा को नाक से गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर में दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत नहीं हो सकता। क्या तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर के पीछे दूसरा स्वर इतनी द्रुत गति से तेजी से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन पैदा हो जाता है।
0: पाश्चात्य संगीत में गहराई तक बैठने के बाद स्वामी जी ने उसके बारे में उच्च धारणा बना ली थी। उन्होंने कहा,
1: जब मैंने पाश्चात्य संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है।
4: उन्होंने आगे और भी कहा,
1: हमारे संगीत में आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है, उसी का अनुसरण आज सारा विश्व कर रहा है।
0: स्वामी जी सिर्फ सिद्ध संगीतज्ञ ही नहीं, बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका काव्य जीवन और दर्शन का सत्य है।
4: विवेकानंद के काव्य को विषय और शैली की दृष्टि से दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग की कविताओं में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष शैली ली गई है। इसमें कवि विवेकानंद का वो रहस्यवादी रूप प्रकट है जो मात्र रहस्य में ही विराम नहीं पाता, बल्कि उसकी पूर्णाभिव्यक्ति की चेतना से भी भरा है। उनकी कविताएं रहस्यमय सत्य की नहीं, सत्य की रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति हैं। हम इस वर्ग में कवि की समाधि, सखा के प्रति, गाता हूं गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, नाचे उस पर श्यामा, काली माता और सन्यासी का गीत आदि कविताओं को रख सकते हैं।
0: सत्य के सगुण स्वरूप पर आधारित कविताएं दूसरे वर्ग में रखी जाएंगी। इन कविताओं में ईश्वर के सगुण रूप पर निवेदित भावनाओं के समर्थन के साथ ही मानवीय मूल्य के विविध आयामों की रचनाएं हैं।
4: विवेकानंद का काव्य समाधि की सृष्टि है। समाधि चरमावस्था का ही दूसरा नाम है। ये वो अवस्था है जिसमें मानव व्यक्तित्व पूर्णतः एकात्म प्राप्त कर लेता है। उसकी अनेक मुखी प्रवृत्तियां अपनी विभेद खोकर एक अपूर्व एकात्म का अनुभव करती हैं। उस अवस्था में सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सव्योम में ये विश्व नजर आता है।
0: जहां मन के विभिन्न भाव अपने मिथ्यात्व का दर्शन कराने लगती है, जहां अहंकार की उद्दीप्त धारा में दृश्यमान विश्व विलीन होने लगता है, और अंत में जहां अंधकार भी एक व्यापक पूर्णता में लय प्राप्त करता है, वहां कवि विवेकानंद उपमा देते हैं, बंद वो धारा हुई, शून्य में मिला है शून्य, अवाड़ गमन सगोरचम, वो जाने जो ज्ञाता है।
4: कवि विवेकानंद हमसे कहते हैं,
1: तुम प्रेम की यज्ञ वेदी में अपनी स्वार्थ परता एवं मलिनता की आहुति दे दो। स्मरण रखो कि तुम्हारा भिक्षुक हृदय सदैव से सुख वर्जित रहा है। अपने हृदय की प्रेम राशि का वितरण तुम बिना प्रतिदान की आकांक्षा किए मुक्त हस्त से करो, क्योंकि ब्रह्मा और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार। एक प्रेममय प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार। बहुरूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहां है ईश। व्यर्थ खोज ये जीव प्रेम की सेवा ही पाते जगदीश।
0: उनके गीत प्रकृति और पुरुष या शक्ति और शिव रूपी मूल तत्व के प्रति ही निवेदित है। वे ही कवि के सर्वस्व है। कवि ने अपनी आंतरिक घनिष्ठता का वर्णन इन भावनाओं में किया है। मात्र तुम ही हो मेरे, तुम ही प्राण बंधु हो। होता है आभास कि तुम मैं और मैं तुम हूं। तुम वाणी हो, तुम ही कंठ में बसे हुए हो। वीणापति शारदा तुम ही, मैं माध्यम हूं। है प्रवाह उद्याम वेगमय और चिरंतन। बह बह जाते थाह न पाते हैं मानवगण। ध्वनि गांभीर्य तुम्हारा सदृश जलधि का गर्जन। शेखर चंद्र तुम्हारी वाणी के आवर्तन।
4: विवेकानंद, लोगों से काली माता की भयंकारी रूप को संतान भाव से पूजने का आग्रह करते। वे कहते हैं,
1: हे सत्य स्वरूपा माँ, तू ही इस ब्रह्मांड का सत्याधार है। लोग तुझसे प्रेम का ढोंग करते हैं, पर तेरी मूर्ति का साक्षात्कार करने का साहस उनमें कहाँ। माँ, तेरा दिगंबरा रूप देखकर तो संसारी लोगों के प्राण सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं, और वे तुझे असुर विजयिनी दयामयी इत्यादि गुणों से युक्त कर अपने विक्षुब्ध मन के भय को शांत करने का प्रयास करते हैं।
4: हम विवेकानंद को राग का कवि नहीं कह सकते, बुद्धि का कवि भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार हम ये भी नहीं कह सकते कि विवेकानंद की कविता रागमय नहीं है, बुद्धिमय नहीं है। हमें उनकी प्रत्येक पंक्ति से एक अपूर्व अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जो एक साथ राग और बुद्धि दोनों को अभिभूत कर देती है। हृदय और मेधा दोनों को एक साथ चमत्कृत करती है। राग और बुद्धि प्रकृत काव्य का मूलभूत समन्वय गुण है, और विवेकानंद का काव्य आदि से अंत तक इस समन्वय की ही अभिव्यक्ति है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, आपसे विदा लें उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। हमारी सभा 7 बजे शुरू होगी। पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद आप सुनेंगे अक्षय निधि और 7:20 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत की कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की। बाल सभा कार्यक्रम में सुबह 8:30 बच्चे सुनेंगे बूढ़ों की बातें और बड़प्पन, इस विषय पर केंद्रित कार्यक्रम। हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रसारित होगा। इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का भाग 6वां आप सुन सकेंगे। सुबह 9:30 हमारे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलापिनी कोमकली का भक्ति गायन। देश के संस्थान कार्यक्रम में सुबह 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आकाश की शक्ति का निर्माण, इस विषय पर केंद्रित कार्यक्रम। आजाद हिंद कार्यक्रम में अवनीनाथ मुखर्जी की चर्चा होगी सुबह 10:30। 11 बजे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा 11:10 और 11:30 सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद, कल इसकी 69वीं कड़ी प्रसारित होगी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सभा समापन का समय हो रहा है, कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, शुभ रात्रि, जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।